मीडियम वेव 396.2 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त किए कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर।

हर शुभ कार्य से पहले पूजा तेरी, तुम्हारे बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी, रिद्धि सिद्धि को लेकर करो भवन में फेरी, करो ऐसी कृपा नीत करूं मैं पूजा तेरी।

दुनिया करती है बातें उन गुजरे हुए जमानों की, कुछ झूठे रिश्ते तो कुछ रस्म रिवाजों की। मिट्टी के घर हैं पर बातें हैं ऊंचे पहाड़ों की, कुछ मंजिल को पाने तो कुछ उड़ते हुए आसमानों की।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रकाश किरण।
1: एयम खुनाणिनो सारम जम न हिंसई कंचना

0: परिचत्तात्तकामेहिम।
1: जीव का वध अपना ही वध है, जीव की दया अपनी ही दया है। अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है।
0: तुमंसि नाम सचेव जन्हन्तव्वं तिमन्नसि, तुमंसि नाम सचेव जम अज्जावेयव्वं तिमन्नसि, तुमंसि नाम सचेव जन्हन्तव्वं तिमन्नसि, तुमंसि नाम सचेव जम अज्जावेयव्वं तिमन्नसि।
1: जिसे तू हनन योग्य मानता है वो तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वो तू ही है।
0: हिंसा दो अविरमणम्,

0: हिंसा से विरत न होना, हिंसा का परिणाम रखना हिंसा ही है। इसलिए जहाँ प्रमाद है वहाँ नित्य हिंसा है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रकाश किरण, श्लोक पाठ उमा गर्ग और वाचन पुष्पा अग्निहोत्री का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं, धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले। ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर, नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

0: श्री रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: कास्तकार दादा दीदी मन पाक फर ले आम के बल बपू मिरे से, संगे संगे टोंडचो सुवाद तो मिरे से चे। असनी साग सब्जी बले आमचो खादी ने असन जी निसाय, जेचो नहलो आमी जीव नहीं रहुक सकू। पाक फर आरु साग भाजी के आमी खाऊं से, एके तो जानास मांतर खूबे दिन ले एके कसन संगाऊ सकू। एचो काजे गुट की उपाय आए, और हुन उपाय आए साग भाजी के नहले पाक फर के सुखाउन भाती संगातोर। सुखा तो काजे कसन कसन सावधानी मन संगातोर आए, एके मैं आजी सांगे से। सबले पहिल पाक फर नहाले साग के नंगत नीरो पानी ने धोन, उनके हिसाब दखून ऊपर चो छाली के उछला तोराय आरु काटून दे तोराय। और जसन कोनी पाक फर नहाले साग काटलो पाछे लहरा ने रलो ने करिया नहाले धमस्या होन जाय से, उनके काटून भाती खिंडिक वहां लोन चो पानी ने संगाते जा तोराय। और जसन पाक फर के आमी सुखाऊ से, तो उनके सुखा तो काजे आम के समय आगर लागे से। यही काजे सुखा तो बेरा पाक फर नी नसो बलून, हुता गंधक चो कुमला देतो राय। कुमला देतो काजे 1 किलो पाक फर काजे 3 ग्राम गंधक खूबे होय से। मांतर पाक फर दखुन एके खेडी कम और आगर बले करतोर होय से। दादा दीदी मन ये तो होली पाक फर काजे, मांतर साग काजे गंधक चो कुमला नी देतो राय। आरु गंधक बीती लोन जिनिस जसन पोटेशियम मेटा बाइल सल्फाइट, ये के घोरून होता चोबरून भाती साग के डंडिक संगातो राय। ये चोले काय होय से कि साग ने गंधक मिसे से, आरु सुखालो पाछे साग ने नानी नानी कीड़ी मन नी पड़त। दादा दीदी मन गोटोक और गोठाए जैके लेख करतो राय, हुनाए कि जसन आमी पाक फर के नहाले साग भाजी के घाम ने सुखाऊ से, जाले आमी सुखा तो ठान के बले ध्यान देऊ। सुखा तो ठान ठसठसा ठान होले आगर नगत आए, नहाले कहाँ बोले सुखाऊ। हर 2 नहाले 3 घंटा ने सुखालो जिनिस चो कुटकी मन के उलट पलट करते रहूं। असन करते रलो ने हुता सब पाए बाटे बराबर घाम पाउ सके दे। सुखा तो ठान कचरा कूड़ा चिखल पानी असन ठान ले लाफी रहो, काय काज बल्ले असन करलो ने हुता मोची आरु तीसर कीड़ा माकड़ा मन नी बसुक सक दे। और सुखा तो बेरा सुखा तो जिनिस के हाथे धरून टूटाउन बोले दख तो राय, काय काज बल्ले दखा दे दे कि नंगत सुखली से कि नहीं। और जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे, तेबे हुनके कूड़ी बनाउन 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातोर आए। एके एक हार और सुना, जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे, तेबे हुनके कूड़ी बनाउन 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातोराय। और जसन 15 दिन होली हुंचो पाछे एक कूड़ी मन के उठाउन, पाछे हुनके कांच नहले 3 चो डब्बा मन ने संगातोराय। और पाछे जेबे खातो काजे मन करे दे, उदल दाए निकरा तो राय, और मन हिसाब ने रांधुन जमक बनाउन, काय रसिया घर चो लोग संगे खातोर बले आए।
0: आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हुलहुली कार्यक्रम में सुनिए भीमा देवपाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भीमा देवपाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। लिए सुनिए आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। इंग्लैंड के एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, पुनः शाम 7 से रात 8:45 तक, फिर रात 9:15 से रात 9:30 तक और रात 10 से खेल की समाप्ति तक। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी सुनिएगा सुबह 7:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। हल्बी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:45 पर। विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंचेरी आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पीके फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 गुलशन कार्यक्रम में सुनिएगा नए तराने। सुबह 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति होगी सुखेंदु मलिक की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे गैलमणि देवी और साथियों के गाए हल्बी गीत सुबह 11:30 पर।

दोपहर 12 बजे रुस रुसा लोक गाथा में सुनिएगा आंधा राजा का भाग 3। गायिका होंगी सुब्री बाई। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 का। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत समूह सौर में। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी पेश करेंगे शाम 5:10 पर। ये थी हमारी केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड, 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने में है। जब किसी की मदद से चेहरे पर मुस्कान आती है तो उसका सुकून अलग ही रहता है। इसी बात को मशहूर समाजसेवी बाबा आमटे यानी मुरलीधर देवीदास आमटे जी ने बेहद खूबसूरती से कहा था, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। और शायद यही बात आज के दिन को भी खास बनाती है, क्यों ये जानने के लिए आइए अब बढ़ते हैं आगे आज के इतिहास की ओर। साथियों, आज 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान कर किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी बचाने में मदद करते हैं। इतिहास के पन्नों में आज का दिन विज्ञान की दुनिया के लिए भी खास है। साल 1949 में आज के ही दिन अल्बर्ट द्वितीय नाम का सीरस बंदर अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला बंदर बना। वहीं 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। इतिहास के ये पन्ने हमें नई राह दिखाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें अतीत की ओर ले जाती है, खासकर जब मौसम करवट लेने लगे, दूर आसमान में बादल दिखाई दे, हवा में ठंडक घुलने लगे और काली काली घटाएं घिरने लगे। ऐसे में ना जाने क्यों कुछ पुराने चेहरे, कुछ पुरानी बातें और कुछ मीठी यादें मन में फिर लौट आती है। इस तरह

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियां भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें, हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
2: दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी ने हाल ही में प्रदर्शन कला के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए अभिनय श्रेणी में छत्तीसगढ़ के जशपुर निवासी रंगकर्मी और अभिनेता डॉ आनंद कुमार पांडे का चयन किया गया है। रंगमंच के क्षेत्र में उनकी सक्रियता और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस पहचान के बाद उनसे हमने उनके रंगमंचीय सफर, अभिनय के अनुभवों और इस उपलब्धि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की है। आइए सुनते हैं।
3: साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि जशपुर के प्रतिष्ठित रंगकर्मी और अभिनेता डॉ आनंद कुमार पांडे को अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि छत्तीसगढ़ की रंगमंचीय परंपरा की भी पहचान है। आज उनसे इसी उपलब्धि और रंगमंचीय सफर के बारे में बातचीत करेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
3: सबसे पहले तो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सवाल ये भी रहेगा कि ये पुरस्कार मिलने पर सबसे पहले आपके मन में क्या विचार रहा आया?
4: जी बिल्कुल, मैंने चूंकि मैं अभी 40 वर्षों का होने वाला हूँ,
3: जी जी जी जी,
4: तो ये बिल्कुल अंतिम समय होता है और संगीत नाटक एकेडमी के जो ये उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार की जो योजना है
3: जी जी,
4: उसकी उम्र जो है वो 40 वर्ष तक है। लिस्ट जब आई, प्रेस रिलीज जब आई, तो मुझे पता चला कि जो लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम है। तो मैंने ना कोई उम्मीद की थी ना कुछ ऐसा सोचा था कि ये सम्मान मुझे मिलेगा, लेकिन ये हुआ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है।
3: जी बिल्कुल, और क्योंकि जशपुर जैसे क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान बनाना आसान नहीं है, तो आपके लिए ये सफर कैसा रहा?
4: ये सफर बहुत चुनौतीपूर्ण सफर रहा है। जीवन से लेकर मृत्यु तक का सफर ही बहुत चुनौतीपूर्ण सफर है, और विशेषकर कला के किसी भी माध्यम में आप काम कीजिए तो वो बहुत भारत में तो चुनौतीपूर्ण होता ही है।
3: आनंद जी, लेकिन रुझान कैसे पैदा हुआ कि रंगमंच और अभिनय की दिशा में ही आपको जाना है?
4: संगीत नाटक एकेडमी का ही बहुत बड़ा योगदान है इसमें
3: जी।
4: 2007 में युवा रंगकर्मी कार्यशाला नाम से एक कार्यशाला लगी थी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में
3: जी।
4: और नाटक से बिल्कुल अनजान था मैं। जसपुर से दो लोग जाने वाले थे उस कार्यशाला में भाग लेने के लिए
3: जी जी।
4: संयोग बस एक व्यक्ति उसमें से किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो उनकी जगह मुझे भेजा गया कि आनंद भाई आप जो है जाइए, वहां नाटक की कार्यशाला लगी है तो नाटक की कार्यशाला कीजिए। सामान्य ज्ञान की किताब में पढ़ रखा था कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है कोई, तो मुझे लगता था कि ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, रविशंकर विश्वविद्यालय है, ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये अलग से ये कैसा विश्वविद्यालय है? तो कुछ ना कुछ तो मन में रहा होगा, कहीं ना कहीं अंदर में कोई कला तो छुपी होगी, तो ये रुझान बना होगा। तो संगीत नाटक एकेडमी की कार्यशाला में जब मैं गया, वहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रशिक्षक और राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे प्रशिक्षक जो है वो आए हुए थे, और नाटक की कार्यशाला थी 1 महीने की। तीसरा या चौथा दिन था तभी मैंने ये तय कर लिया कि मुझे जो करना है और मुझे जो कहना है वो माध्यम मेरा नाटक का ही होगा, रंगमंच का ही होगा। मैंने बस घर पे फोन लगा करके बताया कि मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ।
3: और अभिनय जीवन का कोई ऐसा नाटक या ऐसा किरदार जो आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग रहा या आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है?
4: बहुत सारे ऐसे नाटक तो मैंने कोर्स के दौरान भी किए हैं और उसके बाद भी किए हैं।
3: जी
4: बाबा पाखंडी जो है एक बहुत बढ़िया नाटक है, डॉक्टर योगेंद्र चौबे सर ने उसे निर्देशित किया है, उसमें भी अभिनय किया मैंने। साथ ही आलोपी वर्मा एक बड़े निर्देशक रहे हैं। तो कोर्स के दौरान ही मैंने क्या करेगा काजी एक नाटक किया था, उसमें एक जमा मर्द का किरदार था, वो भी मैंने किया। फिर आगे चल करके जैसे जैसे थोड़ी समझ बनी और समझ बढ़ी, तो मास्टर्स करते वक्त एक प्रोजेक्ट होता है कि आपको एक सोलो नाटक एक छोटा सा तैयार करना होता है, और वो आपके परीक्षा का हिस्सा होता है।
3: बिल्कुल। और वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में रंगमंच और लोक कला की जो स्थिति है वो आप क्या देखते हैं, और ऐसे युवा जो कि अभिनय और थिएटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे?
4: छत्तीसगढ़ में लोक कलाओं की और रंगमंच की स्थिति में दोनों में
5: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
6: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
7: पवन के ठंडे झोंके के साथ
6: हिलोरे लेगी
7: आकाश की वाणी।
6: आकाशवाणी
8: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
6: या फोन करें 2221 50 या 2224 00,
7: 2221 50 या 2224 00।
9: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
10: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
11: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
12: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
13: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
14: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
13: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
15: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हल्बी समाचार बुलेटिन।
16: जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं महेंद्र सिंह ठाकुर। पहल सुना आजीचो मूर खबर मन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग चो बसका ने बोलला कि केंद्र और राज्य सरकार चो मिसुन करलो कोशित विकसित भारत चो विचार के नंगत करुन दखा तो काजे सबले मूर आए। बसका ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायबले बस्तर चो बाढ़ती काजे बनालो उवाट के सपाए चो पूरे सांगला। धान चोठान ने दार बीती तेल बीती जसन दूसर फसल चो कमानी करतो बीता किसान मन के राज्य सरकार गोटो के कड़ने 15,000 रूपया चो सहायता दे दे। राज्य ने सीएम हेल्पलाइन सेवा मूर होली। लोगमन टोल फ्री नंबर 1076 ने आपलो शिकायत दर्ज करतो संगे ची सलाह बले देउ सक दे। और राज्य सफाई सरकारी और आपलो बाटले खोललो निजी स्कूल मन ने जेट बतर चो छुट्टी चो पाछे 16 जून ले खोल तो काजे स्कूल शिक्षा विभाग बाटले आदेश जारी होली। एदाय खबर सरसराले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेलो 11 जून के नई दिल्ली ने नीति आयोग चो 11वीं शासी परिषद चो बसका चो अध्यक्ष होन बसला। ए बसका ने 28 राज्य मन और 5 केंद्र शासित प्रदेश मन चो मुख्यमंत्री मन उपराज्यपाल और प्रशासक मन अमरोन रला। ए पहिल हार होली जिदलदाय सपाए 28 राज्य मन चो मुख्यमंत्री मन नीति आयोग चो शासी परिषद चो बसका ने भाग धरला। एसु बरक चो विषय रली बरक 2047 तक ले विकसित भारत काजे समावेशी मानव विकास। ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्ला कि भारत चो बाढ़ती चो कहनी असन समयाने बले संसार के शिक्षा देवाए जिदल नाए कएक बड़े अर्थव्यवस्था बीती देश मन बड़े बड़े चीपा और पैसा कमानी काजे खुबे आगर मसागत करसोत। हुन आपलो दम ने जीवना जीव तो काजे राष्ट्र चो संकल्प के और बरसक बना तो गोठुपरे जोर दिला। और खास हिसाब ने नवीकरणीय ऊर्जा चो ठान ने संसार भर चो नंगत वाट धरून हुनके लागू करतो गोट के बले सुरता कराला। सरकारी संघवाद चो खास गोठुपरे सपाए चो ध्यान झिकते प्रधानमंत्री ए गोठुपरे बले जोर दिला कि विकसित भारत चो लक्ष्य के पाव तो काजे केंद्र और राज्य दोनों मिसुन भाती काम करु पड़े दे। हुन ए बले बोलला कि विकसित भारत चो विचार सपाए राज्य मन जिला मन ब्लॉक मन और गांव मन चो सपाए लोग मन चो मिसुन धर लो संकल्प होतो राय। प्रधानमंत्री सपाए राज्य मन के पानी बचातो काजे बरसक वाट करतोर और प्राकृति और जैविक कृषि काजे सपाए लोग के चेतातो काजे गुहार करला। नीति आयोग चो बसका ने छत्तीसगढ़ चो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर चो बाढ़ती चो बरसक वाट के सांगला। उन सांगला कि ए तो 3 बरख ने बस्तर ने रतो कुटुंब परिवार मन चो महीना भर चो कमानी के बढ़ाउन भाती 30,000 तक ले अमरातोर लक्ष्य संगालो रासे। ए चो काजे डेयरी सिंचाई पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार जुठान ने खास योजना मन के लागू करतोर होए दे। मुख्यमंत्री सांगला कि सिंचाई चो सहायता ने बाढ़ती करतो काजे 2,000 करोड़ रूपया ले आगर चो खर्चा बीती 2 बड़े परियोजना मन के मूर करतोर होए दे। ए परियोजना मन ले 32,000 हेक्टेयर चो ठान मन ने सिंचाई चो सहायता अमरे दे। मुख्यमंत्री बोलला कि बस्तर चो लाफी चो ठान मन ने स्वास्थ्य सेवा के और बरसक बनातो काजे 36 लाख जन महा लोग मन चो डिजिटल हेल्प प्रोफाइल तैयार करतोर होए से। ए चोले बीमार लोग मन चो उपचार दवाई और बीमारी चो रिकॉर्ड नंगत हिसाब ले संगातोर होए दे। और डॉक्टर मन के बले समयाले सही जानकारी मिलते रहे दे। हुन सांगला कि बस्तर ने बनलो बीती 200 महा सुरक्षा शिविर मन के एदाय सेवा डेरा हिसाब ने बनातोर होए से। ए केंद्र मन ले गांवकारी मन के राशन पेंशन आयुष्मान कार्ड बैंक चो सहायता उपचार और शिक्षा संगे केंद्र और राज्य सरकार चो 371 योजना मन चो लाभ गोट की ठान ने अमरातोर होए से। मुख्यमंत्री सांगला कि बस्तर ने पानी चो खेल अचरीज बीती खेल मन और जंगल सफारी जैसन काम बुतावन बले होय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेलो 10 जून के भारत चो सबले आगर समय ले सेवा दे तो बिता निर्वाचित प्रधानमंत्री बनला। श्री मोदी 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पद चो शपथ धरून रला। हुन पंडित जवाहरलाल नेहरू चो रिकॉर्ड के टूटाला जे पहिल हार 13 मई 1952 के निर्वाचित प्रधानमंत्री चो पद चो शपथ धरून रला और 27 मई 1964 तक ले पद ने रला। पंडित नेहरू चो निर्वाचित प्रधानमंत्री पद ने काम करलो समय 4398 दिन चो रली। 26 मई 2014 ले 10 जून 2026 तक ले प्रधानमंत्री चो सरलगा काम करलो समय एदाए 4399 दिन चो होन गेली से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संगे सपा केन्द्र चो मंत्रीमन और छत्तीसगढ़ चो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री मोदी के सबले आगर समयले सरलगा देश चो प्रधानमंत्री चो पद ने रतोकाजे बधाई दिला। केंद्र सरकार चो नुआ विकसित भारत चो रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले लागू होए दे। एचो काजे गेलो 10 जून के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज मंचो ग्रामीण विकास मंत्री मन संगे वर्चुअल वाट ले बसका धरला। श्री चौहान सांगला कि केंद्र सरकार वाटले अंतरिम आवंटन हिसाब ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ए योजना काजे 95,000 करोड़ रूपया ले आगर चो राशि के जारी करलो राशि। छत्तीसगढ़ के 3,354 करोड़ रूपया चो अंतरिम आवंटन जारी होली से। ये पैसा ले ग्राम पंचायत मन के सीधा लाभ मिरे दे और गांवकारी ठान मन ने रोजगार और बाढ़ती चो काम मन बले बाढ़े दे। बसका ने भूतियार मन के समय ले रोजी पैसा देतोर ई केवाईसी और डिजिटल वार्ड के बरसक बनातु गोट ने बले जोर दिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चो अध्यक्ष होलो बेरा 9 जून के मंत्रालय ने होलो राज्य मंत्रिपरिषद चो बसका ने कई खास फासला मन धरला। मंत्रिपरिषद बाटले कृषि उन्नति योजना चो नुआ वाट के मंजूरी दिला। एचो हिसाब ने धान चोठान ने दूसर खरीफ फसल धरतो बिता किसान मन और दार बीती तेल बीती जोंदरा कोदो कुटकी रागी और कापास चो कमानी करतो बिता किसान मन के 1 एकड़ ने 15,000 रूपया चो सहायता देतोर होई दे। राज्य सरकार बाटले कैक बरन चो फसल कमानी ने बाढ़ती करतो काजे किसान मन चो कमानी चो लाभ के बढ़ातो काजे और धान चो भरसाची नी रहुक देतो काजे ए फासला धरतोर होली से। ये योजना चो लाभ एकीकृत किसान पोर्टल एग्री स्टेक पंजीयन और डिजिटल क्राप सर्वे चो हिसाब ने देतोर होई दे। गोटोक और फासला ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ बाटले शेयर बाजार ने सूची ने संगातु काजे सैद्धांतिक मंजूरी दिलासे। एची संगे राज्य ने 240 टन इलेक्ट्रिक बस मन के चलातो योग विषय चो प्रशासनिक पुनर्गठन और खनिज परिवहन वाट मन के तकनीक हिसाब चो बनातु काजे खास फासला धरला से। राज्य ने 9 जून ले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बलों ने सहायता सेवा मूर होली से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय ले ए सेवा के मूर करला। ए मौका ने मुख्यमंत्री बल्ला कि एदाय राजभर काजे टोल फ्री नंबर 1076 ने आप लो शिकायत दर्ज कराउन भाती सलाह बले देउक सकासे। एची संगे सरकार चो योजना मन और सेवा चो कैक गोटपाद मन के बले सांगू खोए दे। मुख्यमंत्री सांगला कि हेल्पलाइन सेवा के व्हाट्सएप ने बले जोड़लो रासे। यथा राज्य शासन चो 42 विभाग मन चो 8,000 महाअधिकारी मन मिसला से हुताए 1,195 ठन श्रेणी मन ने पक्की सांगलोर समय चो भितरे शिकायत मन के निमड़ा तो जितना तो काजे बोले उवाट करलो रासे। गोटोक गोटोक शिकायत करू लोग मन के यूनिक आईडी देतोर होए दे जेचोले हुंचो आवेदन चो जांच और दखा रखा और समय ले निमड़ा तो काम हो सको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 जून के राष्ट्रपति भवन ने होलो बीती रक्षा अलंकरण समारोह ने सेना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मन और राज्य पुलिस बल संगे केंद्र शासित प्रदेश मंचो पुलिस बल मन के वीरता पुरस्कार दिला। छत्तीसगढ़ चो 3 जन के राष्ट्रपति बाटले शौर्य चक्र देन भाती मान करतोर होली। एमन ने असम राइफल्स चो राइफलमैन भोजराम साहू संगेची छत्तीसगढ़ चो नक्सली ग्रह के गुचातो अभियान बेरा नंगत धोसा और सपाए के नंगत बाट दखाउन हिम्मत देतो बिता पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख बले आसोत। भोजराम साहू बालोद जिला चो रतो बिता आत ए 2025 ने मणिपुर ने गोटोक आतंकवादी विरोधी अभियान बेरा खूबे हिम्मत और धोसा दखाउन रला। हुताए पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख बले खूबे समयले बस्तर और राजनांदगांव चो लाफी लाफी चो झपल धरलो रान भित्रे नक्सली ग्रह के मरला तो अभियान मन ने मिसुन सपाए के बाट दखासोत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला से कि पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख के हुनमन चो वीर लड़नता होन हिम्मत दखातो राष्ट्र सेवा काजे सपाए के सोपुन देतो गोट काजे राष्ट्रपति बाटले शौर्य चक्र देतोर गुलाय राज काजे खूबे छाती फूलतो असन मान चो गोठाए। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बोले छत्तीसगढ़ पुलिस से दोनों अधिकारी मन के शौर्य चक्र ले मान करतो के खूबे बधाई दिला। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय बाटले बरख 2025 का जे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार मंचो घोषणा करला से ए खूबे मान बीती राष्ट्रीय सम्मान ने छत्तीसगढ़ चो चार जन कलाकार मन के चिन्हलो रासे। एमन ने लोक कलाकार और रंगकर्मी पद्मश्री सम्मान पावलो बीता डॉक्टर अनूप रंजन पांडे बले आसोत जेमन के एसुचो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देतोर होय दे। एची संगे कथक नाचाचो बड़े जानकार पंडित रामलाल बरेठ के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और रंगकर्मी घनश्याम साहू के डॉक्टर आनंद कुमार पांडे के उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार का जे चिन्हलो रासे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बल्ला से कि डिजिटल भू अभिलेख मंचो नंगत राखा जतन काजे बरसक वाट करतोर होए दे। 11 जून के रायपुर ने गोटो बड़े बसका ने हुन बल्ला कि गड़बड़ काम के थेवातो काजे EHRMS पोर्टल बनातोर होए दे। राजस्व मंत्री कई जिला मन ने 3 बरखले नहाले हुंचले आगर समयले गोट की ठान ने काम करतो बीता तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक मंच सूची के मांगला से। एची संगेची गोट की हल्का ने 3 बरखले आगर समयले काम करतो बीता पटवारी मंच बले सफाई जानकारी तैयार करतो काजे बल्ला से। हुन अधिकारी मन के नगरीय ठान मन ने पात्र हितग्राही मन के पट्टा देतो काजे सफाई खास सर्वे चो काम मन के ए तो 15 अगस्त तकले पक्की हिसाबले सारतो काजे बल्ला से। नेशनल मेडिकल कमीशन बाटले छत्तीसगढ़ चो 5 ठन नुआ मेडिकल कॉलेज मन के मान्यता नी दिला से। राज्यो चिकित्सा शिक्षा विभाग बाटले दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर, चांपा और कवर्धा ने नुआ मेडिकल कॉलेज मूर करतो काजे तैयारी पक्की करला से। मानतर नेशनल मेडिकल कमीशन चो ऑनलाइन पठालो दस्तावेज और मिरलो जानकारी चो जांच करलो पाछे ए प्रस्ताव मन के स्वीकृति नी मिरली से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA बाटले 21 जून के होतो बीती नीट UG पुनर्परीक्षा चो समय ने 15 मिनट चो उपरा समया जोड़तो काजे फासला धरला से। एदाय अभ्यर्थी मन के परीक्षा देतो काजे 195 मिनट चो समय मिरे दे। राज्य सफाई सरकारी और आपलो बाटले खोललो निजी स्कूल मन जेट बतर चो छुट्टी होलो पाछे 16 जून ले फेर मुर होई दे। ए चुकाजे स्कूल शिक्षा विभाग बाटले जिला शिक्षा अधिकारी मन और संयुक्त संचालक मन के आदेश जारी करलो रासे। आदेश ने विभाग बाटले सफाई स्कूल मन के पहिल दिन ले ची समय सारणी चो हिसाब ले पढ़ा तो लिखा तो काम के मुर करू बल्ला से। जानू कहो कि राज्य सरकार बाटले खूबे डहा के दखुन भाती 15 अप्रैल ले धरून 16 जून तक ले जेट बतर काजे छुट्टी दिलो रली। ए मंजी सरकारी और निजी स्कूल मन ले 16 जून ले शाला प्रवेश उत्सव मनातर होए दे। ए मौका ने पीला मन के फोकाहा ने पढ़तो किताब, पिनतो कपड़ा और साइकिल बांटतो काम होए दे। देश भर ने खरीफ बतर चो बुनई मुर होते ची किसान मन के तेल बीती फसल चो जानकारी देतो काजे किसान मित्र नाव ले गोटोक व्हाट्सएप बीती AI सलाहकार सेवा मुर करलो रासे जे किसान मन चो मोबाइल फोन ने सीधा जानकारी अमरा हुआ है। किसान मन 9140245981800 नंबर के व्हाट्सएप ने तिलहन किसान मित्र चो नाव ले सेव करुक सकोत और मूंगफली, सरसों तेल, तिल, सूरजमुखी और दूसर तेल बीती फसल काजे भारत चो कोनी बले भाषा ने जानकारी धरुक सको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो दखालो बाट हिसाब ने केंद्र ने NDA सरकार चो 12 बरखपुरतो के बीजापुर जिला ने 18 ले 20 जून तक ले खास पंजीयन शिविर होए दे। 3 दिन चो ए शिविर ने हितग्राही मन के केंद्र और राज्य सरकार चो जन कल्याणकारी योजना मन चो जानकारी देतोर होए दे। शिविर ने आयुष्मान भारत, आयुष्मान वंदना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, PM कौशल विकास योजना और कैक पेंशन योजना मन संगे दूसरे योजना मन हिसाब ने हितग्राही मंचो पंजीयन करतोर होए दे। सुकमा जिला चो ग्राम पंचायत मन ने ग्राम पंचायत सचिव संगे ची 22 ठन पद मन ने भर्ती चो काम मुर होली से। मन करतो अभ्यर्थी मन स्पीड पोस्ट नहाले पंजीकृत डाक वाटले आपलो आवेदन के सुकमा जिला पंचायत कार्यालय ने जमा करुक सकोत। ग्राम पंचायत सचिव चो मेला पद मन ने जिला ने रतो बिता लोग मन ले ची आवेदन मांगलो रासे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दंतेवाड़ा बाटले काली 15 जून के बिहाने 11 बजे ले धरून अड़ोपहार 3 बजे तक ले रोजगार मंडई चो कार्यक्रम होए दे। LIC ऑफ इंडिया ब्रांचो ए रोजगार मंडई ने बीमा सखी चो 60 ठन पद मन ने भर्ती करतो रहे दे। मन करतो आवेदिका मन आपलो सफाए कागजात मन संगे रोजगार मंडई ने भाग धरुक सकोत। सरासरी मूर्ख पर मन के फेर सुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग चो बसका ने बोला कि केंद्र और राज्य सरकार चो मिशन कर लो कोशित विकसित भारत चो विचार के नंगत करुन दखा तो काजे सबले मुर आए। बसका ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले बस्तर चो बाढ़ती काजे बना लो वाट के सपाई चो पूरे सांगला। धान चुठान ने दार बीती तेल बीती जसन दूसर फसल चो कमानी करतो बीता किसान मन के राज्य सरकार गोटो के गढ़ ने 15,000 रुपया चो सहायता दे दे। राज्य ने सीएम हेल्पलाइन सेवा मुर होली। लोगमन टोल फ्री नंबर 1076 ने आप लोग शिकायत दर्ज करतो संगे ची सलाह बोले दे सक दे। और राज्य सपाए सरकारी और आप लोग बाटले खोल लो निजी स्कूल मन ने जेट बतर चो छुट्टी चो पाछे 16 जून ले खोल तो काजे स्कूल शिक्षा विभाग बाटले आदेश जारी होली। एची संगे हल्बी समाचार बुलेटिन जो ये अंकित था सरे से जुहार।
5: हल्बी समाचार बुलेटिन अभी आपकी सेवा में ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म जीरो से। आवाज है अभय जोधपुरकर की। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को सुर में ढाला है अजय अतुल ने।

0: जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: टाइगर जिंदा है, इस फिल्म का गीत सुनिए आतिफ असलम का सर में। गीत रचना इरशाद कामिल की और तर्ज बनाई है विशाल और शेखर ने।

आइए अब सुनते हैं कैसर मुनीर का लिखा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत है अमित त्रिवेदी का। फिल्म है पैडमैन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में

0: सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर

0: स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
3: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है।

0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब सुनिए छत्तीसगढ़ी गीत DS बोरकर और साथियों के स्वर में।

0: की गण संगे पानी रानी पूर्णी बंदे उपका बुढ़ा होई पानी दोते रला टोकी मन संगे रे हर की बेला पानी रानी हना देला डेंग तले बसला छे गोटक कुमर केऊ देशे घर कार कुमर अति सुंदर बर बोली कोई देला सखी मान को हे सखी गण जाई पचारी आसो केऊ देशर विदेशिया बसी अछि बंदो डेंगे कोई दियो सखी गण पचारी आसो
1: सुनी करे दासी गण
0: बिजला पोटी संगे गला
1: लाजे लाजे चली गला।

0: मन सुनि गलाई
1: सोखी मन सुनि गलाई पानी कुमार कुमार बोली
0: जल रानी लगे सांगी देला
1: जल रानी लगे सांगी देला
0: ए रानी जल रानी कोन देशर पानी कुमार।

लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, लिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी।

0: बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं प्रतीक्षा नैन्सी विकास नमस्कार कहती हूँ। साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों को अपना ढेर सारा प्यार देती हूँ। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों, आज रविवार है और अपने वादे के मुताबिक ठीक सुबह 9 बजे हम और आप इस बालवाड़ी कार्यक्रम में फिर से एक दूसरे के साथ यहाँ उपस्थित है। तो हम सब मिलकर अपने इस बालवाड़ी कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत खुशी हुई कि आप सारे बच्चे एक बार फिर से यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत कुछ सुनाने के लिए आए हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप जब भी आए तो अपने साथ बहुत सारे बच्चों को लाएं, ठीक है
1: जी।
0: तो बेटा, आप लोग का एग्जाम भी खत्म हो गया। आप

0: से एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे तब पढ़ाई करते हैं जब सामने में टाइम टेबल आता है ना? सही है कि नहीं बेटा, बताओ,
1: जी
0: है ना? और टाइम टेबल देख करके ही मन में डर उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और उस समय हम लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम हमारे माता पिता या हमारे बड़े जैसा रिजल्ट हमसे चाहते हैं, हम उनको वैसा रिजल्ट नहीं दे पाते। कारण क्या है? क्योंकि हमारी तैयारी शुरुआत से नहीं होती है। लास्ट मोमेंट पे अगर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हैं कि नहीं एक साथ। अभी आप जैसे देख लीजिए, एक ग्लास है, उस ग्लास में अगर आप पानी डालोगे तो पानी डालते जाओगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ग्लास में से पानी छलकने लगेगा, है ना? सही है कि नहीं? लेकिन अगर आपको अच्छे से पानी पीना है तो आप देख करके सही रीति से उसमें पानी भरोगे और फिर पियोगे तो पानी नहीं छलकेगा, आपकी प्यास भी अच्छे से बुझ पाएगी, है ना? तो वैसे ही बच्चों का छोटा सा दिमाग होता है, अगर उसमें एक साथ एंड टाइम पे ढेर सारा भर देंगे पढ़ाई का, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? पढ़ेंगे, लेकिन वो इधर का उधर कर देंगे। अगर पूछेंगे ताजमहल कहाँ है तो लिखेंगे हैदराबाद में, और बोलेंगे चार मीनार कहाँ है तो लिखेंगे आगरा में, क्योंकि पढ़े तो सब कुछ है लेकिन कंफ्यूजन, भूल जाएंगे, इधर का उधर कर देंगे। लेकिन अगर वही चीज साल के शुरुआत से ही बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, उनके माता पिता अपने बच्चों को साल के शुरुआत से ही उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें, तो बच्चा हर दिन जो पढ़ रहा है उसको मन में अगर रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा, तो क्या होगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको कोई भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होगी, कोई भी चीज़ उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं छलक पाएगा, है ना? वो वही चीज़ करेगा जो उसको करना है ना? उसका इधर का उधर ना के बराबर होगा या होगा ही नहीं, है ना? सही बोल रही हूँ कि नहीं? तो अगर आप सभी बच्चे, मैं मुझे मालूम है आप सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप इस सत्र में साल के शुरुआत से ही ध्यान दोगे तो देखना आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, है ना? और सबसे बड़ी बात बेटा, कभी भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमको पढ़ाई को रटना नहीं है, रट्टू टोता नहीं बनना है। अगर हम रटेंगे तो क्या होगा, हम समझेंगे नहीं। रटने में और समझने में अंतर होता है कि नहीं? अगर आप रटे हो तो आप रट्टू तोता बन जाओगे, और अगर आप समझे हो तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। आप सभी पिक्चर देखे हो ना, थ्री इडियट, थ्री इडियट में कितना अच्छा दिखाया, अगर हम रटते हैं समझते नहीं हैं तो जो भी सामने है हम उसको सीधा सीधा बोल देते हैं चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम रटते नहीं हैं समझते हैं तो हमारे सामने कुछ गलत आता है तो हम जान जाते हैं कि ये गलत है और हम उस चीज को नहीं करते हैं, है ना? अगर हम रटते हैं तो हमारे अंदर से कुछ भी रचनात्मकता नहीं के बराबर होती है, और अगर हम समझते हैं तो हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके कोई भी चीज को अच्छे से कर पाते हैं। मैथ्स कभी रटा जाता है नहीं, है ना? गणित कभी रटा नहीं जाता। जो बच्चा गणित समझ गया, फॉर्मूला समझ गया गणित का, सूत्र समझ गया गणित का, तो वो बहुत अच्छे से गणित को बना लेता है ना? उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर बच्चे क्या करेंगे, गणित को भी रटेंगे तो वहां जाने के बाद देखेंगे कि सवाल अलग आया है तो वो बिल्कुल भी कर नहीं पाते, क्योंकि वो क्या करके आए हैं, रट के आए हैं। लेकिन अगर आप समझोगे, सिर्फ मैं गणित की बात नहीं कर रही, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, वो हिंदी ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, विज्ञान ही क्यों ना हो, अगर आप समझोगे तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। अपनी समझ का सहारा लेके आप बहुत कुछ आंसर लिख सकते हो, बहुत कुछ नया बना सकते हो, है ना? जितने भी दुनिया में आविष्कारक लोग हैं, है ना, जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं और जिन्होंने भी उसका आविष्कार किया है, वो सभी रट्टू तोता नहीं थे, वो समझते थे और उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रटना मत, क्या करना, उसको पूछना,

0: टीचर से पूछना, अपने ट्यूशन टीचर से पूछना, अपने बड़े भैया दीदी से पूछना, अपने चाचा मामा से पूछना, किसी से भी पूछना, जितना हो सके उसको समझने की कोशिश करना। समझोगे तभी अच्छा कर पाओगे। तो समझ में आई आपको बात कि हमको अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना है ना, कुछ रचनात्मकता लाना है, तो हमको जीवन में रट्टू तोता नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है, समझदार बनना है, हर चीज को समझने की कोशिश करना है। तो समझ में आई सबको मेरी बात
1: जी।
0: चलो ताली बजाओ इस बात के लिए। बहुत अच्छी बात है ना, जब मैं आप लोगों के लिए ताली बजवाती हूँ तो आपका भी फर्ज है कि आप अपनी दीदी के लिए क्या करो, ताली बजाओ, है ना। तब मेरे अंदर क्या आएगा, जोश आएगा, तब मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, है ना। तो चलो इसी खुशी में अब हम आगे बढ़ते हैं सामुदायिक गीत की ओर। सुनोगे ना सामुदायिक गीत
1: जी।
0: तो आज का जो हमारा सामुदायिक गीत है वो कन्नड़ भाषा का है और इसके रचनाकार हैं B.R. गीता जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यह कन्नड़ भाषा का सामुदायिक गीत।

0: इस सुंदर से सामुदायिक गीत के बाद अब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की ओर आती हूँ। देखते हैं कि आज हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे हमें सुनाने के लिए क्या लेकर के आए हैं। तो बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
1: यश।
0: यश, यश आप क्या सुनाओगे?
1: एक कहानी और एक कविता।
0: एक कहानी और एक कविता, तो पहले क्या सुनाओगे बेटा?
1: पहले कविता।
0: आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
1: छतरी।
0: अभी बारिश भी आने वाली है तो आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है, छतरी। तो चलिए सुनते हैं यश की जबानी कविता छतरी।
1: आसमान में चमकी बिजली, छतरी लेकर मीना निकली। काले काले बादल आए, चाहे जितना जल बरसाए, धूप बारिश में हमें बचाए, छतरी सबके मन को भाए।
0: बहुत अच्छी कविता, छोटी सी प्यारी सी, है ना। आसमान में बादल छाए, फिर
1: चाहे जितना जल बरसाए,
0: चाहे जितना जल बरसाए, मतलब आसमान में जितना भी बादल छाए और वो बादल कितना भी जल या बारिश बरसाए, लेकिन हम नहीं भीगेंगे। क्यों नहीं भीगेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या है?
1: छतरी।
0: छतरी है। तो सुंदर सी कविता के लिए यश के लिए ताली बजाएंगे। अब यश हमको कहानी सुनाने जा रहे हैं। बेटा, आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
1: प्यासा कौआ।
0: चलो बेटा सुनाओ।
1: एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, एक कौआ बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। काफी देर बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौआ घड़े के पास गया और अंदर झांका। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौआ चोंच से पानी पीने की कोशिश करने लगा, पर सफल नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। कौआ पास पेड़ पत्थर एक एक करके घड़े में डालने लगा। पत्थर डालने से पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। कुछ समय बाद पानी ऊपर आ गया। कौआ खुशी खुशी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। इस तरह कौवे ने बुद्धि से समस्या का हल निकाला।
0: बहुत ही अच्छी कहानी, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। कौवा इतना प्यासा था, अभी गर्मी है, अभी बारिश स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तो तपता जून है ना, और इस जून में हम सबको प्यास लगता है, सब प्यासे हो जाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही वो कौवा भी प्यासा था और उस प्यासे कौवे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी प्यास को बुझा लिया। तो यश के लिए फिर से सब जोरदार ताली बजाएंगे। यश के बाद अब कौन है? बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: हर्षित।
0: हर्षित, हर्षित आप क्या सुनाओगे?
2: एक कहानी और एक कविता।
0: आप भी एक कहानी और एक कविता सुनाओगे, तो बेटा पहले क्या सुनाओगे?
2: कहानी।
0: कहानी, आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
2: चतुर खरगोश।
0: चतुर खरगोश, ठीक है बेटा सुनाओ।
2: बहुत समय पहले एक जंगल में शेर और अन्य जानवरों के बीच समझौता हुआ कि शेर के भोजन के लिए रोज एक जानवर उसकी गुफा में जाएगा। एक दिन जब खरगोश की बारी आई तो उसे दुष्ट शेर को खत्म करने का एक उपाय सूझा। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर भूख से तड़प रहा था। वह खरगोश को देखते ही गुस्से से बोला, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों कर दी? खरगोश धीरे से बोला, महाराज क्या करूं, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर यहां पहुंचा हूं। दूसरा शेर कहां रहता है? ये दूसरा शेर, शेर घुर्राते हुए बोला, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। खरगोश ने कहा। शेर खरगोश के साथ तुरंत चल पड़ा। खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच गहरे तालाब के पास ले गया और बोला, महाराज आइए वहाँ देखिए। जैसे ही शेर ने तालाब में झुक कर देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया और गुस्से में तालाब में छलांग लगा दी। तालाब गहरा होने के कारण शेर की मौत हो गई।
0: इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
2: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए।
0: बहुत अच्छी कहानी बेटा, है ना? अगर वो जो खरगोश है वो डर जाता, है ना, घबरा जाता, तो क्या वो अपना जान बचा पाता? ना वो अपना जान बचा पाता और ना ही अपने लोगों का। लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस आदमखोर शेर से ना कि अपनी जान बचाई वरन पूरे जंगल के जानवरों की जान बचा ली। तो हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही सुंदर कहानी, हर्षित के लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे। हर्षित अब हमको एक कविता सुनाने जा रहे हैं। बेटा आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
2: छोटी सी सोच।
0: छोटी सी सोच, ठीक है बेटा सुनाओ।
2: छोटी सी सोच को दूर भगाओ, बड़े सपनों को दिल में बसाओ, मेहनत को अपने साथी बनाओ, हर मुश्किल में मुस्कुराओ, गिरो अगर फिर उठ जाना, हर से कभी घबराना, हौसला से जो आगे बढ़ता है वही जीवन में जीतता है।
0: बहुत सुंदर कविता, हौसले से जो आगे बढ़ता है वही जीवन में जीतता है। तो हमको कभी भी अपने हौसले को खोना नहीं है, है ना? हम कभी भी गिरे तो हमें फिर से उठना है और उठ करके ऐसे भागना है कि हम कभी भी गिरे नहीं, है ना? तो हर्षित के लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे। हर्षित के बाद बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: अंशिका।
0: अंशिका, अंशिका क्या सुनाओगी आप?
3: कहानी और कविता।
0: कहानी और कविता, बेटा पहले क्या सुनाओगी?
3: कहानी।
0: कहानी, आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
3: सच्ची मित्रता।
0: चलो बेटा सुनाओ।
3: एक राजा और उसका मंत्री बहुत अच्छे मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते थे। उनकी तरह उनके बेटे भी एक साथ बड़े हुए और बहुत करीबी दोस्त बने। एक दिन दोनों शिकार पर गए। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वे थक गए, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। मंत्री का बेटा पानी की तलाश में गहरे जल में चला गया। एक झरने के पास पहुंचकर उसने एक सुंदर परी को देखा, लेकिन परी के पास एक शेर बैठा था। उसने धीरे से झील से कुछ पानी निकाला और अपने दोस्त के पास वापस लौट आया। उसने राजा के बेटे को घटना सुनाई और उसे झरने के पास ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शेर परी के गोद में सो रहा है। उन्होंने परी को महल में ले जाने का फैसला किया, जबकि मंत्री का बेटा शेर के साथ ही रहा। थोड़ी देर बाद जब शेर उठा तो लड़के ने कहा कि उसका दोस्त परी को महल में ले गया है। शेर फिर हंसा और उससे कहा कि अगर राजा का बेटा सच्चा दोस्त होता तो वह उसे शेर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसने तीन मित्रों, एक राजा, एक पुजारी और एक भवन निर्माता की कहानी सुनाना शुरू किया, जिन्होंने दोस्ती का सही अर्थ दिखाया और अंत तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कहानी एक बड़ा सबक देती है कि हमें अपने दोस्तों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए।
0: हमें अपने दोस्तों का चयन कैसे करना चाहिए? बहुत ध्यान से, है ना? क्योंकि अगर हमारा दोस्त गलत हो गया तो हम भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे, और अगर हमारा दोस्त सच्चा है तो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, है ना? भले हमारे माता पिता हमको कितनी अच्छी शिक्षाएं देते क्यों ना हो, लेकिन अगर हम घर के बाहर निकलते हैं और एक दोस्त हमारा गलत निकल जाता है तो लोग क्या बोलते हैं? भले हम अच्छे हैं, हम उसके साथ रह के गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वैसों के साथ रहते हैं तो क्या बोलते हैं? वो ना उसके साथ रहता है ना, तो वो भी वैसा हो गया है।

0: तो कोशिश करना है बेटा कि पहले तो हम गलत संगति से दूर रहें, और अगर हमको ऐसे लोगों के साथ रहना भी पड़े तो हमको उनके जैसा नहीं बनना है, और कोशिश करना है कि हम उनकी बुराइयों को दूर करके उनको अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो अंशिका की सुंदर कहानी के लिए, अंशिका के लिए सब ताली बजाएंगे। बेटा आप एक कविता भी सुनाने वाली हो?
1: जी।
0: आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
1: जंगल के राजा की।
0: जंगल के राजा की, ठीक है बेटा सुनाओ।
1: जंगल के राजा की आज है सगाई, सबको बंदी खूब मिटाई। कब से था जिसका इंतजार, आज सब देंगे राजा को बधाई। फोटो लेंगे सांपों के राजा, हाथी बजाएंगे बैंड और बाजा। गलती से तुम भूल न जाना, भालू परोसेगा सबको खाना। बंदर सब होंगे दरबारी, लोमड़ी पहन के आएगी सारी। कोयल जब शुरू करेगी गाना, तब जमेगी महफिल सारी। सच धज के हम भी जाएंगे, तोहफा भी देकर आएंगे, नाच गाना खाना और पीना खूब धमाल मचाएंगे।
0: बहुत सुंदर कविता है ना। क्या है आपकी कविता का शीर्षक? जंगल के राजा। कौन है जंगल का राजा?
1: शेर।
0: शेर है ना। इस सुंदर सी कविता के लिए एक बार फिर से अंशिका के लिए सारे बच्चे जोरदार ताली बजाएंगे। अंशिका के बाद आप कौन है, कौन हमें सुनाएगा? बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: जॉय।
0: जॉय आप क्या सुनाओगे?
2: अम्मा।
0: अम्मा, अम्मा कहानी है कि कविता है?
2: कविता।
0: कविता, चलो बेटा सुनाओ।
2: अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही है क्यों, पुरवाई भीग रही है डाली डाली, ऊपर खाली घटा धीरी है, नीचे फैली हरियाली, भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन।
0: क्या है आपकी कविता का शीर्षक? अम्मा है ना। तो कौन बोल रहा है अम्मा को? अम्मा जरा देख तो ऊपर, अम्मा के बच्चे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि बारिश आने वाली है ना, और वो अपनी अम्मा को उस बारिश को दिखा रहे हैं, बारिश के बारे में बता रहे हैं, है ना। आप बताते हो अपनी अम्मा को?
3: नहीं,
0: नहीं बताते। क्यों? मम्मी बारिश होने वाली है, बाहर कपड़ा सूख रहा है उठा लो, मम्मी बारिश होने वाली है, बाहर में ये सूख रहा है उठा लो। तो यही तो चेतावनी होती है बेटा अपनी मम्मियों के लिए, है ना। तो सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना, सारे बच्चे करते हैं, अपनी मम्मी पापा को बारिश से आगाह करते हैं, साथ में अपनी मम्मी पापा को बारिश की अच्छाइयों को भी बताते हैं। क्या अच्छाइयाँ भीगेंगे, मजा आएगा, क्या अच्छाइयाँ, देखो कितनी हरियाली है, बारिश आएगी। बच्चे भी बताते हैं और कभी कभी मम्मी पापा भी बताते हैं। क्या बोलकर बताते हैं? बेटा बारिश आना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई कोई बच्चे बारिश से बहुत घबराते हैं, छी कीचड़, छी गंदा पानी, ऐसे बोलते हैं। तब मम्मी पापा समझाते हैं कि बारिश अगर कीचड़ लाती है तो बारिश हरियाली भी लाती है कि नहीं। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा हो जाएगा, और सूखा होगा तो खेत खलिहान भरेंगे, पत्तों में हरियाली आएगी नहीं, सब तरफ सूखा सूखा रहेगा। तो बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। तो जॉय के लिए सब ताली बजाएंगे। बच्चों से हमने बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं सुन ली। तो अब समय है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारा फिल्मी गीत, है ना। तो समय है फिल्मी गीत का, जो कि हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए सुनते हैं बच्चों की पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा फिल्मी गाना।

0: इस सुंदर से फिल्मी गीत के साथ ही हमारा आज का यह बालवाड़ी कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। इस वादे के साथ कि अगले रविवार ठीक सुबह 9 बजे इसी बालवाड़ी कार्यक्रम में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं 19 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई फिल्म पीके की गीत, और बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। तो आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत।

पीके फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी। इस फिल्म के मधुर गीतों की रचना की है स्वानंद किरकिरे, अमिताभ वर्मा और मनोज मुंतशिर ने, और इन गीतों को संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा, अजय अतुल और अंकित तिवारी ने। तो आइए सुने अंकित तिवारी के स्वर में ये गीत।

इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए आमिर खान, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, बोमन ईरानी, सौरभ शुक्ला और संजय दत्त ने। तो पेश है इस फिल्म का एक और गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

पीके फिल्म के गीतों को गाया है सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शान, सौरभ खान और अंकित तिवारी ने। तो कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सौरभ खान की आवाज में ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पीके फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के जरिए सबसे अधिक दर्शक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना था। इसके जरिए विश्वभर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करने का प्रयास किया गया। यह ऑनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक आयोजित किया गया। इसमें करीब 130 देशों से भागीदारी की गई। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में NHM कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर NHM कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने NHM कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नवागढ़ विकास खंड के ग्राम पोड़ी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सत्य निज सत्संग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से ही शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बस्तर सहित तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक किसान शामिल हुए। यहां पारंपरिक, उन्नत और हाइब्रिड किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र रहे। सांसद महेश कश्यप ने प्राकृतिक रूप से तैयार आमों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जैविक खेती और आम से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की जानकारी भी दी गई। नया रायपुर के सिंध लेक में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर एवं सब जूनियर प्रतियोगिता के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। सब जूनियर बालक वर्ग के C2 500 मीटर में दीपक और लक्ष्य की जोड़ी ने, जबकि C4 500 मीटर में सैमसंग तोरण साहू, गणेश साहू और लाइसिम्बा की टीम ने स्वर्ण हासिल किया। प्रतियोगिता में 24 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शक्ति जिले के मालखरौदा के छापोरा में भारतीय स्टेट बैंक की फर्जी शाखा संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पहले भी मुख्य आरोपी अनिल भास्कर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खरवे गांव में कथित जहरीली शराब पीने से 4 महीने के भीतर 8 ग्रामीणों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मामले की जांच के लिए कसडोल थाने का घेराव भी किया था। ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए शनिवार को पुलिस और राजस्व अफसरों की मौजूदगी में शव को कब्र से खोदकर निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया और जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज हम आपको सुनवाते हैं नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म द स्काई इज पिंक से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की। गुलजार के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है प्रीतम ने।

शादी में जरूर आना। इस फिल्म का गीत सुनिए असित त्रिपाठी के स्वर में। गीत रचना शकील आजमी की और तर्ज बनाई है रशीद खान ने।

अब सुनिए निर्माण का लिखा गीत करण सहम्बी की आवाज में। संगीत गोल्ड बॉय का, फिल्म है लुका छुपी।

अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए फिल्म जबरिया जोड़ी का गीत। गीत राजशेखर के और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने।

0: ड्रीम गर्ल। इस फिल्म के लिए अपनी आवाजें दी हैं मीत ब्रोस और अमित गुप्ता ने। नगमा निगार कुमार और मौसीकार हैं मीत ब्रोस।
1: गोकुल की राधा चली, ओ चली चली चली गोकुल की राधा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म बरेली की बर्फी का गीत, आवाजें अर्कू की, गीत और संगीत अर्कू का ही।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नए तराने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति है सुखेंदु मलिक की। संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर। नदी कभी पूछती नहीं रास्ता, वह अपना मार्ग बना लेती है। जो इंसान ठान ले कुछ करने की, वह अपनी मंजिल पा लेता है। हौसले बुलंद रखो, मंजिल खुद करीब आएगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाएगी। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं हाजिर हूं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत लेकर। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला फोन कॉल किन श्रोता का है।
3: हेलो।
4: हाँ सर जी, नमस्कार। सर जी
3: नमस्कार,
4: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया से।
3: पवन कुमार सेन जी?
4: जी सर जी सर।
3: तो बताइए कैसे हैं पवन जी?
4: बहुत सुंदर हूँ सर, बहुत। और एक नंबर भी मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। और इसमें क्या है सर, जगदलपुर का नियमित श्रोता हूँ, बस मोबाइल के द्वारा बस दिन भर खोया रहता हूँ।
3: बिल्कुल, हमारे पूरे कार्यक्रम सुनते हैं आप?
4: जी सर सुनता हूँ, और खास करके सुनता हूँ फोन इन चाहत, श्रोता सुमन कार्यक्रम, पत्रांकन कार्यक्रम।
3: अच्छा,
4: और नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नियमित सुनता हूँ सर।
3: हाँ, कौन से कार्यक्रम आपको बेहद पसंद है हमारी आकाशवाणी जगदलपुर के?
4: सबसे अच्छा लगता है मेरे को सर नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम। हाँ, और श्रोता सुमन कार्यक्रम। इसके साथ साथ सर पत्रांकन कार्यक्रम में विशेष रुचि रखता हूँ मैं, और जैसा भी बन पड़ता है अपना छोटे मोटे टूटी फूटी भाषा में समीक्षा करने का एक प्रयास जारी रखा हूँ और करते रहता हूँ सर।
3: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि श्रोता सुमन तो सुनते ही है। मन में आप लोगों का पत्र हम पढ़ते हैं, आपका नाम भी आता है, साथ ही साथ क्या है पत्रांकन बोले आप, पत्रांकन में आप लोगों का ही लिखा हुआ पत्र, समीक्षात्मक पत्र।
4: जी सर,
3: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
4: हाँ तो भरोसा फिल्म का गीत सुनवा दीजिए सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में।
3: हाँ, मोहम्मद रफी की आवाज में कौन सा गीत?
4: ये झुकी झुकी नैना, ये लत बल खाती तो दिल क्यों न मेरा

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो।
3: हाँ हेलो,
2: मैं चिरमिरी कुरासिया जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह
3: जी जी,
2: और अपना पसंद के गीत है सर, फिल्म का नाम है सर, गीत के बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सानू।
3: और बताइए चंद्रभान जी, आप क्या करते हैं?
2: मैं सर एसी फिल्म में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न पावर फिल्म में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ।
3: हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए टाइम निकाल लेते हैं?
2: जी सर निकाल लेता हूँ सर, छोटा सुमन हो गया और फोनिंग कार्यक्रम हो गया, सब सुनता हूँ सर, बारी बारी से सुनते रहता हूँ।
3: अच्छा,
2: बहुत अच्छा लगता है, प्रस्तुति अच्छा लगता है, और इसका जो आपके केंद्र से जो फिल्म संगीत के कार्यक्रम है, जानकारी से संबंधित हो, खेती बाड़ी से संबंधित हो, और आप लोग अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र का बोली के बारे में जो जानकारी देते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
3: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: हेलो
2: हेलो, मैं आकाशवाणी से सुखेंदु मलिक बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार सर, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
2: हाँ हाँ, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
2: जी जी जी, बाबू यादव जी।
1: जी सर,
2: और बताइए कैसे हैं बाबू राम जी?
1: बढ़िया सर, और आप कैसे हैं?
2: बस आप लोगों की दुआएं हैं, हम भी बढ़िया हैं। और बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सर आज हमको सुनना है फिल्म जहर का एक गीत है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अच्छा। ये श्रेया घोषाल जी ने गाया हुआ है।
2: आवाज में।
1: जी जी, और सर दो लाइनें भी कहना चाहूंगा इजाजत देंगे तो।
2: जी जी बिल्कुल बोलिए।
1: कि पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, और तिथि में ग्यारस की बात ही कुछ और है, और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, और यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया
1: जी।
2: और बताइए गर्मी के मौसम में अभी हालचाल क्या है आपके शहर का?
1: शहर में सर तो गंगा जी के किनारे लोग शाम को चले जाते हैं तो थोड़ा आनंद आ जाता है।
2: जी जी,
1: और वैसे तो गर्मी कुछ कम है, कल बारिश हुई थी तो आज गर्मी कम है।
2: हाँ, बीच में बारिश हुई है तो मौसम में करवट बदली है, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा।
1: हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, अभी कल बारिश हुई थी तो आज मौसम सुहाना हो गया है।
2: जी जी जी,
1: और वैसे हम लोग गंगा जी किनारे घाटों पर जाकर बैठ कर सुबह शाम आनंद आता है।
2: वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है। ये हर साल हम मनाते हैं 14 जून, यानी आज ही के दिन विश्व रक्तदाता दिवस, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे?
1: देखिए रक्त तो सभी के लिए जरूरी है।
2: जी जी जी,
1: और कभी कभी कोई सीरियस हो जाता है तो उसको अतिरिक्त रक्त की जरूरत होती है।
2: जी बिल्कुल,
1: तो
2: है।
1: जो लोग रक्त दान करते हैं तो बहुत नेक काम करते हैं और सभी को करना चाहिए।
2: वाकई में।
1: और जो भ्रांतियाँ इसमें वो गलत है, भ्रांतियाँ कुछ नहीं है,
2: रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके देखिए, बड़ा अच्छा लगे।
1: हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए,
2: हमारे द्वारा अगर किसी की जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात
1: है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक काम है।
2: जी जी जी, इसलिए हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। तो ये सुनिए आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस

0: बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
2: RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो, फोन इन चाहत से मैं सुखेंदु मलिक बोल रहा हूँ।
5: हेलो, फोन इन चाहत।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं?
5: मैं सुखदास पोयाम बोल रहा हूँ, पोंडा गाँव जिला छोटे बनजोड़ा।
4: सुखदास पोयाम बोल रहे हैं
5: जी।
4: और बताइए सुखदास जी, कैसे हैं आप?
5: ठीक है सर।
4: ठीक है, क्या करते हैं वैसे?
5: अभी मैं पढ़ाई करता था, ब्लाइंड।
4: पढ़ाई कर रहे हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप?
5: दसवीं क्लास।
4: अच्छा, दसवीं पास हुए हैं
5: जी, हो गया है।
4: हमारे आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं नियमित रूप से? तो हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
5: अच्छा लगता है सर, हल्बी वाला भी सुनता हूँ सर।
4: अच्छा, हल्बी में हमारे यहाँ से कार्यक्रम आते हैं, बस्तर के सर,
5: हल्बीवाड़ी, सब तो सुनता हूँ सर।
4: हाँ, आमचो गाँव, ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं।
5: मैं ये वाला गाना सुनना चाहता हूँ सर।
4: कौन सा गाना?
5: जब जब मुझको पुकारे वाला।
4: जब जब मुझको पुकारे, तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हेलो।
3: हेलो, नमस्कार सर जी।
2: नमस्कार, आप कौन?
3: राजेंद्र गंगवार।
2: और बताइए राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
3: बस ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। और दो दिन से बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो अच्छा लग रहा है। अभी तक
2: गर्मी में राहत मिल गई।
3: हाँ जी, अभी तो उमस बड़ी गर्मी पड़ रही थी तो उससे राहत मिल चुकी है सर जी।
2: हाँ, ठंडक आ गई है। और बताइए फिलहाल क्या कर रहे हैं?
3: अभी तो कुछ नहीं, थोड़ा काम था वो निपटा दिया, थाली घूम रहे हैं, कल से जरी का काम करें। वैसे तो जरी का काम करते हैं सर जी।
2: जरी का काम करते हैं, क्या क्या बनाते हैं?
3: हाँ जी।
2: हाँ, किस में जरी करते हैं?
3: कपड़े पर।
2: अच्छा, कपड़े में।
3: लहंगा हुआ।
2: जी जी जी।
3: हाँ जी, जिसको कली बनती है और
2: ये महंगी होती
3: है। हाँ सर जी, महंगी तो होती है, जब कढ़ाई उस पे लगता है, इतना महंगा महंगा मटेरियल लगता है, कोरा है, दबका है, रेशम है, कसब है।
2: जी जी जी, बारीकी वाला काम होता है और हाथों से किया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये महंगी तो है ही है।
3: हाँ जी।
2: और बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा प्रेम रोग, गाने के बोल रहेंगे, भवरे में खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, इसमें कुछ दोस्तों के नाम शामिल करना चाहते हैं सर जी।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए।
3: हाँ जी, सबसे पहले तो भगवान सिंह परमार जी हैं, सारनूर अंसारी जी हैं और हमारे लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं, साथ में आप हो और आरजे पूनम जी कानपुर से हैं।
2: चलिए फिर आप सब मिलकर सुनिए आपकी पसंद का गाना आपके ही रेडियो सेट पर।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो
3: हेलो, नमस्कार सर जी।
2: नमस्कार, और बताइए पूनम जी, कैसी हैं आप?
3: हम तो नैनीताल में है सर जी, नैनी झील में हम लोग बोटिंग कर रहे हैं।
2: क्या बात है, आप तो वैसे मेरे ख्याल से महीने में कम से कम अधिकतर दिन बाहर ही रहते हैं और घूमने के बहुत शौकीन हैं आप, तो जब भी आपसे बात होती है आप कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं।
3: हाँ सर जी, नहीं अभी तो छुट्टियां हैं ना, तो हम लोग 20 अप्रैल को निकले थे, आ जाएंगे 20 तारीख तक के।
2: अच्छा, 20 तारीख तक आ जाएंगे, क्या बात है। तो वैसे अभी आप कहाँ पर घूम रहे हैं?
3: नैनीताल में सर जी, नैनी झील में।
2: वाह वाह वाह, वहाँ का मौसम का फिर क्या कहना,
3: बहुत ही सुंदर नजारा है सर जी, यहाँ की वादियाँ
2: वाकई नजर आती है। कि अगर खूबसूरती देखने जाना है, खूबसूरती अगर देखना है तो नैनीताल जाओ।
3: इसमें एक एक चीज में सर जी, यहाँ कोई भी चीज है ना, हर एक चीज में खूबसूरती नजर आएगी सर जी, बस देखने का नजरिया अपना अच्छा होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।

0: था वहां,
1: हाँ
0: तो मैं भी इस झील में बैठा बोर्ड में, बहुत मजा आया वहां पर। तो आप भी उसका आनंद लीजिए और बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: अब हम तो नैनीताल में, तो सर जी इसी से संबंधित एक गीत है सर जी, होगी प्यार की जीत।
0: फिल्म का नाम है
1: हाँ फिल्म का नाम है, अरिजीत है, तालों
0: जी जी जी
1: में
0: क्या बात
1: नैनीताल।
0: है, जिस जिस शहर में आप हैं वहीं का गीत सुनना चाहते हैं।
1: हाँ
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: बाय।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फोन इन चाहत से सुखेंदु मलिक बोल रहा हूँ। आप कौन?
0: जी मैं अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ, परमा चौक लोहारी डीहा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से।
1: अशोक कुमार साहू,
0: जी
1: और बताइए
0: जी सर।
1: क्या हाल चाल है आपके?
0: जी सब तो अच्छे हैं सर जी, और गर्मी बढ़ा हुआ है। नहीं
1: हाँ, अभी बारिश हुई है क्या बीच में?
0: अभी तो नहीं हुआ सर जी, बस इंतजार कर रहे हैं उसी का।
1: हाँ, फिर तो बहुत गर्मी होगी अभी।
0: जी बहुत ज्यादा गर्मी है सर जी, 9 टप्पा से 10 टप्पा बोले और 11 टप्पा बोले तो भी चलेगा।
1: ये भी बढ़िया है, बहुत
0: जी
1: अच्छी बात है कि
0: जी
1: 9 तपा से 10 तपा, 11 तपा सब अधिक बढ़ गया है।
0: जी
1: तो अभी बारिश ने दस्तक नहीं दिया आपके शहर में, बस हमारे बस्तर में तो बारिश हो रही है वैसे।
0: नहीं मेरे को मालूम है सर जी कि बस्तर में एक बार और मेरा बात हुआ था हेलो युवानी कार्यक्रम में,
1: जी,
0: तो बारिश हुआ है ऐसा जानकारी मुझे मिला था।
1: और बताइए, आज के दिन हम मनाते हैं 14 जून को, हम मनाते हैं
0: जी
1: विश्व रक्तदान दिवस। तो आपने
0: जी सर
1: कभी
0: जी
1: रक्तदान किया है?
0: जी मैंने रक्तदान तो नहीं किया हूँ सर जी अभी तक।
1: अच्छा, रक्तदान करके देखिए, आनंद आता
0: जी
1: है
0: सर जी
1: कि हमारे दिए रक्त से किसी का जान बच जाता है, तो बहुत
0: जी
1: बड़ी बात
0: बिल्कुल
1: है।
0: सर जी, हम चाहते हैं कि इसमें हम जरूर भूमिका निभाते हैं सर जी। हम बोलते हैं कि लेकिन हम मैं आज तक किया तो नहीं हूँ रक्तदान।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा
0: जी
1: कर्तव्य है, दायित्व भी बनता है कि हमको रक्त देना चाहिए।
0: जी
1: चलिए, आपके लिए रक्तदान के बारे में मैं भी कुछ लाइनें,
0: जी
1: मुझे भी याद आ रही है रक्तदान के बारे में, कि रक्तदान करो
0: जी
1: संकल्प महान, इससे
0: जी
1: बच सकता है किसी का प्राण, जीवन में इससे बड़ा नहीं कोई दान, जे अर्थों में यही है महादान। तो मैं
0: बिल्कुल
1: यही
0: सही लाइन है
1: कहना
0: सर
1: चाहूंगा कि आप भी रक्तदान करिए।
0: जी सर जी, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे सर अगले बार रक्तदान करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए अशोक जी, आज आप कौन सा गीत के लिए फरमाइश किए हैं?
0: गीत सर बारिश हिसाब से कोई गीत ऐसा सुना दो जो बारिश संबंधित हो। बरसो रे मेघा मेघा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: करणवीर सिंह पॉल, जलंधर पंजाब से।
1: और बताइए, पंजाब का मौसम कैसा है अभी?
0: मौसम सर अभी तो रात से ठीक हो गया। रात को बहुत आंधी भी आई और बारिश भी हुई कुछ, तो
1: अच्छा, ठंडक मिल गई
0: पहले तो
1: यानी
0: बहुत
1: कि।
0: गर्मी थी, इधर तो 45 टेम्परेचर हो गया था,
1: अच्छा,
0: लेकिन रात की बारिश होने से अभी 30 हो गया टेम्परेचर।
1: तापमान कम हो गया है, ठंडक मिल गई
0: पहले से
1: आपको।
0: ठीक हो गया मौसम।
1: जी,
0: आपके मौसम जान कैसा है? हाँ,
1: मतलब बारिश हुई तो ठंडक आ गई है,
0: ठंडक आ गई है।
1: बहुत अधिक
0: ठंड,
1: नहीं हुई लेकिन मौसम ने अंगड़ाई ली और अभी फिलहाल तो मौसम सुहाना
0: चलो
1: है।
0: बहुत बढ़िया हुआ। सबको तपस से थोड़ी राहत मिली।
1: जी, और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: गाना सारा सुना। देखो, फिल्म का नाम है निकाह।
1: निकाह।
0: उसके जीत की बोल है, चुपके चुपके रात देना सुबहाना जागा है।
1: तो लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: हाँ, फोन इन चाहत से मैं सुखेंदु मलिक बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, सुखेंदु मलिक जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आप कौन
0: जी? मैं गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव बोल रहा हूँ सर।
1: जी जी टी राजू राव, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
0: जी सर, मैं आपके आकाशवाणी जगदलपुर का बहुत पुराना श्रोता हूँ सर।
1: और क्या करते हैं?
0: जी, मेरा बुक स्टॉल है सर।
1: अच्छा, बुक स्टॉल है आपका?
0: जी सर।
1: अच्छा, ये कहाँ पर है?
0: अपना गीदम रोड में ही है सर।
1: अच्छा, गीदम रोड में ही है। तो अभी स्कूल खुलने का टाइम हो गया है?
0: हाँ सर।
1: फिर आपका बिजनेस पे भी चार चांद लगने वाले हैं अभी?
0: हाँ सर, अब मतलब शुरुआत हो चुका है सर,
1: जी जी
0: अब
1: जी
0: चल रहा है। वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं सर, लेकिन आपका आकाशवाणी जगदलपुर का मैं हर कार्यक्रम सुनता हूँ सर।
1: ये अच्छी बात है कि आप समय निकाल के हमारे आकाशवाणी के पूरे कार्यक्रम सुन लेते हैं।
0: जी जी सर, मैं बिल्कुल सुबह मतलब 10 बजे से लेकर रात को कम कम 9 बजे तक के तो सुनता ही हूँ सर। फिर घर जाके फिर रात का जो फरमाइशी कार्यक्रम होता है उनको
1: जी
0: भी
1: जी जी
0: सुनता हूँ सर मैं।
1: बहुत बढ़िया कि बिजी रहने के बाद भी आप समय निकाल ही लेते हैं।
0: जी
1: और
0: सर।
1: वैसे तो दुकान में आप रेडियो रख सकते हैं?
0: हाँ चलता है सर, रेडियो
1: हाँ,
0: चलता है, मोबाइल रखता हूँ और
1: मोबाइल पे
0: रेडियो
1: भी
0: भी
1: आता है,
0: रखता हूँ
1: आप
0: सर।
1: मोबाइल ऑन करके भी सुन सकते हैं और
0: जी
1: साथ
0: सर।
1: में आपका काम भी होते रहेगा। ये तो
0: जी सर,
1: अच्छी
0: जी
1: बात है।
0: सर।
1: हाँ, वैसे कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है हमारे आकाशवाणी केंद्र के?
0: वैसे तो सर सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं, खासकर मुझे यूथ का जो युवानी प्रोग्राम है सर वो बहुत पसंद आता है सर।
1: अच्छा, युवाणी पसंद है आपको।
0: जी सर।
1: और
0: और
1: श्रोताओं
0: उसके
1: मंजूर
0: बाद
1: हैं कि
0: जो
1: नहीं?
0: रात का कार्यक्रम है सर, उसको मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ सर, क्योंकि रात को क्या कुछ थोड़ा सा मतलब कस्टमर लोग ज्यादा आते हैं,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: थोड़ा ठीक से सुन नहीं पाता हूँ सर।
1: जी और हमारे श्रोता सुमन जो फरमाइशी पत्रों पर आधारित होता है, वो
0: जी
1: कार्यक्रम
0: सर,
1: सुनते हैं कि नहीं?
0: वो तो मेरा बहुत प्रिय प्रोग्राम है सर वो।
1: चलिए, ये तो अच्छी बात है।
0: जी सर, श्रोता सुमन, आज मैं तो आपका आवाज का कायल हूँ सर।
1: धन्यवाद।
0: आप जी, आप जो सबसे पहले तो मैं एम ए रहीम जी का भी शुक्रगुजार गुजार हूँ कि उन्होंने भी काफी समय तक के अपने आवाज से हमें बहुत उत्साहित किया सर।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: उसके
1: सही
0: बाद
1: कहा
0: के
1: आपने।
0: परेश जी हैं, आप हैं,
1: जी जी
0: तो आप लोगों ने इतना अच्छे ढंग से मतलब वो कार्यक्रम पेश करते हैं सर, जो हमें सुनकर बहुत आनंद आ जाता है सर।
1: चलिए, हमारी कोशिश होती है कि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगे और पसंद आए।
0: जी सर।
1: वैसे आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: सर मुझे पुष्पा फिल्म का गीत सुना दीजिए सर,
1: पुष्पा फिल्म का कौन सा गीत?
0: सामी सामी वाला सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं पीजी देश में बोल रहा हूँ, ऊंचे का बुजुर्ग, तालुका आदगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से।
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से, और बताइए देशमुख जी,
0: बताइए क्या सर? अभी मानसून तो नहीं आया हमारे महाराष्ट्र में, तो थोड़ा वो आ गया, हमारे इधर नहीं आ गया, नांदेड़ में तो नहीं आया।
1: हाँ वाकई में मानसून अभी हर जगह नहीं पहुंचा है, तो गर्मी काफी होगी।
0: गर्मी तो बहुत है, 43 तापमान है अभी। तो अरे गाना सुनना है सर मुझे, फिल्म का नाम है अनाड़ी।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
0: अभी क्या मौसम आया है, हाँ गौतम राय बोले, गुणवंत कड़ू और टेकचंद अग्रवाल, लोकेंद्र वर्मा और गंगाधर सावनकर जी, तुकाराम जाधव।
1: तो चलिए आप सभी दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अनाड़ी फिल्म का ये गाना।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत यहीं समाप्त होता है। आप सभी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जो श्रोता अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाए हैं, उन श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि वे अगले सप्ताह यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से कॉल कर सकते हैं। फोन इन चाहत कार्यक्रम के लिए नए श्रोता जल्दी से हमारा नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 222-160, दूसरा नंबर है 222-666, एसटीडी कोड है 07782। हम श्रोताओं से ये भी कहना चाहेंगे कि जिन श्रोताओं ने हमें इस सप्ताह कॉल किया है, वे कृपया 4 सप्ताह बाद इस कार्यक्रम में कॉल करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन चाहत। प्रस्तुति थी सुखेंदु मलिक की, संयोजन था चंद्र ऋषि ठाकुर का। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 हुए हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम गुड़दुम में अब लीजिए सुनिए गेलमणि देवी और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

0: पांच बल्ले।
1: कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे गेलमणी देवी और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने की भागीदारी। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस आयोजन का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्वभर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से ही शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आज विश्व रक्तदान दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव माधव ने देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा और श्री जाधव ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान का कल समापन हो गया है। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में 121 ग्रामीण बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देने की अपील की। एनटीपीसी परियोजना प्रमुख स्वप्न कुमार मंडल ने हर वर्ष 10 मेधावी बालिकाओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने श्रमदान कर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। कोरबा कटघोरा मार्ग पर छुरी के पास राखड़ से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कटघोरा पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया। इस दौरान करीब घंटे भर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। रायगढ़ जिले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और मौत को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने की भागीदारी। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। कार्यक्रम रुसरुसा में लीजिए सुनिए लोक गाथा आंधा राजा। गायिका है सुबरी बाई।
1: हरी हरी जय राम राम, ए हरी हरी जय राम राम, मैं राम बोलू न जाए प्रभु हरी बोलू न जाए। झूठा टंडे तो नाम धरे, ए महिल मुंडे तो नाम धरे, जे तुम जो नाम धरे प्रभु तुम जो नाम धरे। आंदा गड़े तो आए ये बे, ए आंदा गड़े तो आए ये बे, जे पुत्र जन्म करली प्रभु पुत्र जन्म करली। काए सुंदर बाबी पीला, ए काए सुंदर बाबी पीला, जे नहा खोरा करे प्रभु नहा खोरा करे। ई सुई न डकरी तो नहा न दिली, ए सुई न डकरी तो नहा न दिली, जे बमली काटू न गेली प्रभु बमली काटू न गेली। ये दे रानी तुम्हें आदिन रानी, ये दे रानी तुम्हें आदिन रानी, जे बाबू के धरा बोले प्रभु बाबी के धरा बोले। ओटीने धरान गेली ये बे, ए ओटीने धरान गेली ये बे, जे अति सुंदर वाय प्रभु दीर्घ सुंदर वाय। एक दिन तो होली ये बे, ए दुए दिन तो होली ये बे, जे बाबी पीला तो वाय प्रभु बाबी पीला तो वाय। ई तीन दिन ने बोले हाँ दे, ए तीन दिन ने बोले हाँ दे, जे कसा खोड़ू क गेलो प्रभु कसा खोड़ू क गेलो। ई आंधा राजा तो गेलो ये बे, ए आंधा राजा तो गेलो ये बे, जे कुड़की धोरू न गेलो प्रभु टंगिया धोरू न गेलो। ई कसा खोड़ू न गेलो ये बे, ए कसा खोड़ू न गेलो ये बे, जे आंधा राजा तो वाय प्रभु आंधा राजा तो वाय। ई कसा खोड़ू

या एक सखाऊ को तुम्हें आजे बाबी पीला तो आए प्रभु बाबी पीला तो आए ये गाँव चो लोगो के सांग ते बे ए पर चो लोगो के सांग ते बे जे लोगो जू न जाओ प्रभु लोगो जू न जाओ आंधा राजा तो घरे ये बे ए आंधा राजा तो घरे ये बे जे चाटी चारे ये वो प्रभु मचीच भारे ये वो इको सखाऊ को इलाए बे एक सखाऊ को इलाए बे जे पारा चलो गो ये वो प्रभु धन चलो गो ये वो याले रानी तो आंदिन रानी ए याले रानी तो आंदिन रानी जे बाबी के दखावा बोलत प्रभु बाबी के दखावा बोलत ई पारा चलो गो तो धरत एवे ए पारा चलो गो तो धरत एवे जे बाबी पीला के आए प्रभु बाबी पीला के आए ई को सा बाटू न गेला एवे एक सा बाटू न गेला ये बे जे कसा दे हुन जाओ प्रभु कसा दे हुन जाओ ई सबु लोग तो खाओ ते बे ए सबु लोग तो खाओ ते बे जे कसा खाऊ न जाओ प्रभु कसा खाऊ न जाओ ई भागो भागो तो हो ते बे ए भागो भागो तो हो ते बे जे लोगो भागु न जाओ प्रभु लोगो भागु न जाओ ये को दिन तो होली ये बे ए को दिन तो होली ये बे जे अपनी मन आसत प्रभु अपने मन आसत आया बोले तुई आंदिन रानी ई बाबा बोले तुई आंदा राजा जे हाम च गोट सुनो प्रभु हाम च बातो सुनो एक दिन तो काये बोलत एक दिन तो काये बोलो तो सातो बेटा बोलत प्रभु सातो बुआरी बोलत इन दिन ने सटी करू ए नह दिन ने सटी करू जे असने बोलू न बोलत प्रभु असने बोलू न बोलत ई पारा चलो गो के हागो देऊ ई गाँव चलो गो के हागो देऊ जे खांडा दान देऊ प्रभु खांडा धान देऊ ई असने बोलू न बोलत ये वे ए असने बोलू न बोलत ये बे जे आंदा राजा तो आत प्रभु आंदिन रानी तो आत ई पारा चो लोगो तो हागो देवोत ए पारा चो लोगो के हागो देवो तो गाँव चो लोगो के आए प्रभु देश चो लोगो के आए ई चाटी मुंडी माए ओत ये वे ए मोची धारो माए ओ ते बे जे पारा चलो गो ये वो प्रभु गाँव चलो गो ये वो ई धान ना पुन देव ते बे ए धान ना पुन देव ते बे जे पारा चलो गो के आए प्रभु गाँव चलो गो के आए ई खंड कने तो लोग ने मोते बे ई दस पोली ने तो लोग ने ते बे जे खांडा धान ने प्रभु खांडा धान ने ई खांडा धान तो नीला ये बे ए कांडा धान तो नीला ये बे जे कांडा खांडू न जाओ प्रभु धान खांडू न जाओ ई चाऊर मन तो कांड ते बे ई चाऊर मन तो कांड ते बे जे पोलक ऊरू न जाए प्रभु दस पोली ऊरू न जाए ई उरलो बीती के सागन देवोत ए उरलो बीती के सागन देवो तो दस पोली आनू न देवोत पोरू पाँच पोली आनू न देवो ई राजा घरे तो आनू न देवोत ए राजा घरे तो

लूजे असने बोलू ना बोलत ओ रघु असने बोलू ना बोलत। ई चारो पांचो दिन ने एबे ए चारो पांचो दिन ने एबे जे काये विचार करत प्रभु काये अकल करत। आया बोले तुई आ दिन रानी ई बाबा बोले तुई आंदा राजा जे हम चो गोट सुना प्रभु हम चो बातो माना। ई नह दिन ने सटी करू ए नह दिन ने सटी करू जे बाबीच बोलू न बोलत प्रभु बाबीच बोलू न बोलत। ई बाबा बोले तुई आंदा राजा ई बाबा बोले तुई आंदा राजा जे मचो बातो सुन प्रभु मचो गोट सुन। ई दिसरी घरे तुई जावे बाबा ए पंजयार घरे तुई जावे बाबा जे नाम पूछू न जासे बाबा नाम पूछू न जासे। ई असने बोलू न बोलत एवे ए असने बोलू न बोलत एवे जे सातो बेटा बोलत प्रभु सातो बुआरी बोलत। ई आंदा राजा तो विचार करलो ए आंदा राजा तो विचार करलो जे सन कारुन गेलो प्रभु नहा धुआ होलो। ई नहा धुआ तो होलो एवे ए नहा धुआ तो होलो एवे जे आंदा राजा तो आय प्रभु आंदा राजा तो आय। ई खाना पीना तो करे एवे ए खाना पीना तो होलो एवे जे पंजयार घरे जाए प्रभु पंजयार घरे जैसे। ई जाओ तो जाए एवे ए जाओ तो जाए एवे जे पंजयार घरे जाए प्रभु पंजयार घरे जाए। ई बाबू बोले तुई दिसरी बीला ए बाबू बोले तुई पंजयार पीला जे मचो गोट सुन प्रभु मचो बात सुन। ई पंजयार पीला तो दोखुन जाए ए दिसरी पीला तो दोखुन जाए जे विनती करुन जाए प्रभु विनती करुन जाए। ई राजा तुमी तो आंदा राजा ए राजा तुमी तो आंदा राजा जे काये बातो तो आय प्रभु काये गोटो तो आय। ई सांगा राजा तुमी बोले एवे ई सांगा राजा तुमी बोले एवे जे पंजयार बोलू न जाए प्रभु पंजयार बोलू न जाए। ई बाबू बोले तुई पंजयार भीला ई बाबू बोले तुई पंजयार पीला जे पाजी दो खुन जावे बाबू पाजी दो खुन जावे। ई हितले सुना लो पंजयार पीला ए हुतले सुना लो पंजयार पीला जे पाजी खूटो निकराय प्रभु पाजी निकरा न जाए। ई उलटन पुलटन दोखे एवे ए उलटान पुलटान दोखे एवे जे पाजी दो खुन जाए प्रभु पाजी दो खुन जाए। ई मुच नाए तो हाँसे मने ए मुच नाए तो हाँसे मने जे पंजयार पीला तो आय प्रभु पंजयार पीला तो आय। ई कसन बाबू तुई पंजयार पीला ए कसन बाबू तुई पंजयार पीला जे हाँसुन जाले दिलीस बाबू हाँसुन जाले दिलीस। ई असने बोलू न बोले आंदा ए असने बोलू न बोले आंदा जे पंजयार सांगुन जाए प्रभु पंजयार सांगुन जाए। ई काये सुंदर नाम सुबली एकाए सुंदर नाम सुबली दे बाली गाँव रातो आय प्रभु बाली गाँव रातो आय। ई असने बोलू न सांगे एवे ए असने बोलू न सांगे एवे जे पूजरी पीला सांगे प्रभु गुनिया पीला सांगे।
आंदा राजा तो सुने ये बे, ए आंदा राजा तो सुने ये बे, जे सुनू न जाले गेलो प्रभु मन ने हरि कहलो। ई हरि कहो मुन गेलो ये बे, ए हरि कहो मुन गेलो ये बे, जे आंदा राजा तो आए प्रभु आंदा राजा तो आए। ई जय से बाबू जे पुंजयर पीला, ए जय से बाबू जे दिसरी पीला, जे मोए जय से बोले प्रभु मोए जय से बोले। ई अपोलो घरे तो ईलो ये बे, ए अपोलो घरे तो ईलो ये बे, जे पानी दे हुन जावो प्रभु पाहे धो हुन जाए। ई बाबा बोले तुई आंदा राजा, ए बाबा बोले तुई आंदा राजा, जे गोटो सांगु न जावे बाबा गोटो सांगु न जावे। ई काये नावो तो सुबली बाबा, ए काये नावो तो सुबली बाबा, जे सांगु न जावे बोलो प्रभु सांगु न जावे बोलो। ई बेटा बोले तुम्हें सातो जनो, ए बुआरी बोले तुम सातो जनो, जे मचो गोटो सुना प्रभु मचो बातो सुना। ई नीच नाव तो बोले ये बे, ए नीच नाव तो बोले ये बे, जे बाली गाँव रातो आए प्रभु बाली गाँव रातो आए। ई असने बोलू न सांगू न दिलो, ए असने बोलू न सांगु न दिलो, जे आंदा राजा तो आए प्रभु आंदा राजा तो आए। ई सुनू न बोले तो गेला मने, ई हरिक बोले तो होला मने, जे जमा हरिक होला प्रभु जमा हरिक होला। नीजा बोलतो के गेलो ये बे, ए नीजा बोलतो के गेलो ये बे, जे भईन दखलू बोलत प्रभु भईन दखलू बोलत। ईसा तो बेटा तो बोलत ये बे, ईसा तो बुआरी तो बोलत ये बे, जे नानंद दखलू बोलत प्रभु नानंद दखलू बोलत। ई हो एक दिन तो होली ये बे, ए दुए दिन तो होली ये बे, जे तीन दिन होली प्रभु चार दिन होली। ई पाँच दिन तो होली ये बे, ई पाँच दिन तो होली ये बे, जे छय दिन होली प्रभु सात दिन होली। ई आठ दिन तो होली ये बे, ए आठ दिन तो होली ये बे, जे नहमानी होली प्रभु नहमैना होली। ई ओमर कारण करते बे, ईयो सन कारण करत ये बे, जे बेटा मन तो बात प्रभु बुहारी मन तो बात। ई काये सुंदर बूता करला, ए काये सुंदर बूता करला, जे सातो देवरानी जेठानी प्रभु सातो जन तो बात। ई दुआर बोड़ा तो लोगो ये बे, ई दुआर बोड़ा तो लोगो ये बे, जे दुआर बोड़ा न जावो प्रभु दुआर बोड़ा न जावो। ई छोड़ा दे तो लोग बोले ये बे, ई छोड़ा दे तो लोग बोले ये बे, जे छोड़ा दे हुन जावो प्रभु छोड़ा दे हुन जावो। ई बूता भये ना सारत ये बे, ए बूता भये ना सारत ये बे, जे नाहा खोरा होवो प्रभु नाहा खोरा होवो। ई आजी बोले तो सोटी आए, ए आजी बोले तो सोटी आए, जे पारा च लोग के सांगु प्रभु गाँव च लोग के सांगु। ई असनी बोलू न बोलत ये बे, ई असने बोलू न बोलत ये बे, जे घर च लोग तो आत प्रभु घर च लोग तो आत। ई बाबा बोले तुई आंदा राजा, ई बाबा बोले तुई आंदा राजा, जे गाँव ने जाऊं दे बोलो
प्रभु पाराने जाऊं दे बोलत, इसोटी सांगू को जाऊं दे बोलत, इसोटी सांगू को जाऊं दे बोलो तो सातो बेटा बोलत, प्रभु सातो बेटा बोलत, यादा राजा तो सुने ये बे, ए आंधा राजा तो सुने ये बेजे, आंधा राजा तो आए प्रभु, आंधा राजा तो आए, ई पारा भीतरे तो गेला ये बे, ए गाँव भीतरे तो गेला ये बेजे, सटी सांगू न जासत प्रभु, सटी सांगू न जासत, ई हरी हरी जे राम राम, ए हरी हरी जे राम राम, मैं राम बोलू न जाए प्रभु, हरी बोलू न जाए, ई गाँव भीतरे गेला ये बे, ई पारा भीतरे गेला ये बे, जे घर घर बोलत प्रभु घर।

0: घरे जाले ईला प्रभु घरे जाले ईला। आया बोले तुई अंधनी रानी, आया बोले तुई अंधनी रानी, जे मोचो गोट सुनो आया मोचो बात सुनो। ही पारा चलो गो के संगलू आया, ए गाँव चलो गो के संगलू आया, जे पारा ने सांगू न गेलू प्रभु गाँव ने सांगू न गेलू। असने बोलू न बोलता ये बे, ए असने बोलू न बोलता ये बे, जे आंधा राजा के सांगत प्रभु आंधीन रानी के सांगत। ई पारा चलो गो तो सुनत ये बे, ए राज चलो गो तो सुनत ये बे, जे सटी घरे जातोर प्रभु सटी घरे जातो। असने बोला तो बोली ये बे, ए असने बोला तो बोली ये बे, जे सोरो बिचारा होवत प्रभु सोरो बिचारा होवत। ई सांझो बोले तो होली ये बे, ए सांझो बोले तो होली ये बे, जे रातो बोले होय से प्रभु सांझो बोले होय से। ई चकनी चाऊर धरत ये बे, ई चकनी चाऊर धरत ये बे, जे राजा घरे ये वोत प्रभु राजा घरे ये वोत। ई चाटी मुंडी माये सत ये बे, ई चाटी मुंडी माये सत ये बे, जे गाँव चलो गो ये वोत प्रभु पारा चलो गो ये वोत। ई सटी घरे तो जो हो बोलत, ई सटी घरे तो जो बोलो, तो पारा चलो गो तो वात प्रभु गाँव चलो गो तो वात। ई राजा घरे तो ईला ये बे, ई राजा घरे तो ईला ये बे, जे पारा चलो गो तो वात प्रभु गाँव चलो गो तो वात। ई आले रानी तो सोजो बनाऊ, ई आले रानी तो सोजो बनाऊ, जे बाना चीना लीकु प्रभु बाना चीना लीकु। ई पारा चलो गो तो बोलत ये बे, ई पारा चलो गो तो बोलत ये बे, जे बाना लीकु न जावत प्रभु बाना लीकु न जावो। ई हरी हरी जे राम राम, ए हरी हरी जे राम राम, मैं राम बोलू न जाए प्रभु हरी बोलू न जाए। ई बानाली कुन गेला ये बे, ई बानाली कुन गेला ये बे, जे पारा चलो गो तो वात प्रभु गाँव चलो गो तो वात। ई कलस मोडा न गेला ये बे, ई कलस मोडा न गेला ये बे, जे पारा चलो गो तो वात प्रभु गाँव चलो गो तो वात। ई आले रानी तुम्ही आंधीन रानी, ई आले रानी तुम्ही आंधीन रानी, जे कपड़ा लता पींदा रानी कपड़ा लता पींदा। ई योगिन पाटो तो पींदे ये बे, ए सूरज पाटो तो पींदे ये।
1: कार्यक्रम रुसरुसा में अभी आप सुन रहे थे लोकगाथा आधा राजा। लोकगाथा का अगला भाग आने वाले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। लोकगाथा की गायिका थी सुबरी बाई। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नन्ही किलकारियों से गूंजेगा जब घर परिवार, नन्ही किलकारियों से गूंजेगा जब घर परिवार, उसके आने की खुशी में झूमेगा सारा संसार। पर सोचो जरा उस नन्ही जा की माँ का हाल, उसकी सेहत का सदा रखना ख्याल। बहनों, आप सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, ईश्वर से यही कामना करती हूँ। आपसे बातें करूँ करती रहूँ, पर पहले आप सभी का अभिवादन तो कर लूँ। तो बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। और कार्यक्रम में सबसे पहले स्वीकार कीजिए आज आपकी रेडियो साथी गुंजन जैन का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, परिवार में नन्हे मेहमान के आने की खुशी सभी को होती है, और हो भी क्यों ना, नन्हे मेहमान के आने से नए रिश्तों का जन्म भी होता है। सभी यही चाहेंगे कि आने वाला मेहमान स्वस्थ हो, सेहतमंद हो। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है उस मेहमान को लाने वाली माँ का, मतलब जो उसको दुनिया में लेकर आ रही होती हैं, उसका भी स्वस्थ सही रहे और वो भी सेहतमंद हो, तभी तो बच्चा भी स्वस्थ और सेहतमंद होगा। बहनों, आंकड़ों की देखा जाए तो आज भी प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु देखने को मिलती है। जानकारी की कमी और लापरवाही इसकी वजह हो सकती है। माँ है तो जहान है। बहनों, आज हमारी चर्चा का विषय भी रहेगा मातृ स्वास्थ्य पर। कुछ बातों का बहनों ख्याल रखकर माँ और बच्चे दोनों का ख्याल, दोनों का स्वास्थ्य सही रखा जा सकता है। बहनों, जैसे ही हमें पता चले कि कोई भी महिला हमारे आसपास हो या हमारे परिवार में हो गर्भवती है, तो सबसे पहले पास के सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर जांच अवश्य कराएं। साथ ही चिकित्सक के दिशा निर्देश अनुसार जो भी जांच वो कहते हैं उन सभी की जांच करवाएं, और जो दवाइयां डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं उसे समय पर अवश्य लीजिए। कई बार ये होता है कि हम ले तो आते हैं पर ये कहते हैं कि अरे दवाइयां नहीं खानी है, या ज़्यादा दवाई खाएंगे तो इसका असर उल्टा होगा। कई बार आयरन की कमी होती है, उसकी दवाइयां डॉक्टर देती है या विटामिन्स की देती हैं, ताकत की देती हैं, सिरप वगैरह, वो सारी चीज़ें अवश्य लीजिए। और बहनों, किसी भी प्रकार की पीड़ा होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। गर्भधारण के शुरू के महीनों में ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार जैसे दाल, साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही इत्यादि आहार में ज़रूर शामिल कीजिए। जिस आहार की

तासीर गर्म होती है, उनका सेवन करने से बचें। जैसे कि गुड़, पपीता, कहा जाता है कि ये पेट को गर्म करता है, तो शुरू के जो दिनों में गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गर्म चीजें, जिनकी तासीर गर्म होती है, उन चीजों को खाने से बचें, नहीं तो अनावश्यक रूप से गर्भपात हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहनों, कुछ एहतियात बरत के और कुछ सावधानियों के साथ हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। खून की कमी होना, चक्कर आना, ये सारे लक्षण अगर आते हैं तो डॉक्टर हमें आयरन की गोली, जैसे मैंने पहले ही बताया था, लेने की सलाह देते हैं, और सरकारी अस्पतालों में ये दवाएं मुफ्त भी मिलती हैं। तो बहनों, आप बिल्कुल सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल, जैसी आपकी गुंजाइश हो या जैसा आपका बजट बोलता हो वैसा आप जा सकते हैं, और दोनों में ही बहुत ही अच्छी जांच की जाती है और बहुत अच्छे से डॉक्टरों के द्वारा परामर्श दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको अस्पताल जाने से प्राप्त हो सकेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक की सही जानकारी ली जा सकती है। बहनों, इस समय सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अति आवश्यक हो जाता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। योग, हल्के योगाभ्यास और ध्यान लगाइए, जो गर्भावस्था के दौरान किए जाते हैं वो भी करिए, इससे शरीर ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ रहेगा। अब आती है प्रसव की बारी। बहनों, कई जगहों पर देखा गया है कि आज भी घर पे प्रसव करवाए जाते हैं, जो पहले दाइयां आती थी उनके द्वारा करवाया जाता है, ऐसे में जान का जोखिम बढ़ जाता है। अब जब सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो जान का जोखिम क्यों उठाना, अस्पताल में प्रसव करवाइए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। प्रसव के बाद भी कम से कम 48 घंटे डॉक्टरों की निरीक्षण में रहिए और उनकी देखरेख में सही तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, प्रसव के दौरान ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो जाती है, इससे भी जान का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो बहनों, अपनी जान का जोखिम मत लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने और अपनों का स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वस्थ माँ रहेगी तभी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। बहनों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में। बहनों, आइए सुनते हैं फिल्म राजा और रंग का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: होता। डबल रोटी, आरी और छेना, पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़। अदेन के इलाज तले खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता। अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरु गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता। अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरु गाड़ी असित के सस्ता दोर किता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: बहनों, बच्चे के जन्म के साथ ही माता और पिता दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और बच्चे की परवरिश में दोनों की ही अहम भूमिका होती है। बच्चों की परवरिश में माता पिता की भूमिका, ये वार्ता लेकर आई है सृष्टि सोनी। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
6: नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चे की अच्छी परवरिश व अच्छा माहौल देने में माता पिता की क्या अहम भूमिका होती है और वे अपने बच्चे की उचित देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके आसपास के लोग केवल एक ही बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं। डॉक्टर, नर्स, माता पिता जैसे ही बच्चा तेज आवाज में रोते हुए दुनिया में आने का ऐलान करता है तो वे सभी खुशी से झूम उठते हैं। एक माता पिता के लिए अपने बच्चे के रोने की वह पहली आवाज एक यादगार होती है। माता पिता बनने का पहला एहसास होता है जब वो पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथों में लेते हैं और इस तरह माता पिता का एक नया सफर शुरू होता है अपने बच्चे के साथ उसकी परवरिश को लेकर। माता पिता के रूप में हम सभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छी परवरिश दें ताकि वे एक अच्छे इंसान बने। लेकिन अच्छी परवरिश तब होती है जब माता पिता बच्चे के जीवन में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। अच्छी परवरिश बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी होती है। जिम्मेदार माता पिता एक सीमा निर्धारित करते हैं और एक सकारात्मक तरीके से बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आप बच्चे की उपलब्धियों, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, उनकी सराहना करते हैं तो वे उसे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें यह पता चलता है कि आपको उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। माता पिता को अपने बच्चे की बुनियादी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हर बच्चे की तरह हर माता पिता अलग अलग होते हैं। सभी अच्छे माता पिता कुछ आवश्यक गुण साझा करते हैं जो उनके बच्चे को एक जिम्मेदार वयस्क बनने में मदद करते हैं। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता की मुख्य भूमिकाओं को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है भावनात्मक सुरक्षा व प्रेम। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सुरक्षा और प्यार की उम्मीद करता है। माता पिता का स्नेहपूर्ण व्यवहार बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब बच्चे को घर में भावनात्मक सुरक्षा मिलती है तो वह बाहर की दुनिया में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। दूसरा है अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्य। नैतिकता का पहला पाठ घर से ही शुरू होता है। माता पिता जैसा आचरण करते हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, बच्चे अक्सर वही सब सीखते हैं। जो माता पिता को करते देखते हैं। माता पिता को अपने व्यवहार से एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे सही व गलत में फर्क करना सीख सके। शिक्षा और मार्गदर्शन। माता पिता बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। शिक्षा में माता पिता की सक्रिय भागीदारी बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है। उन पर पढ़ाई के लिए दबाव डालने के बजाय बच्चे की रुचि को पहचानना चाहिए और सीखने के अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे के उचित शारीरिक और मानसिक विकास का आधार माता पिता ही तय करते हैं। पौष्टिक आहार, नियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों जैसे खेलकूद में बच्चों का साथ देने से उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके अलावा माता पिता को बच्चों के मानसिक तनाव या परेशानियों को समझकर उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए व उचित सलाह प्रदान कर उन्हें तनाव मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान। माता पिता ही बच्चे को समाज में मिलजुल कर रहना, सहयोग करना और मिलनसार बनना सिखाते हैं। वे बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी है और दूसरे के विचारों का सम्मान करना है। माता और पिता दोनों का समान योगदान। माँ की भूमिका। आमतौर पर माँ अपने बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और उसे धैर्य, देखभाल और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। इसी प्रकार पिता की भूमिका। पिता अक्सर बच्चे को व्यवहारिक दृष्टिकोण, सुरक्षा की भावना और चुनौतियों का डटकर सामना करने का साहस देते हैं। सफल परवरिश के लिए आवश्यक है कि माता पिता बच्चे की तुलना किसी अन्य से न करें, उनकी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर दें। बच्चों को सही नजरिया देना। जब हम बच्चे से बातचीत करते हैं तो हमारे पूर्वाग्रह, हमारे रवैये और आदतें, ये सभी उन्हें आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चे से अक्सर पूछते हैं कि तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर मिले या सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, क्या टीचर ने तुम्हारी प्रशंसा की। इस तरह के सवाल की बजाय यदि हम बच्चे से पूछें कि आज तुमने स्कूल में किसकी मदद की या आज तुमने किसके साथ अपना टिफिन शेयर किया या फिर क्या तुमने दूसरों को खुद से पहले बोलने का मौका दिया। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह के सवाल अपने बच्चों से पूछते हैं जो कि पूछना चाहिए। हम समझदारी और महत्वाकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देते हैं और दयालुता, हमदर्दी और विनय जैसे गुणों पर कम। शायद हमें लगता है कि ये गुण अपने आप ही बच्चे में आ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ये गुण चरित्र के महत्व को उभारने में सहायक होते हैं। बच्चे अपने मन की गहराइयों से समझते हैं कि उनके माता पिता किस बात की ज्यादा परवाह कर रहे हैं और जब माता पिता बच्चे की करुणा और दयालुता से भरे कामों की बजाय उनके अच्छे अंकों या स्कूल में मिले पुरस्कारों की खुशी मनाते हैं तो बच्चे को ये एक छिपा हुआ संदेश मिल जाता है कि उन्हें सच में किस ओर ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है। फिर इसी तरह के परिवेश में बच्चा बढ़ने लगता है। बच्चे को भी जिम्मेदारी दें। अपने बच्चे को नई चीजें सिखाने का काम घर से ही शुरू करें। जब बच्चा कम उम्र का हो तभी से ही उसे अपने साथ घर के कामों में शामिल करें। इस तरह उन्हें बड़े होने पर जिम्मेदारी संभालना आएगा और जब वे थोड़े बड़े हो जाएं तो उन्हें आपके व्यवसाय के काम में मदद करने के लिए कहें। इससे उन्हें अपने पास जो कुछ भी है उसकी कीमत समझ में आएगी और वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागृत होंगे। बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिंग न करें। उन्हें हार का भी सामना करने दें, थोड़ी नुकसानी देखने दें, क्योंकि इन सभी से जो सीख मिलेगी उससे ही उसका विकास संभव है। कब प्रोत्साहित करना है और कब नहीं। माता पिता की भूमिका एक तरह से चुनौतीपूर्ण होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह हर काम अपनी मर्जी से करना चाहता है और उस समय यदि माता पिता उस पर अपनी मर्जी थोपते हैं तो वह विरोधी प्रवृत्ति का हो सकता है। किंतु यदि बच्चा अपनी मर्जी से कोई कार्य करता है तो वह यह कभी नहीं जान पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उस समय अगर आपको लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है तो बस थोड़ी सी चुटकी दें ताकि बच्चा समझ सके कि उससे कुछ भूल हो रही है। इसके लिए उसे डांटने या किसी भी तरह की सजा देने की जरूरत नहीं है, बस एक चुटकी ही काफी है। और जब बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसको उसकी प्रशंसा करने से भी नहीं चूकना चाहिए और उसे पीठ थपथपाकर शाबाशी देनी चाहिए। इससे वह और भी अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। मैत्री बनाए रखें। जब बच्चा 7-8 साल का होता है तब गलती करने पर माता पिता को उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें नियम में भी रखना चाहिए। और जब वह 12 से 15 साल की अवस्था में होता है तब आप उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन जब वह युवावस्था में प्रवेश करता है तब आपको उसके साथ दोस्ती करनी होगी। यदि आप उसके युवावस्था के दौरान उससे मैत्रीवत व्यवहार करते हैं तो आप उसके मन की बातों को आसानी से जान सकते हैं, लेकिन अगर आप माता पिता बनकर उसे अपने अनुसार चलाएंगे तो आप उसे खो देंगे। आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा कहीं और अपनापन और मार्गदर्शन की तलाश में न जाए। आपको अपने बच्चे के साथ वह सब कुछ करना चाहिए जो एक दोस्त करता है। उसके साथ खेलिए, एक साथ बैठकर चाय पीजिए, सलाह मांगने पर सलाह दीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय उसे स्वयं लेने दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों की परवरिश केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और सही दिशा देना भी है। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं और उनका व्यवहार ही बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देता है। यदि माता पिता प्यार, धैर्य और समझदारी के साथ बच्चे का मार्गदर्शन करें तो बच्चा आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल इंसान बन सकता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे के साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें जीवन में प्रगति करने के लिए प्रेरित करें। अच्छे संस्कार और सही परवरिश ही एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की नींव होती है। अब इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
5: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता बच्चों की परवरिश में माता पिता की भूमिका। वार्ताकार थी सृष्टि सोनी। बहनों, जैसा कि मैंने कहा था कि गर्भावस्था के दौरान क्या बोलते हैं कि हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आहार भी पौष्टिक लेना जरूरी हो जाता है। तो बहनों, आहार में कुछ नहीं करना है। आप आटा गूंथ रही हैं तो आपके घर में पालक, धनिया या जो भी हरी सब्जी है उसको काट के डाल लीजिए और उसी में आप अदरक डाल लीजिए और थोड़े से मसाले डाल लीजिए। आपका पौष्टिक आहार यूं ही तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ झंझट या ज़्यादा कुछ तामझाम की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चीला बना रही हैं, बेसन का चीला बना रही है, मूंग की दाल का चीला बना रही हैं, तो उसमें गाजर है, चुकंदर है, प्याज है, हरी सब्जियां हैं, जो भी आपको पसंद हो किस के डाल लीजिए। आपकी पौष्टिक चीला तैयार हो गया। सादी चीजें खाने से अच्छा है उसमें आप ये ग्रेटेड चीजें करके मिला दो तो पौष्टिक आहार आपको भी मिलेगा और आपके परिवार को भी मिलेगा। और इसके लिए ज्यादा तेल घी की भी जरूरत नहीं है। जो आप बना रही हैं उसी में बस एड ऑन करना है और चटनी के साथ में खाना है गर्मा गर्म। और बस सिर्फ मतलब थोड़ी सी सजगता से थोड़ी सी अच्छे से मतलब हमको आहार अच्छा लेना है तो वो सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर लीजिए और बस आपका घर पे पौष्टिक आहार तैयार हो गया। आप एक बार में नाश्ता कर ले रही हैं तो वो भी पौष्टिक हो गया। आपके में पालक चला गया जो आयरन की कमी पूरी करता है, बीटरूट है जो खून बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें आप अपने आहार में शामिल अगर अलग से करने चाहेंगी तो हो सकता है कई बार भूल जाएं, पर एक साथ उसको कीस लिए तो खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, परिवार वालों को भी खिलाइए। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहनों, एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जानवर का ये गीत। उदित नारायण और सुनिधि चौहान के स्वर में समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने। बहनों, आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता नोट कीजिए और अपने सुझाव व समीक्षा हमें लिख भेजिए। कार्यक्रम का पता है द्वारा उपनिदेशक आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर, पिन नंबर है 494001। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से गुंजन को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। दोपहर का 1 बजने वाला है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है।

0: और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगोट।
2: काश्तकार दादा दीदी मन पाक फर ले आम के बल बपू मिरे से, संगे संगे टोंड चो सुवाद तो मिरे से चे। असनी साग सब्जी बले आम चो खादी ने असन जीनी साय, जे चो नहलो आमी जीव नहीं रहुक सकू। पाक फर आरु साग भाजी के आमी खाऊं से, एके तो जानास मांतर खूबे दिन ले एके कसन संगाऊ सकूं। ये चो काजे गुट की उपाय आए और हुन उपाय आए साग भाजी के नहले पाक फर के सुखाउन भाती संगातोर। सुखा तो काजे कसन कसन सावधानी मन संगातोर आए एके मैं आजी सांगे से। सबले पहिल पाक फर नहले साग के नंगत नीरो पानी ने धोन उनके हिसाब दखून ऊपर चो छाली के उछला तोराय आरु काटून दे तोराय। और जसन कोनी पाक फर नहले साग काटलो पाछे लहरा ने रलो ने करिया नहले धमस्या होन जाय से हुनके काटून भाती खिंडिक वहां लोन चो पानी ने संगाते जातो राय। और जसन पाक फर के आमी सुखाऊं से तो हुनके सुखा तो काजे आम के समय आगर लागे से। यही काजे सुखा तो बेरा पाक फर नी नसो बोलून हुता गंधक चो कुमला देतो राय। कुमला देतो काजे 1 किलो पाक फर काजे 3 ग्राम गंधक खूबे होय से। मांतर पाक फर दखुन एके खेडी कम और आगर बले करतोर होय से। दादा दीदी मन ये तो होली पाक फर काजे, मांतर साग काजे गंधक चो कुमला नी देतो राय। आरु गंधक बीती लोन जिनिस जसन पोटेशियम मेटा बाइल सल्फाइट एके घोरुन होता चोबरुन भाती साग के डंडिक संगातो राय। ये चोले काय होय से कि साग ने गंधक मिसे से आरु सुखालो पाछे साग ने नानी नानी कीड़ी मन नी पड़ोत। दादा दीदी मन गोटोक और गोठाए जैके लेख करतो राय हुनाए कि जसन आमी पाक फर के नहाले साग भाजी के घाम ने सुखाऊं से जाले आमी सुखा तो ठान के बले ध्यान देऊं। सुखा तो ठान ठसठसा ठान होले आगर नगत आए, नहाले कहाँ बोले सुखाऊं। हर 2 नहाले 3 घंटा ने सुखालो जिनिस चो कुटकी मन के उलट पलट करते रहूं। असन करते रलो ने हुता सब पाए बाटे बराबर घाम पाउ सके दे। सुखा तो ठान कचरा कूड़ा चिखल पानी असन ठान ले लाफी रहो। काय काज बल्ले असन करलो ने हुता मोची आरु तीसर कीड़ा माकड़ा मन नी बसुक सक दे। और सुखा तो बेरा सुखा तो जिनिस के हाथे धरून टूटाउन बोले दख तो राय। काय काज बल्ले दखा दे दे कि नंगत सुखली से कि नहीं। और जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे तेबे हुनके कूड़ी बनाउन 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातोर आए। एके एक हार और सुना, जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे तेबे हुनके कूड़ी बनाउन 2 हफ्ता तक 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातो राय। और जसन 15 दिन होली हुंचो पाछे एक कूड़ी मन के उठाउन पाछे हुनके कांच नहले 3 चो डब्बा मन ने संगातो राय। और पाछे जेबे खातो काजे मन करे दे उदलदाए निकरातो राय और मन हिसाब ने रांधुन जमक बनाउन काय रस्या घर चो लोग संगे खातोर बले आए।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामे की बेड़ा खड़ा चौगोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
3: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं।
6: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
8: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
10: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह।
5: पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन के तमाम श्रोताओं को प्रीति यादव का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शिकारी से कुमार सानू की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर वसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से आप हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा। रायपुर से हैं नीलू मेघ। बेरड़ी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। ग्राम मोहत से आप हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू बाई, परु मुबारक बारी, विलास मनोहर ठाकुर, तैमूर बारी। भोकरी तालुका रावेर से आप हैं अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से आप हैं मुशरफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज, रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारिणी मसिया। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से भी हैं आप रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। धमतरी से आप हैं सविता माखीजा और स्वाति माखीजा। मुंगेली से हैं कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, मनोज कुमार, सत्यम, शिवम, गायत्री। दरियापुर बाभली से आप हैं गजानन येले और नवदीप येले। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू और लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, कुनिका मल्होत्रा और जानकी चंद मल्होत्रा। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। रेलवे कॉलोनी से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक। अमरपुर पेंड्रा से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी और लब्बी श्रीवास्तव। औरंगाबाद से हैं प्रकाश बुरगांवकर, सुदामा प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बुरगांवकर। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म आशिकी से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। डोंडी लोहरा संबलपुर से आप हैं गौतम उर्वशा, डामिन लक्की, डोमनलाल कोठारी। अर्जुंदा बालो छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश यादव, साधना यादव। तुवेगोंदी मंचुआ से हैं अयांश रावटे, रिंकू रावटे और डोमनलाल डोंगरे। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। बंगला मटिया बालोद से आप हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। राजनगर कांति निकेतन से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा गोल्डी, मास्टर रुद्र गुप्ता। राजनगर गांधी चौक से आप हैं रानी गुप्ता, सोनाली, संगीता, मेनका, पलक, पंखुरी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, रिद्धि, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति, शालू, दीप, शिखा और अर्चना। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से आप हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधीश सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप हैं मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से आप हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा। रानीगांव नगरी से आप हैं अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू। गुल्हापारा लोरमी से आप हैं राजकुमार साहू, तुषार, तनिष, गौरी साहू और नौमालिका। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी और महेंद्र कुमार तिवारी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रंग से कुमार सानू की आवाज़ में। गीत है समीर का, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। सुभाष वार्ड भाटापारा से आप हैं एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव। बिलासपुर से आप हैं छन्नूलाल शिवास, अनीता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता शिवास, रामायण शिवास, रज्जन साहू, हेमंत और नंदिनी नामदेव। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और आरू साहू। महामाया पाराग्राम धरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। ग्राम धरचूरा से आप हैं ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। हिपरसोगा तालुका जिला लातूरहून से आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी शेख, शाकिर शेख, इस्लामबी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शकील, बिस्मिलाबी शेख, गदर शेख, आनी नीलोफर शेख। हिपरसोगा जिला नांदेड़हून से हैं चांदनी आयूब सैयद, आनी बाल राजी, अमन सैयद और ताहिरा सैयद। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टीमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, यशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। मोती गार्डन भाटापारा से आप हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया और मनोहर निषाद। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, चंपा साहू, करण राहुल साहू। औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। रिया रोड राजकोट से आप हैं प्रतिमा देवी, प्रवीण भाई चांदीवाला, कुंदन रंजन और सरोज सोनी। शास्त्री नगर बिजशहर से आप हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और विशाल सपकाल। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और राजेंद्र कुमार चंदन। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चमत्कार से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है अन्नू मलिक का। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे। बागबहरा भदरसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। गोरबा बिलाईगढ़ से हैं देवलाल कर्श, कामिनी और यश कर्श। गुमला झारखंड से आप हैं एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। खुदी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद। मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत ग्वाड़कर, राही, श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत और प्रणीता ग्वाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश ग्वाड़कर, श्रीमती वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि ग्वाड़कर, परी। मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कामता पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं श्रीमती जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी। ग्राम जुगानी कलार से आप हैं राजेश नेताम, युगल अभय और ललिता नेताम। कुल्हाड़ीकोट पांडुका से हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप और मोहनीश कश्यप। दतरेंगी भाटापारा से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। जगदलपुर से आप हैं लावण्या विश्वकर्मा, गुण जैन, आयुषी वर्मा, जिज्ञासा और पूजा टावरी। हटरी चौक बिलाईगढ़ से आप हैं खीकराम दिवांगन और रानू दिवांगन। वरकट बकाल से आप हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का फिल्म चमत्कार का ये गीत।

बाबुल सुप्रियो की आवाज में पेश है फिल्म ढाई अक्षर प्रेम की का गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। ग्राम बेलरगांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमित्रा से आप हैं सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। चितलवाड़ी अकोला से आप हैं अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, आधेरा इंगले और इनके परिवार के तमाम सदस्य। ताजपुर मोरबा से आप हैं भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जैशी, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। सपना संगीता रोड इंदौर से आप हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या, पिंकी, प्रियंका, बेटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। रायगढ़ स्टील सिटी छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। साबरगांव महाराष्ट्र से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पताई नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। पुट्याकला दुर्ग से आप हैं संजय कुमार साहू और सुजाता साहू। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से आप हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सीजल साहू। दंतेवाड़ा बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण सेन, पंचू सेन और भुवनेश्वर सेन। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म मिशन कश्मीर का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान और लॉय ने। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। चंदनगर सातारा से आप है सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रमण और शमीर वाघमारे। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से आप है विजय चौहान, तेजस्विनी अंकिता, अनिकेत और माया चौहान। छत्तीसगढ़ पथरिया भरीवा से आप है चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमीश नेहा और बेबी पान्या। मेघापारा लोरमी से आप है मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार साहू, धनंजय और कुमारी गायत्री साहू। लोरमी गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से आप है संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, दानिश, छोटी दीक्षा, संजय, पूजा, रामा और पूर्वी। नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप है जगर राम साहू, बबलू जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला दुष्यंत साहू, प्रांजल समीक्षा साहू और बीबी आराध्या साहू। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से आप है उत्तम सिंह जंघेल, मुरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल। ग्राम कुमली लोंडीगुड़ा छत्तीसगढ़ से आप है बसंती पांडे, चुनौती पानीग्रही, तेजल, हिमाश, कमल, दुधेश और अवनीश पानीग्रही। मलोट कैंप पंजाब से आप है सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, बी सिंगलाटी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। रामगंज खंडवा से आप है विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डाली, देवराज महोबिया और भैयू दादा। गांधी चौक रोपण पंजाब से आप है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक। बेरेडी से आप है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमनी, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरी। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: Pahili Raja, ushering in the onset of the monsoon and the Oriya month of Ashada. The festival symbolizes reverence for Mother Earth and reflects the state's rich agrarian traditions. More in this report.
1: The Raja festival has begun across Odisha from today with the observance of Pahili Raja, one of the state's most cherished cultural celebrations. Raja honors womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth. The festival derives its name from Rajaswala, reflecting the belief that the earth, like women, undergoes a period of rest and rejuvenation. Consequently, agricultural activities have remained suspended during this period. Women and girls are at the heart of the festivities. They are adorned in new attire, relieved from household chores, and seen participating in traditional customs including swings, folk songs and community celebrations. Homes across Odisha are resonating with the aroma of festive delicacies such as Poda Pitha, Arisa Pitha, Chakuli Pitha and the popular Raja Pan, which are being shared with family, neighbors and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
0: Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. The India Meteorological Department IMD has forecast favourable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
3: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
4: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
6: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ो पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
8: दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

0: जुहार पनकू,
1: जुहार लाल हजारी, जुहार
0: अमरलीस ने।
1: हाँ
0: तो पनकू,
1: हाँ
0: हमी दोनों तो भेड़घाट होलो ने।
1: हाँ
0: अदाय हम चो दादा दीदी मन संग बोले भेड़घाट हो।
1: अले
0: तो कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार दादा दीदी मन, भाई बहन मन और संगचौरिया संगवारी मन के मैं लाल हजारी
1: और मैं पनकू,
0: हमी दोनों करो से
1: जुहार। हाँ तो लाल हजारी,
0: हाँ पनकू
1: भेट तो होलू
0: होलू। हाँ काय
1: तो आमी काय समया समयाई लोने कहीं ना कहीं गोड़ धरुने उसे दादा दीदी का जे।
0: हाँ।
1: आज आमी कलाकार भाई बहन दादा दीदी मन का जबल गोड़ धरुने लुसे
0: लुसे
1: तो एक बोले हमारा वहाँ
0: तो हमी आज दादा दीदी मन का जो गोटो गोड़ धरुने लुसे कला ने रचनात्मक जो महत्व बल्लो ने होए से रचनात्मक ले कलाकार आपलो सोच आपलो भावना आपलो ढंग ले करुक ला सक दे ले कला सुंदर और मन के भावलो जसन होए दे।
1: हाँ बल्लो ने आमी काई बले हिसाब के जानू से उआट के जानू से जसन बेड़ा बुदाक दक कोनी भी था बेड़ा बुदा के खूब टाइम खूब टाइम ले करे से बल्लो कहीं ना कहीं नुआ चीज के सीखे
0: से आए।
1: हाँ और हुनी चीज के आमी कला चो भीतर चो ज्ञान बलू से
0: बोलू से आए।
1: हाँ।
0: तो रचनात्मक ले कलाकार आपलहान प्रतिभा के दिखाऊ सके दे चित्रकला होली संगीत होली नृत्य बोलू से जे और नाटक और बोले कई असन कला से जे चोने रचनात्मक जरूरी होए से कसन बल्लो ने ये कला के नुआ दिशा दे से और दर्शक मन के भाई से और हुन मन चो मन ने गहरा प्रभाव पड़े से।
1: हाँ सत्य बल्लीस ए कसन और असने नुआ नुआ उवाट मन के हम सीखूं दे जोन आमी उवाट के हम सीखूं दे आमी और लगे हमरा तो काजे नहीं हुनके और अच्छा ले जानू
0: जानू दे आए
1: नुआ हिसाब के बल जानवा और आम चो दादा दीदी मन करते रला जे हुन हिसाब के बल जानवा
0: जानवा
1: हुन चोले सीखून भारी नहीं आमी जोन ज्ञान के हम सीखावा नहीं हुन होए जे आम चो कला चो रचना
0: सत्य गोड़ बल थिसपन को रचनात्मकता सोजे कला चो सुंदरता ही नहीं बढ़ाए बल्कि समाज के नुआ विचार और प्रेरणा बल देवाए कलाकार आपलो रचना चो माध्यम ले आपलो भावना के लोग मन तक अमराए दे और संगे संगे कलाकार चो आत्मविश्वास बले बढ़े दे और नुआ नुआ तीज मन के सीखे दे और दूसर लोग के बले सिखाए दे।
1: तो कला बल्लो ने कुनी कुछ बीता चो नाले कुनी पीला होली जुआन चो होली तो हुन मन चो भीतर चो गोटक हुनर बोलू से बे हुन होए से कसन ने की आम के हुनर ने कहीं बल भूता के गोटक नुआ ढंग ले करुक होए से और हुनके दखुन मारी आम चो नुआ है तो जुआन लोग मन बल सीख सोत उन कला चो बाढ़ती होए से उसने
0: तो दादा दीदी मन कला ने रचनात्मक चो खूबे महत्व आए हम के नुआ नुआ तीज सीखुक तो मिरे दे और हम चो पहचान भले बढ़ते जाते हम चो कलाकार चो माध्यम ले तो कलाकार दादा दीदी मन ये तो रहे नंगद ज्ञान ध्यान बीति गोट बात मन तो हम चो लगे आसे ये जहला मन आले ये जहला मन के सुनो
1: आले आले सुनो।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज सुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तकवेंट राहत दुर्कना दुमिद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
8: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: हाँ तो लाल हजारी,
0: हाँ
1: ए गोट मंथ होली
0: होली का
1: तो ए चले आम चलगे भेट वार्ता बोले आसे
0: आसे का
1: ए गोटो काम चलगे कलाकार आसोत वादक कलाकार आत श्री जय प्रकाश कश्यप।
0: हाँ।
1: और ए मन संगे भेट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ आले के बले आमी सुनो।
0: हाँ।

0: गांवकारी भाई बहन मन जशन क्या मैं रोजी दिना कई कलाकार भाई बहन से गोट बात करूं से तो आजीबल में गोटुक जवान लेका इमन बजाऊ कलाकार इमन से गोट बात करें से सब ले आगे तुचो नाव और गांव चो नाव सांगना
1: जी मुचो नाव बोले जयप्रकाश कश्यप है।
0: अच्छा
1: मैं गांव नानगुर चो है।
0: अच्छा तो जयप्रकाश ये सांग जसन की तु बोले ने बजा तो भी कला के जानिस बोले ने काय काय सन बाजा मन की बजा हुआ
1: मैं बाजा बोले नहीं ढोलक बजा हुआ है टांगो सेट बोले टीन पैठन भी थी उनके बजा हुआ है आर्गन केसियो उनके बजा हुआ है
0: अच्छा
1: और बोले नहीं जितलो बोले साइड ड्रम आसे साइड ड्रम नाट भी साइड ड्रम उन सबके बजा हुआ है मैं।
0: अच्छा हाँ तो अले गोड बात तो करूँ मानता तुझ मन ने कोनी बोले बड़ अच्छा भी थी पाड़ फुकुन बात सुनाऊंगा
1: हाँ ठीक है नहीं।

0: काय ना बोलिस ना,
1: जयप्रकाश।
0: तो जयप्रकाश कश्यप ये जो बला बोलो तुझो जो बजा तो बीती कला है बोले ने कहाँ सीखलीस कसन सीखलीस?
1: मैं बोले कला बोले घरे खिंडी खिंडी जानते रहे और असनी धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो दगुन दगुन असन सीख ले मैं।
0: अच्छा तो ये चुकाज कहीं बल्लेन कहीं गुरु असन कहीं असन धरु पड़ ली? नहीं
1: नहीं चुकाज को नहीं गुरु नहीं, लेकिन जो मैं किसी सीख रहे नहीं उन चुकाज को गुरु रलो।
0: अच्छा
1: उनके दकुन दकुन चीज मैं सीख ले से
0: असन। अच्छा दकुन दकुन सीख लीस की मतलब उनका ही सीखा लो असन?
1: नहीं उनका ही ना सीखा, हम सब दकुन सीख लू।
0: अच्छा
1: कि कौन थाने बजा तो रहा है, कौन थाने कौन रीड ने बजे हुआ उनके दोनों सीख लू हमें।
0: अच्छा तो जयप्रकाश ऐसा जैसन की तुम चो परिवार ने बोले असन कोनी आगे बोल रहा बजा तो
1: हूँ तो मालूम नहीं है मोके मुझ परिवार ने रख नहीं यारे, लेकिन मोचो ये लेका से 10 साल चो हूँ बजाए से ये।
0: अच्छा
1: ढोलक के और तीन ठन विधि बाजा के और पेड़ बुलवा उनके उन सीखे से ये।
0: अच्छा नहीं मतलब तुझे जान तो बेराल तुझे बाप नहीं तो कुछ दादा
1: नहीं मुझे जान तो हिसाब में ना जाने उनके
0: नहीं जाने।
1: हाँ
0: अच्छा बोले तु खुद ही
1: खुद ही में सीख ले।
0: हाँ हाँ तो बोले ने तो इतलो बाजा मन बोलिस ना जिसन के ढोल लकाए बोलिस मृदे मोरा तो सब बजाऊ चीज बे केसियो बोलिस केसियो बोले ना हारमोनियम बोले बजा
1: हारमोनियम
0: और कहीं फूक तो

0: तो जयप्रकाश ऐसा जैसन की बोले ने बजा तो जो भी थी कला है बोलो के
1: हाँ
0: कहीं बोल चीज के बोले ने उनके तो बोले ना अच्छा अभ्यास करो लाए पड़े ना
1: पड़े
0: रोज
1: से
0: दिन कहीं तो
1: हाँ
0: असन कहीं तो चो अभ्यास कर तो कहीं टाइम आ से दिन ने
1: मोचो
0: की
1: अभ्यास करते टाइम घरे च करूँ है मैं
0: अच्छा घर से।
1: मोचो संगवारी मन खाक दी है
0: हाँ हाँ
1: एक लाख बोलू है तू कैसी हो बजाओ मैं बाजा बजाए दे
0: अच्छा
1: या फिर तू ही बाजा बजाओ मैं कैसी हो बजाए दे
0: हाँ हाँ
1: उसने करूँ बात हमें प्रैक्टिस करूँ घरे।
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: हाँ
0: हाँ तो बोले तुम चो कहीं असन समूह बोला से होती का
1: हाँ हम चु ग्रुप आसे
0: ग्रुप आसे
1: हाँ
0: अच्छा
1: लगभग हम चु ग्रुप ने 15 लड़का आसू।
0: 15
1: हाँ
0: अच्छा बोले ने ग्रुप ने काय काय बजा तो कल
1: ग्रुप ने बहुत सारा बजा तो सामान मना से जैसा ना शादी पार्टी मन ने बजा के जाऊं
0: अच्छा
1: तो ताशा बोलुआत
0: हाँ
1: और टामक मन बोलुआत ढोल बोलुआत
0: हाँ हाँ
1: ये सब बजा मना से।
0: अच्छा हाँ
1: हाँ
0: हाँ बोले ने कुंता ने तिहार वार नाल
1: हाँ त्यौहार
0: शादी भी
1: बार
0: आओ
1: शादी
0: राव
1: ब्याह मन ने।
0: अच्छा इता बोल
1: हाँ
0: जाए शास्त्र में।
1: हाँ
0: हाँ तो दक बोले ने आम चो देसी बाजा है कहीं
1: हाँ ये
0: बती
1: सब देसी बाजा है
0: देसी बाजा
1: जो
0: है
1: टामक मनी लिस ने उड़ीसा ले ली से।
0: अच्छा उड़ीसा लालना सा
1: हाँ
0: अच्छा तो ये चुकाज बोले ने पूरा जमक काय काय लागे से।
1: पूरा जमक बोल रहे ये भी हम चुन लगे नहीं टामक के तो नंगरा बोलते
0: हाँ
1: ने हुन भी थी हम चुन लगे कम से कम 10 एक ठना से।
0: अच्छा 10 एक ठना से
1: हाँ ऊंचे संगे ताशा बुलत प्लास्टिक भी थी हुन
0: हाँ
1: भी थी चार चार पीसा से
0: अच्छा
1: एक ठन डोला से तो असनी गोल समूह बनान बाती हम ही नहीं
0: हाँ
1: उन बाजा बजाऊ जसन ऊपर ले कैसी उपाज लिया ले।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ। तो बोले ने ये चुका तुम चो कुंता ने सास तो
1: हाँ
0: कहीं रेट वगैरह बोल फिक्स रहे
1: हाँ
0: से बोले
1: रेट फिक्स आस नहीं कुन तन
0: अच्छा
1: 12 जाऊं तू चे रेटा लगा से कुन तन ने पार्टी थान बजात रहे तू चे रेटा लगा से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ टेबले बोले कसन हिसाब ने धरता रहे से
1: मतलब दिन ने हम एक दिन चो चार्ज लगभग 15,000 चार्ज कर लू से
0: अच्छा
1: और 12 जा तो रहे बोले नहीं 20,000 ले ऊपरे
0: अच्छा 12 जात्रा
1: 12
0: बोले
1: जात रहे बोले और दूरी हिसाब ने।
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ बोले ने दिन दूरी समय
1: हाँ
0: हिसाब
1: सब
0: में
1: रेट
0: लाग
1: के तो जोड़ूं बती रेट फिक्स आ से।
0: अच्छा तो ये असन बोले ने गुटुक समूह जो बना तो भी थी बोलू भी कितलो बरक असन होली तुम चो
1: हम
0: बना
1: चो लगभग 10 बरख होली
0: अच्छा 10 बरक
1: दस
0: होली
1: बरख होली
0: हाँ
1: उधर दाए मैं सीख तो दाए नहीं दुई गाना के सिकुरूँ और हम नहीं गाना मतलब बैंड बुकिंग होली हम चो
0: अच्छा
1: उधर दाए ले कंटिन्यू चले सी अब ले।
0: अच्छा तो ये ता ने जसन की तुम बोले केसु संग बजाऊ बात बोले बोले कसन किसम चो गाना मन काम जो देसी भी थी है कि कहीं फिल्म संगीत
1: नहीं
0: है
1: फिल्म ले बोले आए उड़िया ले बोले आए और देसी बोले आए। हाँ
0: अच्छा हाँ
1: ये सब के जोन फरमाइश करू है नहीं उनको बजा
0: हाँ
1: पड़ू है उन्होंने
0: अच्छा बोले जो नाच तो हिसाब में
1: नाच तो
0: तुम
1: हिसाब ने
0: हाँ। तो हुन समय आ चो कोनी बोले सुरता आ से
1: उन समय जो सुरत आस मंत्र हुन केवल निशान ने बाजे दे।
0: निशान ने बाजा
1: हाँ
0: अच्छा
1: या
0: तो
1: फिर कैसी बजा तो रोल हूं तन बजा सके
0: अच्छा
1: मैं
0: ढोलक ने बोल कहीं उल्टा उल्टा नहीं हुए
1: नहीं ढोलक ना हो उन बैंड बीती है नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: उन अलग ले वैसे ने हाँ। तो अलकोनी आमचो देसी हिसाब ने बस्तरिया हिसाब ने कोनी बोल पाड़ बजाऊं दर
1: देसी हिसाब ने नहीं
0: हाँ
1: जसन ले जा बीती पार था बाजली दूसन बजान दे पार
0: हाँ
1: ने

0: त्वचा जय प्रकाश दक्क तुम चो जन समूह ने बोलुवे आगे बोलुवे कम पैसा कारण ने कम बाजा मंडली मंत्रे भी खीने कासे तो और तुम चिताने असन कहीं बाजा वगैरह कहीं गेंद तो बाज लिस्ता
1: एबे बाजा तो गेन तो नहीं है जरूरत, लेकिन क्या फुर्ते के लिए मैं उनकी रिपेयर कर जाऊँ।
0: अच्छा रिपेयर
1: हाँ मतलब जितलो आम चो लोग आसो पार्टी ने उतलो सामान सब कच पर्याप्त आसे।
0: अच्छा
1: हाँ और जोन बले भी सजाऊ से हमी हम चो सेटअप बोलू असन पोंगा का टांग तू बीती मन के उनके सजाऊ से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो ये पूरा सामान होली से भी
1: तो पूरा सामान होली से।
0: अच्छा कहीं घेनुक लाए नहीं पड़े
1: ना पड़े।
0: नहीं पड़े।
1: हाँ
0: अच्छा तो ये चुका जो बोलू बे बोले ने सब जुआ हूं बाती जैसे अभ्यास कर सा की कसन ना।
1: हाँ मतलब कोनी थाने बुकिंग जाऊं से हमें तो एक दिन पहले हम सब पैसा के बोसू
0: अच्छा
1: कि ये गाना कि असन बजा तरा ये गाना का असन बजा तरा बोलते हम अभ्यास करूं।
0: अच्छा
1: उनके बाद ने दूसरा दिन ने हम चले जाऊं।
0: अच्छा नहीं और समय समय ने दूसर बेरा कहीं असन नामी कहीं अच्छा कहीं चीज के सीख रू असन।
1: हाँ जैसे नाम ने चल तो हिसाब ने जैसे नया गाना मन ऐसे नहीं तो नया गाना मन सुन लू बोल ले नहीं हमी उनके अभ्यास करूँ तब पहले
0: अच्छा
1: कम से कम जब तक हम परफेक्ट ना सीखू तब तक अभ्यास करूँ उनके बाद उनके पास ये प्रोग्राम ने बजाऊँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो ये अब तक बोले ने तुम छो जो समूह ने बोले कौन कौन बाट कहाँ कहाँ लापी गेल साथ जाले।
1: ये भी हम समूह ने हम सब चारों दिशा में घूम लू से।
0: अच्छा
1: हाँ और सब ले लापी दूर बल ले बटका जी हमी बीजापुर बट गेलू। हाँ बीजापुर ले मतलब हर साल हम उन पा एरिया जाऊँ ची आऊँ
0: अच्छा
1: गणेश सीजन ने हो चाहे शादी सीजन ने हो और यही हम ची बस्तर एरिया ने बोल बोलूँ।
0: अच्छा हाँ जैसन कि तू ही तो वलिन खुद बजा तो कला के जाने से और उल्का चीज के बजा के जाने से तो आजकल खूब जैसन कि निकरे से ना सीडी जैसन कि काय काय बाजार ने निकरे से तो संतान वक्त कहीं तो बजाल से
1: सीडी मंथन तो ना बजा
0: नहीं
1: भी
0: बजाल से
1: ऐसा मौका ना मिल ले से।
0: अच्छा
1: हाँ

0: असासिन लोकल प्रोग्राम मन ने बजाऊं से और उन्हें भी मन वीडियो मन मत यूट्यूब मन अपलोड हो से।
1: अच्छा यूट्यूब में बोला अपलोड कर सर। अच्छा
0: हम से यूट्यूब चैनल वाला से।
1: अच्छा बोले ने खाली ऐसे बाजा की कर सास की।
0: हाँ बजाते ही हम चो
1: बजाती।
0: हाँ अच्छा पहले हम प्रोग्राम ने बजा थ्रू उन प्रोग्राम उन बोले यूट्यूब ने अपलोड आ से।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो ये छो प्रचार प्रसार तुम कर सास
0: करूं से। हाँ शासन छो जन प्रोग्राम मनी हुए नहीं हूँ मन जाऊँ हमें।
1: अच्छा तो बोले ने जो दिन ने तुम्हें ये जैसन की समूह बना लास बोले तुम छो कला के जो उभार तो जो काम हुए से बोलू कसन लागे ना तुम कसन लागे से।
0: मतलब सीजन ने हम के बोल तो काजे अच्छा लग हुआ है हम उसको हम जो एंजॉय बोल हुआ है बजा तो काजे मतलब हम जो कला सीखलू से उन जो माध्यम ने हम बजाऊ से दो पैसा पैसा मिले से हम के तो उन का बहुत अच्छा लग हुआ है हम के।
1: अच्छा
0: लोग के हम के हम जो कला के दागत काजे अच्छा लग हुआ है।
1: अच्छा तो बोले ने सब के खेने पैसा कोड़ी बोल मेरे से और फिर बाट हो माटे
0: खुद हरिक बल
1: कुछ को हरिक बल लागे से। बाकी समय फिर तुम जो काम
0: बाकी समय आने हम जो काम बोल ले मैं घरे छोटे मोटे काम करूँ मैं।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले कहीं खेती बाड़ी है कि।
0: और खेती बाड़ी बोले यार गोटो दुकान खोल ले नानी।
1: अच्छा दुकान बोल खोल।
0: हाँ
1: तो बोले हम जो संग संग बाकी समय आने ये काम
0: ये काम है ये तो सीजन ने हम चे काम
1: सीजन ने
0: मंडी मेला होली या फिर बिया सीजन ने ये भी मन होली।
1: उन तो आए छी बोले ने कहीं बोल कला सीखू रहे जानू रहे ने गोटक उन माने छो गोटक अलग मान सम्मान बोले वैसे है कि नहीं। बोले ने बट उन बट डॉक्टर बोले वैसे कई लोग संग मिलवा मिसावल हो कैसे है कि नहीं। उन बट जो संस्कृति आए सब चुके जानुक लाए वैसे
0: जानी वैसे
1: है कि नहीं। तो बोले ने ये बोले अच्छा है कोनी जो फका आदमी कहीं सीखे से जाले तो दखना तुझ संगीत लो अच्छा प्रकाश गोटिया लू अंतर फिर आले जाते जाते गोटोक मैं गीत गाए से
0: हलो ठीक है।

0: तो दादाजी मन, अभी हम ये काय सुंदर भेंट वार्ता के सुनती रहूं। ये भेंट वार्ता भीतरे भेंट होते रला एमनाथ श्री जयप्रकाश कश्यप, एमन रला वादक कलाकार, और एमन संगे भेंट करते रला एमनाथ बलबीर सिंह कच्छ।
1: काय नंगत आपलो कला के आमचे लगे अमरा ला जयप्रकाश कश्यप, ये बजनिया कलाकार आत, और एमन संग जोन भेंट करला नी ये बल काय नंगत कलाकार आत, काय गीत के गावते रला आमचे पूरे। तो देख असनी आमी दादा दीदी लगे गोटो गीत बल अमरा लेनी मन के लागती काय नु। तो तुझो मुंडन काय गीत आसे?
0: आसे ये गीत के गावला सोत एमन आत लखेश्वर खुदराम और एमन चो संगवारी मन। तो आले गीत के सुनाओ।
1: आले आले सुनो।

0: हाँ तो लाल हजारी
1: हाँ
0: काय नंगत गीत के सुन लू है
1: सुन लू काय
0: तो गीतकार के जान लीस
1: चीता लेखा है एमनाथ लखेश्वर खुदराम और इमंचो संगवारी मन।
0: हाँ तो ये गीत तो होली
1: होली
0: तो समय आने आमी यू से तो हम
1: जो
0: समय जाओ
1: कल
0: लागे से
1: आए तो जातो पूरे बस्तर कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार भाई बहन मन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं लाल हजारी
0: और मैं पनकू
1: हम दोनों करो से
0: जुहार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। एफएम बैंड के कार्यक्रम, एफएम बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम अब जारी रहेंगे।

मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए जाने हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जाने आज के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, मीडियम व्यू पर आज आप सुनेंगे शाम 6:30 से इंग्लैंड के एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे से 6:45 तक, शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक, रात 9:15 से रात 9:30 तक, रात 10 बजे से खेल की समाप्ति तक। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 से एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन, दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे, शाम 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौका, रात 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम बाली फूल में आज आप सुनेंगे जयदेव विश्वकर्मा और साथियों के स्वर में हलवी लोकगीत, रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पीला मन काजे गोट, प्रस्तुति होगी बलराम कश्यप की, रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, और रात 10 बजे कार्यक्रम दौना में आज हम आपको सुनवाएंगे जलधर और साथियों के स्वर में हलवी लोकगीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जाने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन, आलेख और स्वर होगा किशोर पारक का। श्री रामचरित के मानस के गायन का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:35 पर। बेड़ाघाट चौगोट आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर कल आप सुनेंगे गोरस दुआरी पाड़, वादक कलाकार होंगे धर्मो और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर रोजाना की तरह आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आकर्षण होंगे संगीता मौन की वार्ता, स्वास्थ्य वर्धक सोयाबीन और होगी सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधुरिमा। सुबह 9 बजे सुनेगा लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादक होंगे भरत कुमार गंगादित्य, एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। कल की फिल्म होगी भाग मिल्खा भाग। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में कल आप सुन सकते हैं पुराने फिल्मी गाने। गुरुदम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा बीडी राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 11 बजे। कल का हमारा यह कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार वर्मा मलिकवर। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम पाटा केंजा में कल हम सुनवाएंगे दशरू राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। दोपहर 12 बजे सुनिएगा कार्यक्रम कला आउर कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। फरमाशी फिल्म गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम श्रोता सुमन में दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनेगा गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे देवाराम सोढ़ी और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव शाम 7:21 पर। रात 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में कल आप सुनेंगे दिनेश और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। रात 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पीला मन काजे गोट, प्रस्तुति होगी संतोष बघेल की।
रात 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम जीवना चौसोर। इस कार्यक्रम में कल सुनेगा मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा की रंजना विश्वकर्मा से ली गई बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। रात 9:30 पर भेंटघाट कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा श्रीमन बोध बघेल से ली गई बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। और रात 10 कार्यक्रम कोदोमाली में कल हम आपको सुनवाएंगे जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद है आप सभी जहां भी हैं अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे।

0: और इस खूबसूरत शाम का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सुहानी सी शाम में आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी खिलेश पांडे
1: और मेरे यानी उदित नाग के साथ। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार
0: उदित। हाँ। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है तो उसकी सफलता का क्या महत्व है? दुनिया उसी को पहचानती है जो मशहूर हो।
1: खिलेश, पहचान और सफलता एक ही चीज है। बहुत से लोग दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे वास्तव में सफल भी हैं। क्यों है ना?
0: बिल्कुल उदित, अगर किसी व्यक्ति के लाखों फॉलोअर्स हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं और उसका नाम हर जगह लिया जाता है, तो उसे सफल क्यों ना माना जाए?
1: क्योंकि खिलेश, प्रसिद्धि केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। सफलता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति ने क्या हासिल किया, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वह अपने जीवन से कितना संतुष्ट है।
0: समाज पर प्रभाव भी तो प्रसिद्ध लोगों का ही ज्यादा होता है।
1: पर खिलेश, पहुंच होना और सकारात्मक प्रभाव डालना अलग बात है। कई वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने मानवता के लिए बहुत योगदान दिया, लेकिन आम तौर पर लोग उनके नाम तक नहीं जानते।
0: बिल्कुल। तो फिर उदित, अगर कोई व्यक्ति इतना महान है तो उसे प्रसिद्ध होना चाहिए। अगर लोग उसे नहीं जानते तो उसे काम का क्या मतलब है?
1: खिलेश, लाभ उसके काम से मिलता है, उसके नाम से नहीं।
0: हाँ उदित, तुमने सही कहा, मैं सहमत हूँ तुमसे। यदि किसी व्यक्ति ने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं, अपने मूल्यों को बनाए रखा है और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, तो यह सफल है, चाहे वह प्रसिद्ध हो या ना हो।
1: हाँ खिलेश, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आज की पीढ़ी को समझने की जरूरत है।
0: बिल्कुल उदित, क्योंकि केवल प्रसिद्धि के पीछे भागना कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में भी ले जा सकता है।
1: पर फिर भी खिलेश, मैं मानता हूँ कि प्रसिद्धि के कुछ फायदे भी होते हैं। क्यों है ना?
0: जैसे कि
1: प्रसिद्धि व्यक्ति को एक बड़ा मंच देती है जहाँ से वह अपने विचार और संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है।
0: हाँ उदित, और साथ ही प्रसिद्धि नए अवसर भी लेकर आती है, जैसे बेहतर करियर, नेटवर्क और प्रभाव।
1: हाँ खिलेश, सही कहा, लेकिन प्रसिद्धि के साथ कुछ चुनौतियां भी तो आती है ना।
0: जैसे कि उदित?
1: खिलेश, लोगों की निजी जिंदगी अक्सर सार्वजनिक हो जाती है, उन पर लगातार लोगों और मीडिया की नजर रहती है।
0: हाँ, और उन्हें हमेशा अपनी छवि बनाए रखने का दबाव भी महसूस होता है।
1: बिल्कुल, कई लोग केवल लोगों की प्रशंसा पाने के लिए काम करने लगते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल उदित, इसका मतलब है कि प्रसिद्धि एक साधन हो सकती है, लेकिन उसे अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए।
1: मैं भी यही मानता हूँ, यदि प्रसिद्धि किसी सार्थक उपलब्ध के कारण मिलता है तो उसका मूल्य अधिक होता है।
0: इसीलिए लोगों की यह सोचना चाहिए कि वे प्रसिद्ध क्यों होना चाहते हैं, सिर्फ पहचान के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए।
1: और यही सवाल प्रसिद्धि और वास्तविक सफलता के बीच का अंतर स्पष्ट करता है।
0: हाँ उदित, वास्तविक सफलता की सबसे अच्छी परिभाषा और क्या हो सकती है?
1: मेरे अनुसार खिलेश, वास्तविक सफलता वह है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त करे, अपने मूल्य को बनाए रखे और अपने जीवन में संतुष्ट हो।
0: बिल्कुल, इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उदित से आज के कार्यक्रम के पिटारे में क्या है खास।
1: खिलेश, आज हमारे प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम तरन्नुम, जिसमें आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत झलकी, साथ ही सुनेंगे विज्ञान पत्रिका और कुछ सामान्य ज्ञान की बातें।
0: तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 90 के दशक के मशहूर इंडी पॉप गायक हैरी आनंद के लोकप्रिय गीत तेरी चाहत में से। इस गीत को हैरी आनंद ने अपनी आवाज दी है, संगीत भी उनका ही है और गीत के बोल विक्की सागर ने लिखे हैं।
1: जब किसी की चाहत दिल में बस जाती है तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर?
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
7: चाहत की राहों में कुछ ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो लोग दिल में बसते हैं, वो उम्र भर याद आते हैं।
8: वाह खिलेश, प्यार की मिठास से भरे इस गीत ने तो माहौल ही बदल दिया।
7: बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम में हम आपको और भी गीत सुनवाएंगे। अभी सुनते हैं झलकी। शीर्षक है इम्तिहान, लेखक है अजय श्रीवास्तव और निर्देशक है साहिद हुसैन।

0: क्या ये कल का अखबार है? वही खबर रोज रोज पढ़ने को मिलता है, कोई अंदर तो कोई बाहर, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। यार विजय, ये कल से तू ये अखबार मंगाना बंद कर दिया।
1: अरे तू पढ़ना क्या चाहता है? कोई फड़कती हुई खबर ना, जिससे पढ़कर तेरे होशो हवास गुम हो जाए।
0: हाँ यार, पर इसमें भी वही रोजमर्रा की ये अखबार है, ये बकवास।
1: आखिरी वाले पन्ने को छोड़कर।
0: क्यों, उसमें फिल्मी पोस्टर छपा है क्या, या फिर राशिफल? तू तो बिल्कुल बेवकूफ है यार, जरा भी इंटरेस्ट नहीं। ये ले अखबार, पलट, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ा।
1: तू ही पहले पलट ले, फिर मुझसे बात करना, तब तक मैं ये चाय खत्म कर लूं।
0: विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की घोषणा। परीक्षाओं की घोषणा? अरे यार विजय, देख देख क्या समाचार है, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की घोषणा। अरे अरे देख यार,
1: मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ और तीन बार सुन भी लिया। मुझे तो बस राशिफल पढ़ना है, बाकी सब खबर मेरे लिए मायने नहीं रखती।
0: मायने नहीं रखती? तो आधे घंटे से क्या पढ़ रहा था, चीखा क्यों नहीं मेरी तरह?
1: बात यह है कि डर के मारे मेरी आवाज ही बंद हो गई थी।
0: तेरी तो आवाज खो गई, पर मेरी तो सारी याददाश्त ही चली गई। मैं कौन हूँ?
1: अब एक्टिंग बंद कर और ये चाय पी ले।
0: ये चाय है या कोल्ड ड्रिंक? खैर, दिमाग की गर्मी शांत तो होगी इससे। यार विजय, चल कॉलेज चले।
2: नीतू देख, मंदिर में कितनी भीड़ है, हम दोनों पूजा कैसे कर पाएंगे?
3: जब पिक्चर टॉकीज की लाइन में घुसकर तो टिकट ला सकती है, तो फिर ये क्या भीड़ है?
2: पिक्चर टॉकीज और पूजा करने में काफी फर्क है, वहाँ तो देखना पड़ता है कि कोई सीन न निकल जाए, पर यहाँ आओ चले अंदर।
3: आज इतनी भीड़, कोई त्योहार है क्या?
2: मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। दरअसल परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, इसलिए सारे विद्यार्थी अब रोज ही यहाँ मंडराते दिखेंगे।
3: टाइम टेबल आ गया है और मुझे खबर नहीं, प्लीज बताना कब से शुरू है परीक्षाएं?
2: अगले हफ्ते प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी। सुन रही है ना? अरे नीतू कहाँ चली गई? लगता है परीक्षा का नाम सुनते ही यह भगवान को प्यारी हो गई।
4: बच्चे, तेरा मुख देखकर ही मुझे ज्ञात हो रहा है कि तेरी भाग्य रेखा पर संकट है।
0: महाराज, संकट है, इसीलिए तो आपसे सलाह मांग रहे हैं महाराज।
4: बच्चा, तेरी विद्या रेखा में भी अवरोध है, लगता है इस वर्ष की परीक्षा तेरी अंतिम परीक्षा होगी।
5: क्यों ज्योतिष जी, क्या फिर ये मर जाएगा?
0: ज्योतिषी जी विद्या रेखा की बात कर रहे हैं, और तू घसीट कर जीवन रेखा को मत ला यार।
4: अरे तू इतना मत उछल बच्चा, वरना तेरी भी कुंडली बिगाड़ दूंगा।
5: नहीं ज्योतिष जी, आपकी कृपा बनी रहे, यही तो मैं चाहता हूँ। याद है ना, पिछले साल मैंने आपको 101 रुपए दक्षिणा देने का वादा किया था,
4: जो कि आज तक नहीं दिया। अब इस वर्ष दुगना लूंगा, समझा? वो भी एडवांस में, अन्यथा भाग्य फल बताना बंद।
5: परंतु आपके अनुसार रिजल्ट आया ही नहीं, पिछले साल परसेंट भी कम थे, इस बार तो सही सही बताइए ना।
0: अरे तू हर समय ज्ञानी व्यक्तियों का मजाक उड़ाएगा तो और क्या होगा? पिछले बार कितने मंदिरों में मनोतियां भी मांगा था, पर ज्यों ही पास हुआ पूरे पैसे ढाबे में खर्च कर दिए।
5: अब छीछा लेदर तो मत करवा यार, आखिर भूल तो हो ही जाती है ना, मैं भी इंसान हूँ तेरी तरह, ज्योतिष जी की तरह, और वो जो पीछे आ रहे हैं ना उनकी तरह।
4: वो तो ठीक है बच्चा, पर इंसानों की इंसानियत मत देखना, पहले भाग्य पताने के पैसे रखते जा, वहाँ रख दो इधर।
3: बधाई हो प्रिया, कल ही तो मिली थी, आज सगाई हो गई तुम्हारी।
2: अब तुम्हें कौन सी गलतफहमी हो गई है कि मेरी सगाई हो गई?
3: वाह, ये अंगूठी जो तुमने आज पहन रखी है, पता ना कैसा दिखता है वो, शादी कब होगी?
2: अंगूठी पहनी तो क्या सिर्फ सगाई की ही होगी? नीतू, ये जो है ना, यह चमत्कारी अंगूठी है, परीक्षाओं के लिए खास बनाई गई है, तू भी एक मंगवा ले।
3: मुझे भला कौन पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है?
2: क्यों, तो फिर कॉलेज में एडमिशन टहलने के लिए लिया था?
3: हाँ, बस ऐसा ही कुछ है। दरअसल मेरी जहाँ शादी तय हुई है वो रास्ता कॉलेज की ओर से ही जाता है, आते जाते नजरें मिल जाती हैं, बस अब चाहे फेल हो या पास।
2: हाँ, ये नहीं तो वो डिग्री तो मिल ही जाएगी। मिस से मिसेज बनने की बधाई तुम ही रखो।
3: पर तू इतना बोझ उठाए कहाँ जा रही है?
2: कोचिंग क्लास, क्या करूँ, मेरे होने वाले वो जो है ना, उन्होंने कहा है कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता शादी की डेट भी फाइनल नहीं होगी। क्या करें, मजबूरी है, पास तो होना ही पड़ेगा। अच्छा चलती हूँ।
5: अबे देख अमित, हमारी क्लास की प्रिया नीतू लगता है इधर ही आ रही है। अबे इंप्रेशन खराब मत करना है, अब ऐसा कर, जरा पढ़ाई वढ़ाई की बात शुरू कर दे।
6: ऐसा क्या, तो ले फिर देख।
0: विजय, मुझे तो सारी किताबें याद हो गई यार, लगता है इस बार परीक्षा में 100 में से 101 नंबर मिल ही सकते हैं। लेकिन यार मैं कुछ कम ही लिखूंगा यार, ताकि 80-90 नंबर ही मिल जाए। अच्छा तू क्या करेगा?
5: अबे कुछ कम कर, एकदम अपसेट हो जाता है। 80-90 नंबर मिलेंगे या कटेंगे, ये तो बस हम दोनों ही जानेंगे।
2: अमित, विजय, हम लोग तुम्ही को ढूंढते आ रहे हैं, कॉलेज भी नहीं आते तुम तो।
3: पढ़ाई से फुर्सत मिले तब तो।
5: पढ़ाई तो वो करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, हमारे पास तो पेपर पहुंच जाते हैं। क्यों अमित, जरा अपनी जेब से पेपर तो इन्हें दे दे।
0: मेरी जेब में पेपर? अच्छा वो पेपर, वो तो दूसरी वाली शर्ट की जेब में है। ऐसा करते हैं ना, हम इन्हें बाद में दे देंगे।
3: रहने दो, फेंको मत।
2: हाँ पेपर मिल भी जाएगा तो क्या लिखोगे, कुछ पढ़ोगे तभी तो। आओ चले लाइब्रेरी की ओर।
5: प्रिया, नीतू, तुम दोनों जरा हमारी मदद कर दो ना पढ़ाई में, कुछ भी भेजे में नहीं घुस रहा है, रात रात भर नींद नहीं आती है, रात में सपने आते हैं कि फेल हो गए, देखो ना क्या हाल हो गया हमारा।
3: हाँ चेहरे पर तो 6:30 बज रहे हैं, साल भर की नेतागिरी और कॉलेज की यूनियन बनाने हड़ताल करवाने से फुर्सत मिले तब तो पढ़ेंगे नेताजी।
0: अगर इस साल पास हुआ तो सारे काम छोड़कर साल भर पढ़ाई में जुटा रहूंगा, वरना नदी में कूद कर चांद दे दूंगा।
2: मत कूदना, पानी कम है, कहीं सिर फूट गया तो।
5: उड़ा लो मजाक। अरे जितनी देर तुमसे बहस की ना, उतनी देर यदि नकल के लिए चिड़ बनाओ तो ही बेहतर होगा।
0: हाँ और पकड़े गए तो 2-3 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। क्यों ना ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें विद्यार्थियों से परीक्षा लेने वालों को दंड देने का नियम हो।
2: आज ही पास करा लो, वरना प्रधानमंत्री जी बजट में बिजी हो जाएंगे नेताजी।
5: फिर राजनीति की ओर जा रहे हो, लो हम ही सीरियस हो जाते हैं। मजाक बंद करो, परीक्षा के मारे तो हमें रोना आ रहा है और तुम्हें हंसी सूझती है।
3: हंसी आ रही है कि साल भर तुम लोग जो हमारी हंसी उड़ाते रहे कि देखो पढ़ाकू लोगों को, अब
5: अगर तुम्हारी डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है तो हमसे उधार ले लो, पर पिछली बातें मत दोहराओ और पास होने का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताओ।
2: बस यहीं बैठकर शुरू हो जाओ किताबें रटना, यही शॉर्टकट फॉर्मूला है।
3: तो फिर ये अंगूठी और ज्योतिष के पास आना जाना वो क्या है?
2: क्या करें, उनका विज्ञापन ही इतना जानदार होता है कि, और हम लड़कियां तो विज्ञापन देखा नहीं और आजमाना शुरू।
0: कौन से ज्योतिष के पास गई थी जरा बताना।
5: अब तो मान जा बेवकूफ, वरना जब मार्कशीट आएगी ना तो सारे ग्रह नक्षत्र दिन दहाड़े ही नजर आ जाएंगे।
3: अच्छा गपशप बंद, परीक्षा तक सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, सिर्फ पढ़ाई।
5: सोच रहा हूँ आज पिक्चर देख लें, फिर दिमाग फ्रेश हो जाएगा तो पढ़ाई में जुट जाऊंगा।
2: गया, ये तो गया, इसका नतीजा तो मुझे मालूम हो गया।
5: अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई।
7: हेलो रमेश, हाय
8: हाय, कैसे सुन रही थी? बिल्कुल नहीं, बहुत डर लग रहा है।
9: कैसे करेंगे सच पूछना?
8: एक से नहीं पता बता था, दूसरे का टेंशन मार हो जाता है, और प्रैक्टिकल तो और ज्यादा टेंशन है। कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल तो कर भी लेंगे साथ में, पर वाइवा वाइवा का पता नहीं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कभी क्रिकेट पूछ लिए, कभी कुछ पूछ लिए। ऐसे करेंगे, टेस्ट तो इतना सा ढेर सारा वापस।
10: हेलो राम।
5: ओके ओके ओके।
2: नीतू, अमित, जरा देखो तो कॉलेज में यह भीड़भाड़ क्यों है? चलो मौका ये वारदात पर पहुंच कर देखें।
3: ये लगता है कोई मर गया है।
0: लेकिन परीक्षा तो अभी शुरू तक नहीं हुई है भाई। अच्छा ये तो कॉलेज के पुराने छात्र नेता हैं। जरा सुने क्या कहते हैं ये।
11: मेरे साथियों, ये अन्याय है। हम पर जल्दबाजी में जबरदस्ती ये परीक्षा थोपी जा रही है। हमने अभी अभी तो पढ़ने के लिए कॉलेज आना शुरू किया था। अरे तुरंत ये परीक्षा, भला तैयारी हो तो कैसे हो।
5: वाह, ये तो मेरे दिल की बात कह रहा है।
3: ये तो पिछले 5 वर्षों से सिर्फ तैयारी ही करता है, फिर भी।
2: हाँ भाई, नेताजी जो है ये तो यहाँ के स्थायी छात्र ठहरे। चलो वही पुराना रिकॉर्ड बजा रहा है।
5: फिर इस साल नकल मारते पकड़ा जाएगा और अगले साल चांद सा मुकड़ा लेकर कॉलेज में मंडराने लगेगा।
2: जैसे हमारे मोहल्ले में चुड़ैल मंडराती है, तुम्हें मालूम है, उसने मुझ पर अपना साया डाल रखा है, तभी तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल ही नहीं लगता।
3: हाँ, उस चुड़ैल का नाम है शादी। क्यों, तू तो बस परीक्षा निपटाकर चली ससुराल, रोना तो हमें है।
0: मैं कंधा दूं क्या?
3: नहीं, तुम्हारी शर्ट धोने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।
2: नीतू, ये तू अपनी रुमाल में क्या लिख रही है? ओ, ये तो
3: प्रिया, ये फॉर्मूला है परीक्षा में पास होने का, विजय ने बताया है, वो भी बेचारा रात रात भर जाकर।
2: जितनी मेहनत इसमें लगा रही हो वही शुरुआत से करती तो ये नौबत नहीं आती। और ये विजय और अमित, इन्हें पता नहीं ऐसा रास्ता कौन दिखलाता है।
5: रास्ता तो उन्हें दिखाया जाता है जिन्हें रास्ता नहीं सूझता। प्रिया, ये तो फैशन है, कम पढ़ो और ज्यादा पाओ।
2: और अगर पकड़े जाओगे तो 2-3 साल के लिए परीक्षा भी नहीं दे सकोगे।
3: तो फिर क्या करें प्रिया?
2: सिर्फ मेहनत और लगन से पढ़ाई करना है, यही ठान लो।
5: प्रिया तो यूं कह रही है जैसे जैसे जैसे
3: भैंस के आगे बीन बजाना।
5: सत्यानाश, मैं कोई अच्छा सा डायलॉग सोच रहा था।
2: अब सोचना है तो सिर्फ पढ़ाई की सोचो बस।
3: प्रिया, ऐसा करें कि मूड बनाया जाए कि कैसे पढ़ें। इसके लिए क्यों ना बगीचे तक सैर करके आए, वहीं चाट की दुकान तक।
2: चाट की दुकान तो रिजल्ट निकलने के बाद भी रहेगी, तू अभी अपनी किताबें तो चाट ले बेवकूफ।
5: परीक्षा तू महान है, तू आती है तो अपने बेगाने हो जाते हैं, साथ ही छूट जाते हैं।
3: प्रिया, लगता है एक नया परीक्षा पागल आ गया, इससे बच कर रहना होगा। हाँ चले।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे झलकी। शीर्षक था इम्तिहान। लेखक थे अजय श्रीवास्तव। प्रतिभागी थे गिरिराज श्रीवास्तव, शहजाद, मौनिता, प्रगति रावत और निर्देशक थे शाहिद हुसैन।
1: और अब बारी है उस गायिका की जिनके गीत आज भी युवाओं के दिलों में बसते हैं, फाल्गुनी पाठक।
0: जी हाँ, उनका गीत एक पगला है मेरे गली का एल्बम मैंने पायल है छनकाई का हिस्सा है। इस गीत के संगीतकार ललित सेन हैं और गीतकार सुधाकर शर्मा हैं।
1: कभी कभी मोहल्ले की छोटी सी प्रेम कहानी भी दिल को छू जाती है, उसी मासूम एहसास को बयां करता है यह गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों, फाल्गुनी पाठक के गीतों का कुछ बात ही और है।
5: हाँ उदित, तुमने सही कहा। दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम को देते हैं कुछ पल विराम और आपको ले चलते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका की ओर, जिसमें आप जानेंगे विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी कुछ जानकारियां। नासा ने अंतरिक्ष संचार में बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेस इंटरनेट तकनीक का परीक्षण किया है जो अंतरिक्ष यानों को विभिन्न उपग्रहों नेटवर्क के बीच स्वतः स्विच करने में सक्षम बनाएगी। इससे भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों में बेहतर संचार संभव होगा।
4: नासा ने ऑटो मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम मानव को पुनः चंद्रमा पर भेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
5: समुद्री पर्यावरण पर नई शोध रिपोर्ट सामने आई है। नासा के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण महासागरों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जिसका असर सूक्ष्म समुद्री जीवों पर पड़ सकता है।
4: कैंसर उपचारक के क्षेत्र में आशाजनक प्रगति हुई है। हाल के शोधों में कुछ नई दवाओं के गंभीर प्रकार के कैंसर रोगियों की जीवन अधिक बढ़ने में परिणाम दिखाई है। इन्हीं वैज्ञानिक उपलब्धियों और नई खोजों के साथ आज की विज्ञान पत्रिका में बस इतना ही।
5: दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम में हम आपको और भी गीत सुनवाएंगे। अभी जानते हैं कुछ सामान्य ज्ञान की बातें।
4: पहला सामान्य ज्ञान है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है।
5: पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 57% खारा पानी है, केवल 3% ही जल मीठा है।
4: सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है।
5: भारत का संविधान 26 नवंबर 1939 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
4: पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, अभी आपने जाना कुछ सामान्य ज्ञान की बातें।
5: दोस्तों, प्यार की गहराई को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं।
4: ऐसा ही एक गीत है, इस कदर अपनी मधुर आवाज से सजाया है सोनू निगम ने, और इसके बोल लिखे हैं फैजल अनवर ने।
5: तो आइए प्यार के इस एहसास को महसूस करते हैं।

0: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: दोस्तों, कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो चलिए चलते हैं फिर से कार्यक्रम तरन्नुम की ओर और सुनवाते हैं आपको आज का अंतिम गीत।
4: और अब पेश है एक खूबसूरत नगमा जिसने लाखों दिलों को अपनी मधुरता से मोह लिया। यह गीत प्रेम, इंतजार और खूबसूरत एहसासों की कहानी कहता है। तो आइए सुनते हैं अदनान शमी की मधुर आवाज में ये सदाबहार गीत।

0: दोस्तों, वक्त की मांग है कि अब हमें रुखसत होना होगा। आज के युवाणी की सुहानी शाम में बस इतना ही। अगली मुलाकात के लिए रहिए तैयार।
1: इसी वादे के साथ अपने रेडियो साथी उदित नाग
0: और मुझे खिलेश पांडे को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है।

0: शेयर्ड विजन भी है
1: और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
2: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रूपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। श्रोताओं, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। इस बीच सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा।

0: 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर विकासखंड में 22 जून से रेस रत्नगर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की जा रही है। इस अकादमी के माध्यम से विद्यार्थियों को एसएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, अग्निवीर सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली से कराई जाएगी। श्रोताओं, देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। किसान 40245981880 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन तथा अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 10 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के पूरे होने से सुपेबेड़ा, सागुनबाड़ी, सेंधमुड़ा, खमहारगुड़ा और ठिरलीगुड़ा सहित 9 गांवों के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के तहत लगभग 80% कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं शेष बचे कार्यों को 5 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के पूरा होने से इन गांवों के 2000 से अधिक परिवारों को घर घर नल कनेक्शन का लाभ मिलेगा। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सभी तालाबों और जलस्रोतों में मत्स्याखेट कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास या 25,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है। श्रोताओं, जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद द्वारा आगामी 19 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा फील्ड स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड सहित 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ई रोजगार पोर्टल तथा छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख था फरहाज मेमन का। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 हुए हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या
4: समाचार। मुख्यमंत्री है आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 छीन विकास काम के करीन लोकार्पण और भूमि पूजन। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में देश भर समेत छत्तीसगढ़ में हुआ थे कई छीन कार्यक्रम। ए बछर के थीम रखे गए है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। और मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे और बेरा लग सकत है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 छीन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। ए मौका में श्री साय कहीन कि ये विकास काम मन के माध्यम ले सड़क, पिए के पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरी अधोसंरचना, गांव के विकास ले जुड़े सहूलियत बाढ़ी। आज विश्व रक्तदान दिवस हरय। ए मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव देशवासी मन ले स्वैच्छिक रक्तदान के अपील करे है। श्री नड्डा और श्री जाधव सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व बारे में जागरूकता बढ़ाए बर जोर दीन। ए बछर विश्व रक्तदान दिवस की थीम है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। विश्व रक्तदान दिवस के मौका में आज छत्तीसगढ़ में घलो अब्बड़ अकन कार्यक्रम हुआ थे। एक कड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के छत्तीसगढ़ इकाई डहार ले लोक भवन में होए समारोह में राज्यपाल रमन डे कहा 30 झीन स्वैच्छिक रक्तदाता मल्ला सम्मानित करीन। ए मौका मा लोक भवन मा रक्तदान शिविर राखेगीस जेमा लोक भवन के अधिक

0: अधिकारी कर्मचारी समेत आने मनखे मन घलो रक्तदान करीन। समारोह में बोलत राज्यपाल ह कीन कि कोनो भी मनखे के सबले बड़का धर्म है दूसर के जीवन बचाना और एहर कहूं अपन खुदे के खून के एक बूंद ले होही एखर ले बड़का कोनो पुण्य नहीं हो सके। ओमन बतैन कि थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर और एक्सीडेंट असन इमरजेंसी हालत में खून के जरूरत है जियई मरई के बीच अंतर तय करते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तैयारी चलत आयुष मंत्रालय भारत सरकार और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग ले आज बिहनिया एक ठीन विश्व स्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम रखे गए रहीस। ये कार्यक्रम के उद्देश्य YouTube लाइव योग स्ट्रीम पर सबले ज्यादा देखैया मन के नवा विश्व रिकॉर्ड बनाना रहीस। एकर जरिए संसार भर के योग अभ्यासकर्ता और वेलनेस उत्साही मल्ला एक ठीन डिजिटल मंच में सकेले के प्रयास करेगी। ये ऑनलाइन योग सत्र बिहनिया 6:15 ले 7:35 तक रखे गए रहीस। एमा करीबन 130 देश ले लोगन मन शामिल हुईन। अवैया 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाही। एकर पहली दुर्ग पुलिस लाइन में आज सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो एक कार्यक्रम हुई। एमा योग विशेषज्ञ मन योग के जरिया पुलिस कर्मी मन के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन खातिर उत्साह बढ़ाए बर जोर दीन। उमन यहू बतेन की मानसिक शांति और आत्म जागरूकता हा मनखे मल्ला नशा पानी ले दूर राखथे। जसपुर जिला अब रेलवे नेटवर्क ले जुड़ी। केंद्र सरकार है धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नवा रेल लाइन प्रोजेक्ट ला विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करे है। करीबन 292 किलोमीटर ये रेल लाइन है जसपुर ला पहली बेर राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ले जोड़ी। एखर ले क्षेत्र में पर्यटन रोजगार और उद्योग मन ला घलो बढ़ावा मिले के उम्मीद है। कबीर प्रकट दिवस के मौका में दुर्ग जिला के करहीडी गांव में पुलिस विभाग डहर ले सड़क सुरक्षा अभियान के संगे नशा मुक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम रखे गए रहीस। कार्यक्रम दौरान लोगन मन ला ट्रैफिक नियम के पालन करे के संगे दुपहिया गाड़ी चलात बेरा हेलमेट लगाए बर जागरूक करेगी। उन्हें साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी ले बांचे बर लोगन मन ला फर्जी लिंक में क्लिक नहीं करे के संगे कोनो भी मनखे ला ओटीपी नहीं देबर अपील करेगी। कार्यक्रम में माई लॉगिन कमांडो मन ला सुरक्षा किट बांटेगी। राज्य सरकार डहर ले मोर गांव मोर पानी ए अभियान के चलत जल संरक्षण ला जन आंदोलन के रूप में देखे जाते। यही कड़ी में बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर विकासखंड में गवई के मनखे जनप्रतिनिधि और स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन मन श्रम दान करके एक दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाला बनाई है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय DPI है स्पष्ट करे है कि राज्य के सबो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल मन परन दिन 16 जून के शुरू हुई। विभाग है 22 के सोशल मीडिया के आने आने माध्यम में 1 जुलाई ले स्कूल शुरू हुए के भ्रामक और फर्जी सूचना प्रसारित करे जाते। DPI है पढ़ैया लयिका उनखर पालक और लोगन मन ले अपील करे है कि वो मन आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। यही बीच जांजगीर में पत्रकार मन ले गोड़ बात करत मुख्यमंत्री है स्पष्ट करे है कि प्रदेश के सबो स्कूल परन दिन 16 जून ले ही खुली। उमन किहीन की तारीख आगू घुचाए बर कोनो चर्चा नहीं हुई है। उन्हें हर साल सन ए बछर घलो स्कूल मन में साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बांचे समाचार डहार। बिलासपुर में NTPC सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान के काली समापन होगी। 4 सप्ताह तक चले ट्रेनिंग में 121 जिन ग्रामीण नोनी मन योग आत्मरक्षा कंप्यूटर संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई तीन विषय के प्रशिक्षण लीन। कलेक्टर संजय अग्रवाल हा उखर पालक मन ले नोनी मन ला आगू बाढ़े के समान मौका दे खातिर अपील करीन। ए मौका में NTPC हा हर बछर 10 जिन मेधावी नोनी ला कक्षा 6वीं ले 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दे के घोषणा करे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अवि मानिकपुरी ले मुलाकात करीन। ए मौका में मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अपन प्रतिभा अनुशासन और कड़ा मेहनत के बल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सुग्घर प्रदर्शन करके प्रदेश और देश के नावला उज्जर करत है। रायगढ़ जिला में जेल में धंधा एक जिन विचाराधीन कैदी के सस्पेंस हालत में मौत होए बाद उखर परिवार वाले मन हंगामा मचेन। काली हुरहा तबियत बिगड़े बाद एक कैदी ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए रहिस, जिहां इलाज के दौरान उखर मौत हो गई। शक्ति जिला के छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक के फर्जी शाखा चलाए और नौकरी लगाए के नाम में ठग के फरार तीन झीन आरोपी ला माल खरोदा पुलिस गिरफ्तार करे ही। मामला में आगू घलो मुख्य आरोपी अनिल भास्कर समेत 6 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल पठो दे गए है। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे में और बेरा लग सकत है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ला बताई कि आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरजई चमकई के संगे सीटर साटर पानी और गाज गिर सकत है। उन्हें अवैया 3-4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में पहुंच सकत है। अब थोरकुन समाचार सारमा। जांजगीर चांपा जिला में एकठिन कथित ऑडियो वायरल हुए बाद जिला शिक्षा अधिकारी है संविदा पीटीआई नल साय दिवाकर ला सस्पेंड कर दी है। जगदलपुर में हुए बस्तर आम महोत्सव में किसान मन आमा के 2000 ले ज्यादा प्रजाति ला दिखाई। और चंडीगढ़ में 10 जून ले 13 जून तक हुए राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव के हेमवती नाग कांस्य पदक जीते है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। मुख्यमंत्री आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 ठिन विकास काम के करीन लोकार्पण और भूमि पूजन। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में देश भर समेत छत्तीसगढ़ में हुआ थे कई ठिन कार्यक्रम। ए बछर की थीम रखे गये है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। औ मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे में औ बेरा लग सकत है। एक रेसम छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।

0: स्पिनर्स पे काफी बेनिफिट भी मिलता जाएगा। सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने।
1: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandana but of course Harmanpreet Kaur, but just to carry that conversation forward very quickly, जो आपने यहाँ बात रखी अभी वैशाली कि जैसे जैसे ये विकेट और पुराना हो गए पिच होगी, सो इट्स अ गुड विकेट अभी बैट करने के लिए लेकिन बाद में बोलर फ्रेंडली हो जाएगा। I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an added advantage in terms of batting for India?
2: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुल मालिक को आज रखा गया है टीम में। हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं। तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर और यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है। फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है। तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए।
3: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20

कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति मंदना जब उनके सामने नासर संधू और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति मंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना

0: or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
1: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4-5 batsmen, and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandhana, they are good players. They will, you know, manage on top along with...
2: आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे। इस मैच का आंखों देखा हाल फिर से सुनिएगा शाम 7 बजे से। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 होने को है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
8: रुक जा बुड्ढू।
9: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
7: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
9: पर कार जीत जाते तो
7: पापा होमवर्क नहीं कराते।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
11: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
10: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
11: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
10: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
11: क्यों?
10: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
12: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
13: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
14: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
13: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
14: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
13: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
14: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
12: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
15: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
14: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
15: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
14: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
15: आकाशवाणी से।
12: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंस्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के लिए सबसे अधिक दर्शक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना था। इसके जरिए विश्व भर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करने का प्रयास किया गया। यह ऑनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक आयोजित किया गया। इसमें करीब 130 देशों से भागीदारी की गई। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले दुर्ग पुलिस लाइन में आज सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों ने योग के जरिए पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि मानसिक शांति और आत्म जागरूकता व्यक्ति को नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखने में सहायक होती हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इस बीच जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी स्कूल 16 जून से ही खुलेंगे। उन्होंने कहा कि तारीख आगे बढ़ने के को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा और श्री जाधव ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। विश्व रक्तदान दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने 30 स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर लोक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोक भवन के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पौणी में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरी अधोसंरचना तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य केवल निर्माण नहीं होते, बल्कि वे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनते हैं। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 200

0: 92 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने श्रमदान कर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के करहीडी गांव में पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के साथ ही नशा मुक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों से फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करने और किसी व्यक्ति के साथ OTP साझा नहीं करने की अपील की गई। कार्यक्रम में महिला कमांडो को सुरक्षा किट वितरित की गई। बिलासपुर में NTPC सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान का कल समापन हो गया। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में 121 ग्रामीण बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों का प्रशिक्षण लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ाने के समान अवसर देने की अपील की। इस मौके पर NTPC ने हर वर्ष 10 मेधावी बालिकाओं को कक्षा 6वीं

0: जा रहा है। लोक वाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय ने बताया कि 23 जून तक चलने वाले इस कार्यशाला के दौरान खंजेरी, तंबूरा, गतका, तुरही, चरही, चिटकुली, कुहकी और रुंजी जैसे वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यशाला हर दिन सुबह 7 से 11 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक आयोजित होगी। इसमें हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। रायगढ़ जिले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और मौत को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। सक्ती जिले के छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक की फर्जी शाखा संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले फरार 3 आरोपी को मानखरादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही मुख्य आरोपी अनिल भास्कर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों ने 6 व्यक्तियों को बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 7,71,000 रूपए की ठगी की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यही स्थिति अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी।
1: आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा वज्रपात होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 4-5 दिन तक भी रहने की चांसेस है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवा, वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मानसून आज का स्थिति में देखा है तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एंट्री होने में 3 से लेकर 4 दिन लगने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक किसान शामिल हुए। और चंडीगढ़ में 10 से 13 जून तक आयोजित राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कोंडा गांव की हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: पापा कॉलेज की
3: मीडियम वेव 396.8 द मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम वेव 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: लालजारी राम राम
1: अमर लिस्ने
0: हां
1: तो पनकु हामी दुने त भेटघाट होले नै आधा हम छु रेडियो सुनतो दादा दिदी मन सुनले भेटघाट हो बस्तर किशोर कार्यक्रम सुनतो सब पाए सियान सजन मन दादा दीदी मन भाई भाई मन और संजोरिया संगवारी मन के मैं लाल हजारी
0: और मैं पनकु
1: हम दोनों को रसे राम राम और पनकु मेरा मन के तो बहुत नहीं हुए नहीं
0: बहुत कसम के समय आवले नहीं ये मन बोले रेडियो कटा कटा यूं नाम कटा कुछ
1: ताकू रसे ताए तो जब मैं रेडियो सुनतो नन्ने ने पीला मन के हम दोनों जो बाट ले खूब पे माया
0: और लाड बोले हाँ तो लाल हजारी
1: हाँ
0: तो
1: हम तो लोग ऐसे जहला मन नंगत नंगत अलग जहला मन के सुनो
0: अलग अलग सुनो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रिप सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: और ऑटो रिक्शा असनोर सस्ता मोला ते उदर किता दूना परिभाषा हिसाब से सुडला कार गाड़ी 1200 सीसी ते अपना पेट्रोल कार गाड़ी आयत के 1500 सीसी ता डीजल कार और 4000 मिलीमीटर लाटना और मिंदे इत के यू कोंडे 18% जीएसटी श्रेणी ते वाता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जीएसटी ने ऐतिहासिक बदलाव आनते सरकार ऑटोमोबाइल उपरे जीएसटी दर ने संशोधन कर ली से। एचुले तिहार समय ने एंट्री लेवल हैचबैक कंप्यूटर बाइक और ऑटो रिक्शा घेन तो लोग मन के ये मन और सस्ता ने मिरे दे। नुआ परिभाषा हिसाब ले नानी कार 1200 सीसी तक जो क्षमता बीती पेट्रोल कार और 1500 सीसी तक जो डीजल कार आसे जेचो आगर ले आगर डेंग रतो 4000 मिलीमीटर आसे ये सपाय 18% जीएसटी चो श्रेणी ने ऐसोत।
7: हाँ तो दादा दीदी मन ये तो रहे नंगत ज्ञान ध्यान बीती गोट बात मन, तो हम चो लगे आसी असनी गोटो काज गोट कानून की बात। इतने भेट हो सोत इमनात आशुतोष द्विवेदी और इमन संगे भेट कर सोत इमनात श्री चंद्र ऋषि ठाकुर, तो आले इमन चो गोट बात मन के सुनू।

आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे संपत्ति विवाद से संबंधित सभी कानूनी मामलों के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए

0: की अगर हम बात करें तो यहाँ किस प्रकार के विवाद ज्यादातर देखने को मिलते हैं?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, संपत्ति विवाद में चल अचल संपत्ति शामिल है। चल संपत्ति से मतलब यह है जिनको इधर से उधर किया जा सकता है, और अचल संपत्ति में अस्थाई संपत्ति जो जल जंगल जमीन ये सारी। तो अब चल और अचल संपत्ति के विवाद के विषय में जहां तक प्रश्न है, प्रमुखतः विवाद मालिकाना हक से होता है, वसीयती अधिकार के संबंध में होता है, वारिसों के संबंध में होता है। ये प्रमुख तीन प्रकार के विवाद होते हैं। संपत्ति के अधिकार को लेकर के लोगों के बीच में जहां असहमति बनती है वहां पर ये विवाद शुरू होते हैं। और चल और चल संपत्ति के संबंध में वारिसों के बात को, विरासत हक को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के, उसकी सीमा को लेकर के जहां पर विवाद उत्पन्न होते हैं उसे संपत्ति विवाद कहा जाता है। भारत देश में जैसा कि आपने पूछा कि बहुतायत कौन से विवाद ज्यादा आते हैं, हमारे देश में अज्ञानता है, अशिक्षा है। भारत देश के सारे प्रदेशों में भूमि से संबंधित कानून बने हुए हैं जो कि प्रादेशिक कानून होते हैं, और कुछ सेंट्रल लॉ हुआ करता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें कई तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम बनाया गया है, उसमें इन सी चीजों का उल्लेख किया गया है कि एक संपत्ति दूसरे के पास किस तरीके से जा सकती है। लोगों को इसका ज्ञान कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, परचेज करने के बाद पता चला कि म्यूटेशन की एक कार्रवाई होती है, जमीन पे अपना नाम दर्ज कराना। जो रेवेन्यू पेपर्स होते हैं हमारे, जो छत्तीसगढ़ के कंसर्न में अगर बात करें तो किस्तबंदी खतौनी B1 होता है, खसरा होता है। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है या जमीन को किसी अधिकार के तहत प्राप्त करता है तो उस बारे में राजस्व अधिकारी को सूचना दी जानी होती है। राजस्व अधिकारी का मतलब है तहसीलदार हो गया, इनको सूचना देनी होती है। गांव में पटवारी होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, इन लोगों को सूचना देने की जरूरत पड़ती है। सूचना देते हैं तो बाकायदा उस सूचना को दर्ज किया जाता है, तहसीलदार के पास ले जाया जाता है कि पहले इस संपत्ति के ये मालिक थे। इस मोड से हमने बताया आपको, संपत्ति अंतरण अधिनियम दान के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से, गिरवी के माध्यम से, इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है तो जो जिस व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है उसको आप B1 में दर्ज करो, उसके स्वामित्व में दर्ज करो, खसरा में दर्ज करो।
0: ज्यादातर जब ऐसे जमीन के या फिर प्रॉपर्टी के मामले आते हैं तो पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति और स्वयं की संपत्ति की बात भी आती है। लोगों को जानकारी होती है कि पैतृक संपत्ति क्या है, पिता की संपत्ति क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं भी होती है। तो इन तीनों संपत्तियों में क्या अंतर है, और इन मामलों को, जैसे अगर कोई संपत्ति का विवाद आ भी जाता है तो ऐसे मामलों को सुलझाने में वसीयत क्या भूमिका निभा सकती है?
1: देखिए, प्रॉपर्टी दो तीन प्रकार की होती है। एक तो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति माने अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो तो पैतृक संपत्ति होती। दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर्ड, स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति से आशय है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी को स्वतः परचेज किया या अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने परिश्रम से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मतलब है पिता, बेटा, बेटी, भाई, इन लोगों ने सामूहिक धन से अगर कोई उस प्रॉपर्टी को परचेज किया तो ये संयुक्त संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि सारे वारिसों को, यानी तीन पीढ़ी मान लीजिए, अगर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे को और उसके नाती को उसमें बराबर का अधिकार होता है। यहां तक है कि अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो भी उसका अधिकार बन जाता है। इसमें महिलाओं को लेकर के पहले कानून थोड़ा संकीर्ण था। संकीर्ण से आशय यह था कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में बच्चियों को हक नहीं हुआ करता था। अभी 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया और उसमें बच्चियों को भी, महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी बाई बर्थ यानी जन्म

0: से ही उनका पर्यटन और प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति से अधिकार दे दिया गया है। अब आया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बनाता है। इसमें जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जब तक वो जीवित है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता।
1: तो उसमें वसीयत की बात आ जाती होगी।
0: हाँ, उसमें यह होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड स्वाजित संपत्ति होती है उसका वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, उसको बयानित कर सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, गिरवी कर सकता है।
1: और वसीयत अगर वो बना दे तो ये जरूरी नहीं कि उसके बच्चों को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत के माध्यम से अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी को दे सकता है।
0: मैंने बताया ना कि अपने मर्जी से उस प्रॉपर्टी को व्यवहित कर सकता है, उसको किसी को भी दे सकता है, और उसने अगर वसीयत कर दिया किसी तीसरे के पक्ष में तो जो उसके वारिस होते हैं वो दावा नहीं कर सकते
1: जी। और जब हम संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं, कोई संपत्ति हम अक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए?
0: संपत्ति खरीदते समय सबसे पहले तो जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का संपत्ति में मालिकाना हक आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है, किसी दूसरे के संपत्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, उसकी तस्दीक सबसे पहले कर लेना चाहिए। अभी तो काफी सुधार हो गया है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है उसकी फोटो भी नहीं लगती थी, उसका आधार कार्ड की कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लगते थे, नक्शे नहीं लगते थे, यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री की जा रही उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते थे, बहुत सारी इररेगुलरिटी हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें, कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा एक चीज बताया, उसके पूर्वजों की संपत्ति तो नहीं है, यदि उसके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसकी जाँच करें, और उनके कौन कौन वारिस हैं उसकी भी जाँच कर लें, पुराने रिकॉर्ड की भी जाँच कर लें
1: जी।
0: कैसे, एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा, जैसे जमीन, जनजाति समुदाय के व्यक्तियों की जमीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समुदाय का ना हो नहीं खरीद सकता। दूसरी चीजें हैं जो हमको खरीदी में ध्यान देना चाहिए, कुछ अलॉटेड जमीनें हैं, जो जमीनें गवर्नमेंट ने आवंटित कर दी है, पट्टे पर दी है, लीज पर दी है, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दी है तो विदाउट परमिशन आप गवर्नमेंट आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो हमको ये भी देखना है कि कहीं आवंटित जमीन तो नहीं है, अगर आवंटित जमीन है तो इस जमीन के लिए कलेक्टर से परमिशन ली गई है सेल आउट करने के लिए कि नहीं ली गई है। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तीन सारी चीजों को बारीकी से जांच करने के बाद जो है प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। उससे फायदा यह होगा कि भविष्य में विवाद नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे
1: जी। आपने तो बहुत सारी जानकारियां दे दी हमारे श्रोताओं को संपत्ति विवाद से संबंधित, लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो तो जरूर कहें।
0: देखिए, अभी जो स्थितियां बनी है हमारे देश में, जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, और बढ़ने के पीछे कारण यह है जिन व्यक्तियों को जमीनों की जरूरत है उनके बस के बाहर हो रही है। उसका कारण यह है, जमीनों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, जो मीडिएटर लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो जमीनें उनके पास जा रही है। ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहला तो यह करना चाहिए कि जमीनों के संबंध में जाँच पूरी तरीके से करिए, जमीनों की जाँच करने के बाद उसमें आप आगे बढ़िए। दूसरी चीज, अभी नालसा, सालसा और डालसा, नालसा का मतलब यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, स्टेट स्तर पे भी विधिक सेवाएं चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विधिक सेवा दी जा रही है। इसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारियां दी जाती है, और गांव गांव में कैंप लगाए जाते हैं, और जिला विधिक सहायता की ओर से एक वकीलों का पैनल है जो बिना कोई शुल्क के आप

0: को हमेशा जानकारी देने के लिए तैयार है। तो संपत्ति के मामले में यदि आपको कोई जानकारी लेना है, परचेजिंग करना है, या कहीं कोई आपको समस्या आ रही, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है और तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई है। विधिक सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में बताऊं आपको, लोक अदालतों का आयोजन। लोक अदालत का मतलब यह है कि आपसी झगड़े को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाना। लोक अदालत में क्या होता है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती,
1: आपसी समझौता हो जाता है।
0: अदालत में फैसला होगा, एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा। उसमें क्या है, वो जो सामाजिक सद्भाव है वो जो है नहीं दोबारा वापस आएगा। लोक अदालत के माध्यम से आप निपटारा करो, आपके केस का जल्दी निपटारा हो जाएगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
1: आगामी लोक अदालत,
0: आगामी लोक अदालत अभी 12 सितंबर महीने में लगभग नेशनल लोक अदालत तीन होती हैं, कम से कम तीन से चार। तो 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत है और इसके बारे में खूब सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे राजस्व के मामले हों, चाहे संपत्ति के मामले हों, सारे मामले एक ही छत के नीचे देन एंड देयर तुरंत जो है निपटाया जा सकता है। नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को जरूरत है तो 15100 इस नंबर पर फोन करके वो पूरी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टेट लेवल की जो विधिक सेवा है उसके भी नंबर्स हैं, हर जगह आज ऑनलाइन मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे नंबर है, यहाँ पर एक एडवोकेट की हमेशा नियुक्ति रहती है, उनका अलग से विभाग है, उनका अलग से चैम्बर है, उनसे जाकर के कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। विधिक सहायता उन मामलों में मिलती है अगर आप पैसे नहीं लगा सकते हैं, कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हमारा विधिक सहायता मिलता है। तो कानून के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो अदालतें हैं इनके द्वारा जो सुविधाएं लीगल एड की दी जा रही हैं, जिला विधिक सहायता के माध्यम से, राज्य विधिक सहायता के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सहायता के अथॉरिटी के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही है, उसको लेना चाहिए हर व्यक्ति को, और लोग ले भी रहे हैं।
1: जी आशुतोष द्विवेदी जी, आपने संपत्ति से संबंधित विवाद के मामलों में जितनी भी सारी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी है, हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें जरूर लाभ पहुंचेगा। आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: हाँ तो वेरी मच अभी हम ये सुनते रहो ये काय सुंदर भेंटवार्ता के तो अरे हम जो जातो समय बोल ही ली तो जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए सियान सजन मन दादा जी मन भाई बहन मन और संजोरिया संगवारी मन के मैं लाल हजारी
1: और मैं पंकु
0: हम दोनों करो से राम राम।

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार पंकु, जुहार
1: जुहार जुहार लालचारी जुहार
0: अमर लिस ने
1: अमर लेखा है।
0: तो पर वो खामी दिन तो भेड़ा ठलो नहीं तो दा हम जो रेडियो सुनते हो दादा दीदी मन संगले भेड़ा ठलो तो हम जो गांव कार्यक्रम सुनते हो सब पर सियान सजन मन दादा दीदी मन भाई बहन मन और संजय संगवारी मन के मैं लाल हजारी
1: और मैं पंकु
0: हम दोनों करो से जुहार अर्पण को पीला मन के तो भूख नहीं हुई
1: नहीं हुआ सत्य बल से
0: तो नई मन पीला मन के हम दोनों जो बाट ले खूब खूब माया।
1: हाँ तो लाल हजारी
0: हाँ बिल्कुल
1: दखा में बैठ तो
0: हेलो
1: तो दादा दीदी का जी हमें रोज दिन आसन ज्ञान दिए जो गोड़बल धरुनी उसे
0: उसे
1: तो उसने आजी बलाम धरुनी लुसे तो मोटर एक ढील ने पड़ती काय ने तो
0: हाँ का तो आज ही हमें तो गोड़ धरुनी लुसे बुजुर्गों के अनुभव और पुरानी सीख
1: ये दख लाल हजारी कहन बोलवा की हम जो बड़े लोग बड़े बुजुर्ग लोग सब नहीं सियान मन हाँ जो गोट आम के नंगत दर्द
0: दर्द हो रहा है
1: कसम बल्लर हमने जो जीवन ने खूब उम्र बेराले हमन ज्ञान संगासोत
0: संगासोता है
1: आगे जो कुछ ज्ञान मन खूब भी संगासोत
0: हाँ और उन्हें जो जन पुराने सीख हम के आप लोग संस्कृति और परंपरा ने जो उन संगम है और हम के सही गलत जो मार्गदर्शन करुआ है हम के अच्छा अनुभव देवात अच्छा तीज मन के बल सिखावत एक आज हम जो आप लोग बड़े बुजुर्ग जो अनुभव धरतो सीख धरतो खूब जरूरी है।
1: हाँ सत्य बल्लिस एवे कसन हो से आगे जो बेड़ा कमानी बल उड़ रहे
0: हाँ
1: अरे एवे का अनुभव उड़ ने
0: कर सोता है
1: आगे कहाँ है कहीं काय बोलो ने मसीह मसांगत बल नहीं रली
0: नहीं रली
1: मात्र मन का नांगर ने आप लोग काम करते रहो
0: करते रहता है जो आगे जुक जो सियान सजन मन रला इन लगे खुदाल जो पुराना अनुभव मन रली सीख समझ रली कि कसम काय के कसम खातो राय जीवन जो सुख दुख सही गलत सब चीज हम के सीखत रला और अभी बस सिखा दे एक आज ये हम के बड़े बुजुर्ग जो बात के धरतो राय कई नुआ तेज मन सीखत रले सीखतो राय और इन्हें जो इज्जत वाले करतो रहे
1: सत्य बल्ले से के कसन बल्लो ने कि नहीं ये बे मान सम्मान बल्कि दखो कि नहीं मेरे होते
0: नहीं, नहीं, नहीं,
1: आगे चसन कसन में हम मन बल्ले हम के लाड़ पर उतरी करो
0: कर
1: आज ही बल कर सो
0: कर सो
1: हम के बल उतरी माया बनाम संगत रहे और हम जो सीखो से नहीं हम मन ले सीखो से जन बल सीखो से बड़े बुजुर्ग मान ले और गुड बात तो घर ले हम जो मुंह से आमचो जड़ असन मायर असत
0: घर चो सियान सजन मन आए तो दादा दीदी मन ए तो रहे नंगत ज्ञान ध्यान विधि गुड बात मन अदा हम चो लगे ऐसे नंगत जहला मन आले जहला मन के सुनो।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है पर हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
6: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: दबाव कम आया ना तो उम्मीद बिंदे। लेकिन संगमरमर इंद्रनाथ और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मरता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला बाला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
1: हाँ तो राधे दीदी मैं एवं हम ये नंगत ज्ञान ध्यान बीते गुटबा के तो कर लो तो अदर हम चलो गया से गुटो खाली भी नाटक ये नाटक के निकला सोत एवं आत श्री आदित्य कुमार आचार्य और इतने भाग धर लोग आत एवं आत श्रीमती सोमा सिन्हा श्री नरेंद्र पाड़ी श्री शिव नारायण पांडे श्री बलबीर सिंह कच्छ श्री भरत कुमार गंगादित्य और श्री महेंद्र कुमार पांडे और एक प्रस्तुत कर सोत एवं आत श्री बलबीर सिंह कच्छ तो वाले ए हलवी नाटक के सुनो।

0: जुआर साहब जुआर
1: जुआर धनसा है जुआर अलावे लग बस
0: अच्छा ओली साहब भेटघाट होली मैं तुमके भेटघाट हो तो काजे बड़े बिहान निकलू ना इले से
1: अच्छा कर लिस संज का रिलीज मैं दौरा जा तो बीता रहे संज का रिलीज गुन भेट लिस अले काय गोटा है झटके सांग
0: मौके गोटक भिपती पोली साहब
1: आई
0: देखा मोचो बेड़ा ने
1: हाँ
0: मैं रोजी बोरक कौन सरकारी खत मन के लगाए से
1: हाँ
0: और तेबने बोले नहीं अले उपजन नगद नहीं हो से
1: हाँ
0: काई माटी माय रीस होली असन लागे साहब मैं कसम करें दे मके तो हे के नहीं विचार बोल ली साहब
1: हाँ ये गोट का जी लिस धन सा सिया ने
0: हाँ
1: देख चुच्छाए सरकारी खत बोलून लगा ले काम नहीं चले
0: है?
1: भीने भीने किसम चो माटी ने माटी दखून खत लगा तो होए से कौन माटी ने फास्फेट कम आसे जाले फास्फेट भी ती खत सल्फर कम आसे जाले सल्फर भी ती खत और हिसाब दखून कौन माटी ने काय जीनिस कम आसे उसन भी ती खत के लगाऊ पड़े से यूरिया चाय बोलून भाती चुचा यूरिया के बेड़ा न्यून बिखर लो ने नी पड़े
0: जाले मैं ये भी कसम करने दे साहब ये के तो सांगा मके
1: दख भाई धन साहब सबले पहिल तो तुई तुचो माटी चो जांच कराओ
0: माटी चो जांच
1: हो और माटी चो जांच होलो ने तुई जान से कि तुचो माटी ने कितरो पीएच मान चो आसे फिर हुन हिसाब ने तुई नंगत फसल धोरुक सकसे और गोटो गोठाय ता धन साहब सियान
0: काय गोठाय साहब
1: हुन गोठ ए आए कि सरकारी खत देतो के धीरे धीरे बेड़ा नष्ट जाए से
0: बेड़ा नष्ट जाए से
1: हो
0: ये सरकारी खत ने
1: यही काजे जैविक खत चो वाट नहीं कर ली से जैविक उवाट ने जैविक खत की तुई तुचो घरे नहाले बेड़ा ने खुद दे बना उक सकिस और हुनके बेड़ा ने लगाओ नस्लो बेड़ा के बले सुधरा उक सकिस समझ लीस
0: समझ तो के तो समझ ले साहब मात्र ये चो उवाट के मैं कसन जाने दे साहब
1: देख भाई ये चो उवाट के आम सांगवा
0: हाँ।
1: नाडे फिसाप चो खत हो कि केचवा कीड़ी बीती खत हो
0: हाँ।
1: हुनके बनाऊन फसल चो नंगत दखा रखा और नंगत माटी हिसाब ने कमानी करूं तो नंगत फसल कमा उक सकी
0: ये तो खूबे हरिक चो गोट है साहब हैं तुमके शरण लागो साहब तुम अच्छा गोट के सांग लास तुम तो ये फादा ने पोलो लोग के ऊपर उठा तो काम कर लास साहब आले साहब जुआर साहब जय हो साहब जुआर जुआर
1: देख कोनी दिन काम पड़ ले फिर असने आओ
0: हैं आओ यहीं दे साहब आले जुआर साहब
1: आले जुआर जुआर

0: सोनाय ओ सोनाय दखानुए बायले के किदली दाए तो घरे रती कहाँ गेलीस रे
1: काय होली हो काय काजी इतलो चीची आसास
0: काय गोट के सांग से तू सोनाय मैं जाऊँ रे बोंड का सौकार लगी
1: हाँ
0: ये पानी सो असन लगा अधर तो का

0: जे जाऊ रे मैं आले सकार देखनु फेरे सरे गेलो से मने
1: नहीं तुम जो काज घरे बसु रहे थे
0: ई गोटक फेर हां
1: काय करा से हो है अरे इतरो बेड़ा खाड़ा रो रो बोले काय होली जाले माता खाती जे कौन आए जाले हम जो बेड़ा खाड़ा के नसालो आए हुन के तो
0: सत्य आए सुनाए तू सत्य बोलसी अरे देखनु रोजे बरक से असन येसु बोले बेड़ा ने ठोक का सरकारी खत के लगा ले मैं हाय अब तक समय ने मिजानी समय ने घसानी सब पायवार तो कर ले मंत्र काचो नजर लागली जाले आमचो बेड़ा ने दखानी फसल बिल्कुल नाजुन होए
1: हो मंत्र ये हो
0: कसन
1: हम चो बेड़ा रेटे चो उन धनसाय चो बेड़ा ने कसन असन नहीं होए
0: हो
1: उन चो फसल तो इतरो सुंदर लल हुन जाए सी हाँ ये हो काय हुनी तो काय नहीं करलो से हम चो बेड़ा के
0: सत्य आए तू जाले सत्य बोलसीस आम चो बेड़ा ने विपत हुन चो बेड़ा ने सकत हाँ ये असली तो होक नहीं सके सोना है
1: हाँ
0: काई नाले काई गोट तो जरूर आए हो बिल्कुल सत्य आए हुनीची आए पांगू बिल्कुल हुनीची आए पांगू हुनीची आए देवदामी बनाऊ बीता नाले हुन चो बेड़ा ने कसन का आए सुंदर फसला से और मोचो बेड़ा ने काई नहीं
1: होय हो हुनी चाय बे
0: ओ नी काय
1: आम के असन अनगतन करू ना ने बेड़ा खड़ा रू रू वाले आम के दूसर थाने भूती कर तो काज काय जौक लागती हो
0: सत्य बोलसिस ती सुना ये सुनाए
1: ना
0: सुन लीस
1: ओगा
0: मोके जाले तो अदाय खूबे रिस लागे से हां असन लागे से जोड़ान लगे टकू रून भाती नहीं धन साय के मरते मारू दे वहां लागे से हां यदा ये भी डरून चलते दिन गेली बेदाय हाय जान दे तान जान दे हुन जो भूत के नीचे रह जाले काय के सांग से जान तम जाय से हो
1: ये ए, ये हो ये ए,
0: कसन
1: ये ने सुनो सुनो सुनो
0: कसन
1: अल का जा साथे बानो
0: हो गा रानु तू मोके जाग देस मुजी मुजी नी हो मजा आए से हो
1: ये हो ये ने ने थे बानो थे बा थे बा थे बा थे बा
0: ये
2: राम राम सरपंच दादा राम राम
3: ए, राम राम धनसार आला बस आज कसन बियाने बियाने तरोली ना
2: काय के सांगे रे सरपंच दादा गोटक अरनापचे असन गोठाय जानो अली रोजे चो खटखट के सुख नी होय सरपंच दादा
3: काय खटखट होन गेली का
2: काय के सांगे सरपंच दादा सोनू हुन खाले पाराचो हुन मके खूबे खटखट करे सरपंच दादा
3: सोनू काय खटखट करे सोनू
2: काय के सांगे दादा उन बेड़ा ले घरे बोर तो बेड़ा नहीं उन जोड़ान लगे मके टाकुन रही से आरु रोजे मके तीन दिन होली पे एक हजार ऊपरी है से खीजे से मार तो पेड़ तो काज ऊपरी है से बारा बाखना बोले से अले असन कर कसन होए दे सरपंच दादा
3: खीजे से मार तो पेड़ तो काज ऊपरी है से
2: हो दादा
3: काय काजे
2: हुन बोले से कि हुंचो बेड़ा ने येसु जो नाय फसल खेड़े घाटा होली मने अरे येसु चे नहीं गेलो दुई बरक ले उन घाटा चे होए से अरु ये चो काजे हुन मके हुन लौटा दे इसे मैं हुन चो बेड़ा के पांग ले माने देव बना ले असन बोले से यार एकदम ऊपरी ऐसे सरपंच दादा
3: असन कसन होक सके ना धन साय
2: हाँ वो
3: उन असन कसन तू की बोले से
2: मोचो बेड़ा ने फसल ये बोले दादा चमक राया से और मैं बेड़ा के येसु नहीं उन्नत किसाब हिसाब ने कमाए से और रोजे बरख मैं उन्नत वाट ने कमानी करे से और मोचो फसल अच्छा रहे से और हुन चो फसल खिंडी अच्छा नहीं रहे उन मके दका तीन दिन होली उन टाकून टाकून बाटे रहे से और जोड़न बाटे अमरते नहीं है कितना मार तो फिर तो काज होई से बारा बागना बोले से मके देव बनाडीस बोले से पांगलीस बोले से अल असन कसन उन बोले थे सरपंच दादा मके
3: उन कसन बोलुक सके धन साय तू असन कर
2: हाँ
3: सोनू क्या हम समझावा मान तो रह चुका जे नहीं बैठक हाक दुख लागे दे
2: हाँ
3: तू जा घरे मैं कतवाल के हाक देऊ नहीं गांव ने हाका पड़ोक बोले दे
2: हाँ सरपंच दादा काई बल कर हम खुबे खटखट करे सरपंच दादा मके तो एकदम जीव जंजर लाग ली मके डर लागे से
3: हाँ हाँ उन क्या हमें समझा
2: हाँ दादा
3: ठीक है
2: हाँ हाँ हाँ मजा आए
3: आ ले
4: सुना सुना सुना आई तो आरदी ने ग्राम पंचायत भवन ने गोटो खूबे कामचो बस काय मने हो।

0: ए बस का ने सब आए किसान लोग के अमर तो राय हो। सुना सुना सुना आइतवार दिने ग्राम पंचायत भवन ने बस का आए हो। आजी गोटो गोट काजे यथा सपाई के हाथ दिलो आसे हुन गोटाय धनसाय ऊपरे सोनू दोष लगाए से हुंचो बेड़ा के नसालो से बोलून। यही गोट चो आजी ये था फासला होए दे।
1: सफाई लोग के राम राम हो जुआर तो सियान सजन मन देखा सफाई लोग के मैं गोटक नगद काम काजे हाक दिले से असन तो मोर गोट सोनू आरु धन साय चो मंजी आए मांतर मैं ये था ये मंच लागू निहाक दे ये मंचो झगड़ा दंड के तो मैं एकलाय बोले निटा उठ सकते मांतर सफाई के हाक दे तो काजे असन वाट होली से कि सोनू चु बेड़ा ने कमानी नहीं हुई आरु धन साय चु बेड़ा ने कमानी हुई से ये चो फरक कसन है और ये चो काजे धन साय काय कर लो से। अच्छा। यही कहने के आमी सपाई लोग जानवा तो होनी साहब ने ता हाक दिलो रा से। अच्छा। सपाई लोग खिनिक ध्यान दे उन सुना अल्ला आओ ना धन साय
2: हो दादा
1: तू ये लोग पूरी आओ और ये तू चो खेती कमानी चो जो फसल गोटा है ने अलग सब चो लोग सांगों देस
2: हाँ दादा सांगे दे। सपाई गांव करी लोग के सियान सजन मन के मैं जुआर करे से
3: जुआर
2: सर लगा मोचो बेड़ा ने सरकारी खत मैं देते रहे मोचो फसल बोले कमानी हिसाब ने खेती कम चे होते के लिए तेबे मैं 5 बरख पहिल गोटक शिविर ने जाऊन भाती ये गोट के सुन ले कि आप लो बेड़ा के नगद उपजास का जे कोनी बोले तुम्ही खोजाकारी भाई मन लगे भेट हुआ बोलून तेबे मैं खोजाकारी भाई लगे गेले आरु आप लो बेड़ा चो सप्पाई गोट मन के हुन मन के सरसरा मैं हुता सांग ले तेबे मोचो गोट के सुनून हुता ले मके माटी के जांच करा तो काजे बल्ला आरु फिर मैं पाचे माटी चो जांच करा ले और हुन दिन ले मैं मोचो कमानी वाट के उन्नत कमानी वाट बना ले घर चे मैं नादेक खत चो टंकी बना ले फिर हुन खत के मैं बेड़ा ने दी ले बेड़ा ने उन्नत किस्म चो बीज के लगा ले और जीव जतन करुन भाती मैं नुआ वाट ले कमानी करतो के मोचो बेड़ा दखाए बे काय सुंदर फसल दखा दे से। और ये सोनू काय करे से एबे बोले हुनी जूना हिसाब ने बेड़ा के कमाए से रोजे बरक असन यूरिया खत और काय काय खत मन के दे से ये माटी बोले कितरो दिन थामे दे यही लागून ये चो फसल नशे से। और ये सोनू और देखा मके ये भी फंदी बनाउन भाती मार तो पीर तो काजे मके ऊपर यही से और तुम्हें ची सांगा कहे मैं ये चो बेड़ा के पाहुक सके है
4: सुन ला सो का गेला से बाटिया ये दाय मैं पूरे यून बोलें दे देखा धनसाय दादा इतरो सुंदर गोट के सब पाए चो पूरे सांगला आम चोले बोले गलती होली से नी जानू नी समझून आम के धनसाय दादा चो ऊपरे उनकी नी दका तो रहे ये चो काजे मैं बोले हमी दुन्नो चो बाटले माँ पंचायत के माफी मांगे से और तुम कसन खाली मुड़ी करूं बसला सासो ये दे बाटिया या नुगे बाटिया
5: हो ऐसे ऐसे सत्य गोट है सोना है तीचो गोट बोल बिल्कुल फिट गोट है और उस संगे संगे हम चो गांव करी दादा दीदी मन सियान सजन मन आले मैं असन विचार के भी को रुक नहीं सकते है इतरो अच्छा वाट के इतरो सुंदर नियाओ के और असन कहानी के सुन भाती तो मोके अचरिज लागे से हाँ देखा आमी जाले आम चो माटी के अपने नसाओं से ये माटी माय आम के उपजाए से आम चो बाढ़ती करे से आम के पोसे से आरु आम के जाले भूई बाड़ी के कसन जतन करते रहे एक मैं आजी जान ले आजी समझ ले सबले पहले तो मैं बोले से मैं देखले कि मोचो बेड़ा असने अनगता ना से और धन साय चो बेड़ा खूबे नगत जतन न्या से यही लागू मोचो गलती होली महाप्रभु आले तेबे मैं धन साय के आरु संगे संगे ये गांव कारी भाई मन के और सरपंच दादा के जुहार करे से और तुम जमाए मुके माफी दियास महाप्रभु अले माफी देऊन दियास मोके गलती होली मोचोले।
1: हाँ तो सोनू
5: सरपंच दादा सबले पहिल तो आपलो माटी चो जांच कराए थे अदाय।
1: हाँ ये होली नगद गोट आले तो कटवार कटक नगद खबर आसे उनके सांगू देस।
0: हाँ गांवकारी भाई बहन मन देखा नगद गोड सांग तो काजे आमचो पुरे कृषि महकमा बाटले साहब मन अमरला से आले ये मंच गोट के बोले सुनो। गांव चो सफाई सियान सजन मन देखा ये सफाई गांव चो किसान मन का जे नगद गोट ये आए कि माटी चो जांच करावा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनावा माटी जांच कराऊन हुन चो कार्ड बना ले तुम्ही जाना से कि तुम चो माटी ने काय कमी आसे काय नगत आसे कि काय घटी आसे एक ही जानून भाती तुम्ही हुन हिसाब ने खत भात देऊन भाती तुम्ही नगत फसल पाउक सका से समझ ला। हाँ तो ये चो काजे आम चो असन खेती साहब कहाँ है बोले जो नासो तुम चो लगे होता पूछुक सकास आम के बोले पूछुक सकास आपिस ने बोले उक सकास और तुम्हें नगद फसल धरुक सकास समझ ला। आले इतरे गोटा है मैं बस यहाँ से आई।
1: तो गांवकारी भाई बहन मन तुमके मैं आगे बोल ली के नहीं कि सोनू आरु धन साय चो गोट नु है सपाय गांवकारी चो आरु सपाय किसान भाई मन चो गोट है कि नहीं। धन साय तो खुश खुश आप लोग माटी के जांच करा लो और काय रसिया फसल के धर लो आए कि नहीं। हाँ मंत्र असनी फसल धरतो काजे अपन मन सपाई के माटी के जांच कराओ पड़े दे आरु हरी कुदिम ने की कमानी धमानी करुक लाए लाग तेरो अच्छा उपजन होए दे आए कि नहीं। हाँ कसन सोनू ऐडा धन साय मार्ग का बाटी डाकू रसे।
5: हाँ ये बाटे ताक तू भी तू गोट नहीं है मंत्र सर सुन दादा ये जमाए गोट खूबी अच्छा लाग ली हो आले गोटो गीत हो नहीं कहीं बोले
1: हसन।
5: हाँ चुन्ना चुन मारे बोले जावा
1: हसन बोल
5: गाली घरे जाओ ना चुन्ना चुन
1: आले जाओ।

0: हाँ तो लाला जानी
1: हाँ पंकु,
0: तो काय नंगे ते भी आमी
1: ये
0: अलबी नाटक के कर
1: सुन कर
0: रहे लो।
1: मैं
0: तो एक्चुअली आम चले गए का एता चो भाग तरलो दादा में गिची तलीस
1: तो इधर भाग तरला इमानात श्रीमती सुमला सिन्हा, श्री नरेंद्र पाड़ी, श्री श्री नारायण पांडे, श्री बलवीर सिंह कच्छ, श्री भरत कुमार गंगादित्य और श्री महेंद्र कुमार पांडे। ये नाटक ने ये सबू जमाए प्रतिभा। तो इसी संगे हम चुना के गोटे गीत बोले आसे वाले गीत के सुनो। ये गीत के गावला साथ इमन आठ विपिन बिहारी दास और इमन जो संगवारी में तो वाले गीत के सुनो।
0: आले सुनो।
2: हाय हाय सांगु के नहीं होए।

0: तुझा दीदी मन एवं ये काय सुंदर गीत के सुनते रहो ने ये गीत के गाला सत एमन आत विपिन बिहारी दास और एमन चो सनवारी मन तो आम चलो के और गोटो गीत आसे ये गीत के गाला सत एमन आत योगेश्वर पुजारी और एमन चो सनवारी मन तो वाले ये गीत के सुनो
1: अली सुनो

0: हाँ तो लाल हजारी
1: हाँ प्रभु
0: ये देखिए भी काय नगद गीत के तो सुन लो।
1: सुन लो क्या
0: ये गीत के गावते रहला योगेश्वर पुजारी और उनचो संगवारी
1: मैन। हाँ
0: तो देख गीत के सुनते रहले सुनक चुप
1: भाई से आए
0: तो फिर हम चले गए मचमोड़न गोट गीता से।
1: हाँ
0: इमन के एक गावला सो इमन आत गेलमुनी देवी और उनचो संगवारी मैन।
1: हाँ
0: तो वाले ये गीत के बले हम सुनो और दादा दीदी के बल सुनो।
1: सुनो हाँ

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम अमचो गांव, मीडियम वेव और एफएम बैंड फॉर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम बाली फूल। आज इस कार्यक्रम में सुनिए जयदेव विश्वकर्मा के स्वर में हलवे लोकगीत।

डिजाइन से करे सुंदर मचो पापा रे पैसा देवरा पापा झमक नाय खेल मझमक नाय केरा पाकलो केरा पाकलो रे सुंदर केरा पाकलो झलर मलर साड़ी बीती के सुंदर मचो पापा रे डोकरा रखलो पापा चमक नाय खेल मझमक नाय ले जा ले जा ले जा पापा ले जा संकचो जाओ कल छता के टांगरे सुंदर जामा गामे गाम ले जा रे होय पापा जामा गामे गाम ले जा ले जा रे ले जा पापा ले जा के मारा ले जा के मारा रे सुंदर ले जा के मारा घोटिया मंडी में जासे करे सुंदर मचो पापा रे पैसा देवरा पापा चमक नाय खेल मझमक नाय ले जा ले जा रे ले जा पापा ले जा के मारा रे सुंदर ले जा के मारा कल छाता के टांग रे सुंदर सुंदर मचो पापा रे जामा घामे घाम पापा चमक नाय खेलवा चमक नाय बाप चो गंगा बो नाचुन जाने से जाचुन पना गोर मैं दे दे बेंडा ढोर उचकी हो नमर ले जा रे होय पापा उचकी हो नमर छाता दिया छतरी दिया मड़ियान जातो वाय ये वास कहीं नहीं जाले गरीब घरा डगरान खातो वाय पापा चमकनाय खेलवा चमकनाय ले जा रे होय पापा डगरान खातो वाय उषा लोको सब लंदी पड़ून बोले देखाय दखल सन ले जा रे होय पापा दखल सन ले जा रे होय पापा दखल सन हो आउरी केरा पान बलक आउरी केरा पान बेटा बेटी ली हो जाले खोड़िया देव।

संग चो जाओ कल चता के टांगरे सुंदर जामा गामे गाम ले जा रे होए पापा जामा गामे गाम ले जा रे ले जा रे ले जा पापा ले जा संग चो जाओ कल चता के टांगरे नोनी जामा गामे गाम ले जा रे होए पापा जामा गामे गाम छाता दिया छतरी दिया मरियान जातो वाय वास कहीं नहीं जाले गरीब घर डगरान खातो वाय ले जा रे होए पापा डगरान खातो वाय ले जा रे होए पापा डगरान खातो वाय केरा पकोलो केरा दी तुर सुंदर जुमान ले के डोकरा रखोलो ले जा रे होए पापा डोकरा रखोलो ले जा रे होए पापा डोकरा रखोलो टेंडा पाटी ने चेकली किरिया घाटी घाटी हो सजकुन तुचे किरिया सोन चांदी के नक मलेरे नकली गुरिया ले जा रे होए पापा नकली गुरिया ले जा रे ले जा पापा ले जा भी ले जा रे ले जा पापा करेला पीता मुझ संगे गीत गाय से मनो सबेता ले जा रे होए पापा मनो कबेता बाट चो गंगा बोर को नाई बोलू ना जुन जानिस जाचुन पोना घोर मैं दे दे बेंडा डोर उचकी हो न मोर ले जा रे होए पापा उचकी हो न मोर ले जा रे होए पापा उचकी हो न मोर ले जा रे ले जा पापा ले जा संग चो जाऊं रे सुंदर ले जा संग चो दाम कल चाता के टांग रे नोनी सुंदर मचो पापा रे जामा घामे घाम पापा चमक नाय खेलवा झमक नाय उषा लोको सोम नंदी पड़ुन बले देखाय दखल असन ले जा रे होय पापा दखल असन ले जा रे ले जा पापा ले जा संग चो जाऊं कल चाता के टांग रे नोने जामा घामे गाम ले जा रे होए पापा जामा घामे गाम ले जा रे होए पापा जामा घामे गाम टेंडा पाटी ने चेगली गिरिया घाटी घाटी हो सदकन तू चय किरिया ले जा रे होए पापा तू चय किरिया ले जा रे होए पापा तू चय किरिया बाट चो गंगा बोर को नाय बोल ना जुन जानिस पुष्पालिया जाचुन पोना घोर ले जा रे होए पापा जाचुन पोना घोर ले जा रे होए पापा जाचुन पोना घोर ले जा रे जा रे ले जा पापा केरा कुचई रे सुंदर केरा कुचई कितरे सुंदर गीत गाले बोले सुंदर मैबा पापा रे टेंडा उचई पापा चमक नाय खेलवा झमक नाय आउरी केरा पान बला गाय आउरी केरा पान है सुंदर आउरी केरा पान बेटा बेटी नी होए जाले सुंदर मचो पापा रे खोड़िया देव के मान पापा चमक नाय खेलवा ले जा रे ले जा पापा ने आउरी केरा पान रे सुंदर आउरी केरा पान बेटा बेटी नी होए जाले सुंदर मचो पापा रे खोड़िया देव के मान पापा चमक नाय खेलवा झमक नाय एक मन मड्या दुई मन पीसन एक मन मड्या दुई मन पीसन रे सुंदर दुई मन पीसन पानी आंडी के मड़ा सुंदर गाँव तले जा ले जा रे होए पापा गाँव तले जा पानी मारली सुंदर मचो ओसरा जांजोतले टकुन टकुन टकुन गेले घगरा मांजोतले ले जा रे होए पापा घगरा मांजोतले ले जा रे होए पापा घगरा मांजोतले पानी मारली सुंदर मचो ओसना जांजोतले टकुन टकुन टकुन गेले घगरा मांजोतले ले जा रे होए पापा झगरा मांजोतले ए मारी रसोना की तुर सुंदर बोलत विता मैं देखन गाँव तो काजे रेडियो स्टेशन घर न दाका मैं तो इले से

花だけで、だけで、マリロスな。もえないじゃね、ピーラーもん。えたれだかね、えたれぱかれ、ほたれじゃね、あんごはじょけんで。あんごはじょけんで。あんごはじょけんで。マリロスな。सियान सजन दादा दीदी हल भी भोतरी गीत के सुनन ओड़िया संगे बोलन बती मोए नाय जन पीला मोन जोड़त जोड़त मोए तक न जोड़न बाती रेडियो स्टेशन घरे इले से मारी रोसोना सियान सजन दादा दीदी रेडियो टेशन गरे इले दादा दीदी के सुना तो काजे मन के दुखन मोके भाये से मोके भाये से रे मारी रोसोना दादा दीदी हल भी बोतरी बोना तो काजे की तुर सुंदर लीख निकाड़ी लीक निकाली लीक निकाली फोबली डाड़ी की तुर सुंदर दादा दीदी मन हरिक लागे से हरिक लागे से हरिक लागे से मारी रोसोना पूर्व दिन ले बनत बीती पूर्व दिन ले सुनत बीती आम चो हाथ ने रोलो बेरा ए बेदकन कल युग चो राज होली कलयुग चो राज होली ते बले बोले हम चो रेडियो घरे आसे दे घरे आसे दे मारी रोसोना डोकरा डोगरी दादा दीदी सियान सजन बड़ू बड़ाए संग जोरिया बाबू नोनी रेडियो सुन तो काजे घर ने संगावासे घर ने संगावासे घर ने संगावासे मारी रोसोना सियान सजन दादा दीदी बोल तो काजे सुनन दखे दे जानू दादा दीदी मन सुन तो काजे मन के लागे दे मन के लागे दे मारी रोसोना पुराना परंपरा नीति रीति के दादा दीदी नी छंडाना आम चो रीति वाटाने पड़े दे वाटाने पड़े दे मारी रोसोना सियान

छाड़ न जाहा से। ए बेचले काले की सुंदर मान, ए बेचले काले की ऊन बीती के पूरा नीति की आज आकाशवाणी ने आनु।

रोसना। इतर सुंदर बिजली चमक पानी डर काज काय करवा, दादा दीदी डोकरा डोकरी बोड़ बोड़ हुदली दाए हम चो।

रोशना पीला मोन सियान मोन डोकर डोकरी दादा दीदी सुनत काज की तरह सुंदर पानी चढ़ल काय करो डर तो काज

सियान सजन दादा दीदी डोकरा डोकरी बोड़ू बोड़ाए काय सुंदर सुनन बाती मै नए जन पीला मोन ए तले पकले उतले देखनु आंगवा झोके दे आंगवा झोके दे मारी रोसोना गाँव बाड़ चो लोग दगा ए बिले बोले पूरा

चटांचो पूरा नमन के धर न बातीस पैलोक मिलल बीती पांच दस टन पूरन मांच रस देख मारी रसना ने बनन दखे से मारी रसना ने बनन धके दे मारी रसना ओ

सुंदर गीत गाओ तो काजे दाका हरी कलागे से हरी कलागे से हरी कलागे से मारी रोसोना डोकरा डोकरी दादा दीदी चलत बीता सियाल सजन दादा भाई मन संग जौरिया दीदी मन भूती बेड़ा ने मारी रसना गाउन दखेंदे गाउन दखेंदे गाउन दखेंदे मारी रसना मारी रसना मारी रसना कीतर सुंदर लक्ष्मी पूरन चांडन बाती मारी रसना के धरन बाती मैं तो दखुन बाती मारी रसना के छांगु नहीं ले से मारी रसना से सांगुन दखें दे मारी रसना आजी काली चले काले की गणेश मंडन जासत तक गणेश काजे भगवान चो दुआर दकुन झटके जहासे मांग मैनन शिवरातने महादेव चो दर्शन पड़े से मारी रसोना महादेव चो दर्शन काय सुंदर दखन सुंदर मोलंगी मान शिवरत चो मांग जोने दखन महादेव चो बोरत फोड़े से बोरत फोड़े से मारी रसोना काय सुंदर फागुन महीना होंचो जोने होली होए से काय सुंदर चैतरा ने आमा का आमा खापनी सुंदर मोचो बिचनी करुन तियार पड़े से तियार पड़े से मारी रसोना काय सुंदर चैत जोन काय सुंदर चैत जोन बिचनी करन अक्ति काजे दादा दीदी मन भून तो काजे धान के दकन बीच पकाय से बीच पकाय से सोना बिजन बीच चढ़न पकन दिल काय मजा खत भात ने उन बाती आम चो दादा मन दका बेड़न जाऊन धान के रोपे से धान के रोपे से मारी रोसोना की तोर सुंदर गीत गाई दे मचो नाम है जे देव विश्वकर्मा जानू आगे का जे रेडियो स्टेशन नाम रहे दे नाम रहे दे मारी रसोना पहला तियार मोना तो काजे काय सुंदर ओमुस तियार हरियाली चो बोना नबाती उन चो बाद ने भादम बाजार हो उन बाती नवा खानी द्वादम बाजार काय सुंदर मुड़ी जंतर पड़ नबाती जंतर मंतर पड़ नबाती काय सुंदर नवा काजे कुड़ी पान ने चिवड़ा खाऊं दे चिवड़ा खावा दे चिवड़ा खावा दे मारी रसोना कुड़ी पान ने काए मजा नवा काजे हरिक मन सपाय लोग बसतर चो नियम नीति ने हम चो आया दंते सरी माउली माता दंते सरी बुढ़ा बाबा भैरम आज दखन मोके सांगुन दखेंदे सांगुन दखेंदे दंते वाड़ा दंते सरी काय सुंदर ओर गल के पाट करली बसतर के पूर करली रेडियो स्टेशन घरे देखुन को गोल बाजार सीरा सारने माता हिंगलाजिन दंते सरी डेरा पड़ली से डेरा पड़ली से मारी रसोना
पहल चो नियम नीति मान के दकन भूल को नी जातो राय दादा दीदी हम चो दादा हम चो दीदी हम चो बोड़ू सब पायल मारी रे सोना पहल चो नियम नीति के सुर तक रे से सुर तक रे ने हल भी भोतरी पुरान दकन की तरह सुंदर बारह ठन चो पुरान के एतल मी एता जानो मिलल बीती ई तोर रस मारी रे सोना ने खूबे पड़े से आटी कनी चो लेका लेकी कनी जुग चो दादा दीदी आगे आगे तोनी पहली ये बे किलो बटन दकुन बाट संगे हिटुन पड़े से लेका लेकी दादा दीदी सपाई लोग हुन बीती के पूरा ननीति के सुर तक रे सो हो सुर त पड़े से मारी रोसोना हम चो संग चो सो जंगरिया दादा दीदी काए सुंदर रीलो बीती बोल तो काजे दकन सुंदर तू चो काजे ठाकुन रहें दे मारी रोसोना हम चो दादा हम चो दीदी सी अंसाजन भाई वो इन मोन दका माए तो तुम के हल भी भोतन गीत के सांगे से सांगुन दखें दे की तरह दिन ले सांग तने से दादा दीदी पूरन नीति के नी भूल का हम चो बीती की तरह सुंदर सांगलो बीती आगे बढ़े दे हम चो बेटा बेटी के सांग दखें दे मारी रोसोना आमी जसन बोलते रलू आले जा दादी दी मन तेबे हम चो गाँव चो घर चो उन्ती बाढ़ती काजे पीला मन आग चो आम चो तान ले खूबे सीके सोत

करूंगा जी मैं तुम के संग से, तुम के संग मारी रोसोना। हम चुदा दा हम दीदी तुम बाटी सपाई के हम।

0: Hidden forest.
1: बड़े फूल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेडियो विश्वकर्मा के सुर में हल्बी लोकगीत मीडियम वेव और एफएम वेव पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का
2: है। दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का।

एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन का चिकूट। आज इस कार्यक्रम में सुनिए मुंशी प्रेमचंद पर जानकारी। प्रस्तुति है बलराम कश्यप की।

पिलामन का जी गोट कार्यक्रम के सुन तो सफाई नानी बड़े पिलामन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और चुमा पिलामन जसन की तुमन मन जान सात की हमी रोजे दिन कोनी ना कोनी महापुरुष नहाले लेखक नहाले कवि मंचो गोट के अमरामाओ आले तेवे सुना उसने ची मच लगे गोटक महापुरुष आसोत यमुनाथ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद चो जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद चो जन्म 31 जुलाई सन 1880 ने उत्तर प्रदेश चो वाराणसी जिला चो लगे लम्ही नाव गांव ने होली। मुंशी प्रेमचंद चो मूर नाव जोन पीला बेरा चो आए हुन नाव आए धनपत राय श्रीवास्तव। ये मन चो बाबा चो नाव अजायब राय रहे। ये मन डाक खाना ने मुंशी चो साधारण सरकारी नौकरी करते रहो। प्रेमचंद चो आया चो नाव आनंदी देवी रहे। जब 8 वर्ष चो उम्र होली हुन समय ने प्रेमचंद चो आया चो मरना होली। प्रेमचंद पीला बेरातले खुब्बे डंड कसटले जीवना जीवला। ये मन चो पढ़े लिखई चो जो नूर आए उर्दू फारसी भाषा ले होली। जब ये मन 15 वर्ष चो होला बाबा बीता मन बिहा करुन दिला। यमन इतर झप के बिया होक नी खोजते रहोत मांतर आपलो बाबा बीता बिहा करुन दिला। मुंशी प्रेमचंद चो नी रहत मांतर फिर बले मन आपलो बाप चो मान संगत हो गाजे बिहा करला। ये मन सोचते रहोत कि मैं आगे एमए करें दे उन चो बाद बिहा होएं दे। मांतर चो बाप बीता इमन के जब के बिहा करुन दिला। बिया होने ने 1 वर्ष चो भीतरे प्रेमचंद चो बाबा चो मरना होन दिली। इधर घर चो सब पाय बोझाए मन चो ऊपरे पड़ ली। प्रेमचंद चो दूसरा बिहा शिवरानी देवी संगे होली। इमन दोनों चो 3 जन पिला मन होला। गोटोगात श्रीपत राय दूसरा त अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद पीला समय ले पढ़तो काजे खूब मन करोत। यमन कहीं चिबले पुस्तक के दखलों ने छुक नाय के पढ़न बाती सारुं देवत। 13 वर्ष चो उम्र ने यमन तिलिस्म ए होशरुबा नावित पुस्तक के पढ़ला। सन 1898 ने मैट्रिक पास होन गोटोक सरकारी विद्यालय ने गुरु जी बनला। सन 1910 ने अंग्रेजी फारसी और इतिहास विषय धरुन इंटर पास करला। सन 1919 ने अंग्रेजी फारसी और इतिहास विषय ने बीए पास होन शिक्षा विभाग ने सब इंस्पेक्टर चो पद ने गेला। मुंशी प्रेमचंद खंडित दिन रहन असहयोग आंदोलन ने रहन ये मन सरकारी नौकरी के छांडला। ये मन सरकारी नौकरी के असन ने छांडला हुन समय हम चो भारत देश चे लोग के अंग्रेज मन डांड कसर करते रहो। हुनिका जी एमन ये नौकरी के छाड़न असहयोग आंदोलन ने भिड़ला। सरकारी नौकरी के छाड़ने बले जीवन भर साहित्य सेवा करते रहो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ले प्रेरणा धरुन आपलो नाव प्रेमचंद्र नाव के धारण करला। सन 1936 8 अक्टूबर ने ये मंचो मरना होली। मुंशी प्रेमचंद चो प्रमुख रचना कृतिया जो कि बोलू से हुन आज उनकी मई सांगे से सुना। मुंशी प्रेमचंद चो 4 मई मूल रचना आत। पहला आत कहानी संग्रह। ये चो भित्री आए सोजे वतन सप्त सरोज नवनिधि समर यात्रा दूसरा आए उपन्यास सेवा सदन निर्मला गवन रंगभूमि कर्मभूमि गोदान तीसर नंबर आए नाटक। ये नाटक भीतरे करबला और संग्राम। ये मंचो कहानी जो नाय हुनात दो बोयलों की कथा पूस की रात ईदगाह दो सखिया बड़े बाबू बलिदान माता का हृदय और बले निबंध पुराना जमाना और नया जमाना स्वराज के फायदे कहानी कला इतने मंचो निबंध है। ए धनहली भाषा शैली।
मुंशी प्रेमचंद की रचना की जौन भाषा है छुक न सरल और सरसरा उर्दू संगे मिश्रा है। कसन बोलो नियमन आगे उर्दू सीखला उन चले फारसी सीखला मुहावरा और कहावत जौन प्रयोग

0: एमन दोनों के प्रयोग कर लो के एमन थाने जन एमन जन भाषा से लिया है खूबे खूबे मजा है ये तो महा बल्ली से वर्णात्मक भावात्मक व्यंगात्मक और पहले शैली ये मंच कहानी नहीं प्रचलित आसे ये मंच भाषा बोली एकदम सरल आए ये मन हिंदी खड़ी बोली के आप लोग रचना ने बावरला सोत ये मंच भाषा सहज आए जन की हमी झप के समझ सकू बोधगमय और प्रभामय बल्ले झप के समझ सकू ऐसा ने मंचो भाषा से लिया है साहित्य में स्थान कलम चो सिपाही मुंशी प्रेमचंद सोजे हिंदी साहित्य चो कथाकार नो हाथ ये मन हिंदी साहित्य चो अमर कथाकार आत ये मन के साहित्य में उपन्यास सम्राट चो नाव ने जानवात प्रेमचंद चो स्थान हिंदी साहित्य ने खूब बेउपरे मानसोद ये मन के युग प्रवर्तक और नवा कहानीकार ने उपरे ठान दिलासोद ये मन चो व्यवसाय ये मन लेखक बला अध्यापक बला और पत्रकार बले ये मन चो जन कालखंड आए जन समय आए मन रली आधुनिक समय ये मन समय चो जन ये मन जन लेखक आत प्रेमचंद जी कहानी और उपन्यास चो ज्ञान पाऊं लिखला सोत संपादन प्रेमचंद जी जागरण नाव समाचार पत्र और हंस नाव चो मासिक साहित्य की पत्रिका के संपादन करला मुंशी प्रेमचंद चौठान हिंदी साहित्य ने उपन्यास सम्राट चो नाव ने जानसोत ये मन चो योगदान हिंदी साहित्य ने हमेशा रह दे मुंशी प्रेमचंद चो जीवन एकदम सरल और सहज आए हाँ तो पीलामन इरेलिया जी चो महापुरुष चो गोट जातो पूरे पीलामन का जे गोट कार्यक्रम के सुन तो सब फाय नानी बड़े पीलामन के मचो बाटले खूबे खूबे माया और चुमा
1: सुना सुना सुना पीला मन नंगत गोठ के सुनाना सुना सुना सुना पीला मन नंगत

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीरामन का जगूट। आज इस कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद पर जानकारी दे रहे थे बलराम कश्यप। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: और एफएम बैंड फॉर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: A country with 1.4 billion inhabitants.
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
2: Frontier models is spearheading global innovation.
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: फ्रेशर स्किन के डेली लोन है नंदू कानूनी साक्षर पर एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता डेली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.daily-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संग्रह में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से

0: ने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
6: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
5: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
6: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
5: A blessing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
7: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
5: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
7: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in record time by ISRO with record cost, is a demonstration in terms of strength, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
5: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
8: The world seeks trusted and reliable partners, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
5: Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating in the event. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. We have more from our correspondent.
9: A ceremonial welcome will be accorded to the Prime Minister on Monday morning. Sri Narendra Modi will meet President Pellegrini and Prime Minister Fico during the visit. The Indian diaspora in Slovak Republic is highly excited about the maiden visit of an Indian Prime Minister to the country. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
5: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8-9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. Our correspondent has filed this report.
10: Programs such as Swachh Bharat, Digital India, Digital Health, Deep Ocean Mission and Gaganyaan have helped position science and innovation at center of India's development journey. Missions such as Chandrayaan 3 have transformed space science into a subject of widespread public interest, creating unprecedented awareness and engagement among citizens across the country. India's growing capabilities in frontier sectors such as space, atomic energy and advanced technologies have strengthened the country's global standing. With Suparna Sekia, Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
5: So National Testing Agency NTA has released the admit card for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from NTA's official website neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. 5 injured were shifted to Pandharpur for treatment. An investigation has been launched into the incident. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature on 12 Saal Vishwas Ki

0: Pollard expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. For details of this scores and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म दो बदन के गीत से। आवाज है आशा भोसले की, गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है रवि।

गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में। गीत रचना है कैफी आज़मी की, संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम है दो दिल।

दो जासूस फिल्म से आवाज़ है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

इतने साथ ही पुराने फिल्मों से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

रेडियो 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में आइए सुनते हैं जलधर और साथियों के स्वर में हलमे लोकगीत।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्विक सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्विक सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: श्रोताओं, लोक गीतों के कार्यक्रम दोना में आज आप सुन रहे हैं जलधर और साथियों के स्वर में हल्बी लोक गीत।

0: सुनने भी अब सुन रहे थे जलधर और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा,

0: आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशियन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries

हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।